ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज दिन शुक्रवार है, सक्षम 1948, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, तदनुसार 8 मई सन 2026। सुबह के 5:59 हो चुके हैं। आरंभ होता हमारा आज का दैनिक प्रसारण। आप सबका आज का दिन शुभ हो। सुप्रभात।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने गेहूं की पिछले साल से मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरू मध्य जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं चिंतन महाकवि तुलसीदास।
2: महाकवि तुलसीदास ने लिखा है, निज कवित्त कहि लागे ने नीका, सरस होहूं अथवा अति फीका। यह मनुष्य मात्र का स्वभाव है कि उसे अपनी हर चीज अच्छी लगती है, भले वह अच्छी हो या नहीं। अपने में उन्हें कोई कमी नजर नहीं आती, आती भी है तो वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं। उनकी अपेक्षा होती है कि सभी उनकी प्रशंसा करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें आत्म प्रशंसा अधिक अच्छी लगती है। उन्हें आत्म प्रशंसा का रोग होता है, वे आत्म प्रशंसा का कोई भी मौका जाने देना नहीं चाहते। नए व्यक्ति के सामने तो वे हवा बयार की तरह अपनी प्रशंसा करते हैं, जो गुण उनमें नहीं है उसका आरोपण भी अपने ऊपर कर लेते हैं। तत्काल तो रंग गाढ़ा बनकर चमकता है, भले बाद में असत्य का मुलम्मा उड़ जाता है। इतना भर तो एक हद तक क्षम्य भी है, लेकिन हैरत की बात तो यह है कि जो उनको भलीभांति जानता है उनके सामने भी डींग हांकने से बाज नहीं आते। कुछ लोग आदतन ऐसा करते हैं और कुछ दूसरों पर अपना प्रभाव डालने के लिए। दोनों स्थितियों में दूसरों पर प्रभाव डालना ही मंशा है। कारण जो भी हो, यह अपने आप में एक मनोविकार है, आत्मरति है। अपनी प्रशंसा अपने मुंह से सुनकर उन्हें आत्मतोष होता है, भले इसमें सत्याभास हो या अतिरंजना। आत्म प्रशंसा करने वालों की कोई हद नहीं होती। इसका ज्ञान उन्हें नहीं होता कि वे कहां और कब सीमा का अतिक्रमण कर रहे थे। उन्हें अपने अशिष्ट आचरण का भी बोध नहीं होता। आत्म प्रशंसा वस्तुतः आत्महीनता की उपज है, यह शालीनता के विरुद्ध आचरण है। अपनी प्रशंसा सुनने से संस्कार का क्षय होता है और संस्कार का क्षय मृत्यु के बराबर माना जाता है। यह सोचने की बात है कि जब प्रशंसा सुनने से संस्कार का क्षय होता है तब आत्म प्रशंसा कितनी गर्हित मानी जाएगी। ऐसा वे लोग करते हैं जिन्हें न तो आत्मबोध होता है और न औचित्य बोध। वे जानकर भी नहीं जानना चाहते कि उनका यह आचरण लोगों को रुचिकर नहीं है। ऐसे लोग सबकी आत्मीयता, अपनत्व, सहयोग और सहानुभूति से वंचित रहते हैं। आत्म प्रशंसक व्यक्तित्वहीन, कमजोर और खोखले होते हैं। कोई उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता, उनका व्यक्तित्व अविश्वसनीय हो जाता है। ऐसे लोग योजनावीर होते हैं, नित नई योजनाएं बनाते रहते हैं, उनकी योजनाओं का कोई ठोस आधार नहीं होता। वे अपनी हवाई योजनाओं का जोर शोर से प्रचार करते हैं। ऐसे लोग व्यवस्थित व्यक्तित्व के नहीं होते। व्यवस्थित व्यक्तित्व की पहचान तो यह है कि वह जो करना चाहता है उसे कभी किसी से नहीं कहता। नीति भी है कि आप जो करना चाहते हैं कभी किसी से नहीं कहिए, बल्कि उसे कार्य रूप दीजिए। बात कहने की नहीं, करने की होती है। इससे उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता बढ़ती है जो उसकी प्रगति में सहायक होती है। आदमी का काम ही उसका प्रवक्ता होता है, उसका काम ही बोलता है। कवि शमशेर की कविता की ये पंक्तियां इस संदर्भ में सार्थक हैं। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। जो व्यक्ति काम कम या नहीं करते और बातें ही अधिक करते रहते हैं वे अविश्वसनीय हो जाते हैं, उनकी साख नहीं बनती, जो जीवन को सफल नहीं होने देती। आत्म प्रशंसकों में एक बुरी प्रवृत्ति यह भी होती है कि जहां वह अपनी प्रशंसा कर रहा होता है वहीं दूसरों की निंदा और आलोचना भी करने से नहीं चूकता। ऐसे लोग दूसरों का अहित जितना नहीं करते उससे अधिक अपना करते हैं। सार्थक कार्य करने के बदले जीवन को व्यर्थ करते हैं। आत्म प्रशंसा करने के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण भी है। जिस व्यक्ति में हीन भावना हो आरोपण करता है, यहां क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है। ऐसे लोगों में कई तरह की बुरी लतों के लगने का भी अंदेशा होता है। अक्सर वे ठगी, फरेब और उचक्केपन के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में आत्म प्रशंसा एक घातक प्रवृत्ति है जिससे बचना ही चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन महाकवि तुलसीदास एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:10 और 32 सेकेंड हुए हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना।

कर्म ही पूजा है। फल की इच्छा के बिना कर्तव्य करना ही सच्चा कर्मयोग है। केवल कर्म पर ही आपका अधिकार है, फल पर नहीं। कर्म निवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन।

आत्मा तो अमर है, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न जल गीला कर सकता है, न वायु सुखा सकती है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। इसीलिए इस शरीर से मोह तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।

परिवर्तन तो संसार का नियम है। जो हुआ वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। परिवर्तन से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए।

हमें मोह और डर का त्याग कर देना चाहिए, सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दें। इससे मोह और अहंकार खत्म हो जाएगा और इससे हमें शांति मिलेगी।

काम, क्रोध और लोभ से जितना हो सके बचना चाहिए। ये नरक के तीन द्वार हैं जो मनुष्य के विनाश के कारण बनते हैं।

दुख जय पराजय लाभ हानि में एक समान रहकर अपना कर्तव्य पूरा करना ही योग है। इसलिए इन परिस्थितियों में सम्यक भाव रखना चाहिए।

0: भक्ति वह मार्ग है जहां अहंकार का कोई स्थान नहीं। ईश्वर के प्रति प्रेम ही सच्ची भक्ति है। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में आज बस इतना ही। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:39 होने को है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी।
1: नंबर 371 371

श्री राम अयोध्या वासियों को मानव तन प्राप्त करने के सौभाग्य और फलाफल का उपदेश दे रहे हैं। मनुष्य का शरीर भवसागर पार करने के लिए नौका के समान है। जो मनुष्य ऐसा साधन पाकर भी भवसागर पार न कर पाए वो महाकृतघ्न और मूर्ख होता है। हे नगरवासियों, इहलोक और परलोक में सुख प्राप्त करना चाहते हो तो भक्ति के सुलभ मार्ग का अनुसरण करो। ज्ञान का मार्ग कठिन होता है, उसे सहज ही प्राप्त नहीं किया जा सकता। भक्ति का मार्ग अपेक्षाकृत सहज होता है, किंतु संत समागम के बिना इसकी साधना नहीं हो पाती। बड़े पुण्य अर्जित करके संतों की संगति मिलती है और पुण्य अर्जित करने का साधन है कपट त्याग कर मन वचन और कर्म से उनकी सेवा करना जो पूज्य हैं, जिनके चरण वंदनीय हैं। प्रजाजन के सम्मुख श्री राम हाथ जोड़कर कहते हैं, देवाधिदेव महादेव का भजन किए बिना मनुष्य मेरा भक्त नहीं हो सकता। भक्ति के मार्ग में न तो यज्ञ और जाप की आवश्यकता है और न ही तप और उपवास की।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए जानते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में।

9 बजे आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को। दिन के 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। आज के चर्चा का विषय होगा विश्व रेड क्रॉस दिवस का इतिहास, महत्व और उद्देश्य। दिन के 11 बजे आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को। 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 1:20 पर आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को। 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 3 बजे आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से। 4 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। 4:02 पर आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को, जिसे हम रिले करेंगे अपने मुंबई केंद्र से। 4:29 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की आज की कड़ी।

शाम के 5 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने रांची केंद्र से। 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी। शाम के 5:30 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का अपना कार्यक्रम खेती बारी। संध्या 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से, और 6:02 पर आप सुनेंगे महिलाओं के लिए कार्यक्रम अंगना। आज के भी चर्चा का विषय होगा क्यों मनाया जाता है आज विश्व रेड क्रॉस दिवस, और इस वर्ष का थीम, महत्व और उद्देश्य क्या है। छह बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:10 पर जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। 7:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। 7:30 पर आप सुनेंगे खेल गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम खेलेंगे सांस से। 7:45 पर आप सुनेंगे सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। फार्मेसी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे 8 बजे आपकी चाहत में। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज एट 9। 9:15 पर स्पोर्टलाइट हमारे दिल्ली केंद्र से, और रात्रि के 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को आप सुनेंगे 9:30 बजे 9:30 पर, और रात्रि के 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि के 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक फिल्म से। रात्रि के 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि के 11:10 पर कार्यक्रम का समापन होगा हमारे स्टूडियो से। तो दोस्तों, ये थी संक्षिप्त जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है बम्बे 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सियाराम पासवान और साथियों के गाए लोकगीत को।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: कार्यक्रम लोक रंग में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए सुनते हैं सियाराम पासवान और साथियों के लोक भजन में।
2: आर्यावर सुगना फरार हो जाए हैं।

शब्द है प्रधान जगत में, लाल बिहारी सत सुना दिल का। हो गया उदंड का है, हो गया उदंड का है सूद।

0: अभी आप सुन रहे थे लाल बिहारी सावर साथियों को। इसी के साथ लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग यही समाप्त होता है। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20:34 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम काव्य धारा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पुष्कर कुमार पुष्प रचित कविताओं को।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं पुष्कर कुमार पुष्प आज आप लोगों के लिए कुछ गजलें, कुछ शेर, कुछ मतले और एक हिंदी कविता लेकर आया हूं। तो शुरू करते हैं। एक मतले एक शेर देखिए कि ये तहत में, हर दफे हर बार देखो घर बदलती है, हर दफे हर बार देखो घर बदलती है, बेवफा है मौत पल पल सर बदलती है, हर दफे हर बार देखो घर बदलती है, बेवफा है मौत पल पल सर बदलती है यहां किसका गुजारा एक कपड़े में, है यहां किसका गुजारा एक कपड़े में, रूह भी तो एक दिन चादर बदलती है, रूह भी तो एक दिन चादर बदलती है। एक मतलब एक शेर और देखे तरन्नुम में,

0: एक हिंदी कविता आखिरी में जाते जाते सुनाना चाहता हूँ, सुन लें। शब्दों से और भावनाओं से युद्ध एक कवि का हमेशा होता है, मैंने उसी को पिरोने की कोशिश की है, सुने। काव्य रण में सत्य जिसका गौण है, काव्य रण में सत्य जिसका गौण है, कृष्ण वह व्याकुल धनुर्धर कौन है। काव्य रण में सत्य जिसका गौण है, कृष्ण वह व्याकुल धनुर्धर कौन है। भावना का युद्ध अद्भुत है छिड़ा, भावना का युद्ध अद्भुत है छिड़ा, सव्यसाची अक्षरों से है भिड़ा। भावना का युद्ध अद्भुत है छिड़ा, सव्यसाची अक्षरों से है भिड़ा। काव्य धनु पर शब्द जिसके मौन है, काव्य धनु पर शब्द जिसके मौन है, कृष्ण वह व्याकुल धनुर्धर कौन है। हर हृदय में एक शकुनी व्याप्त है, हर हृदय में एक शकुनी व्याप्त है, हर घड़े में पाप भी पर्याप्त है। हर हृदय में एक शकुनी व्याप्त है, हर घड़े में पाप भी पर्याप्त है। बाण जिस पर खींचते गुरु द्रोण है, कृष्ण वह व्याकुल धनुर्धर कौन है। और इसके अंतिम चार पंक्तियां, एक लव्यों का अंगूठा कट गया, एक लव्यों का अंगूठा कट गया, व्यंजनों से स्वर स्वयं ही हट गया, शिल्प का जो रच रहा त्रिकोण है, कृष्ण वह व्याकुल धनुर्धर कौन है, कृष्ण वह व्याकुल धनुर्धर कौन है। नमस्कार श्रोताओं,
1: अभी आप सुन रहे थे पुष्कर कुमार पुष्प रचित कविताओं को, और इसी के साथ कार्यक्रम काव्यधारा यहीं समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं गैर फिल्मी एल्बम के गीत के अंतर्गत कार्यक्रम गीत संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अभिजीत के गाए गीतों को जिसे हमने लिया है एल्बम तेरे बिन से।

0: खैर, इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: कार्यक्रम गीत संगीत में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आनंद लेते हैं अभिजीत के गाए गीतों का।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से, और उसके ठीक बाद 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिसे हम रिले करेंगे अपने राज्य केंद्र से। कृपया कुछ प्रतीक्षा करें।

समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक

0: आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 वैशाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दास गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वित्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इंपॉर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टुगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद वगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
7: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमेक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा चुनाव में। तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का यह बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
3: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। बीजेपी सेंट्रल ऑब्जर्वर फॉर वेस्ट बंगाल अमित शाह टू मीट न्यूली इलेक्टेड पार्टी एमएलएस इन कोलकाता टू इलेक्ट लेजिस्लेटिव लीडर टुडे। Deadlock continues in Tamil Nadu over government formation as MLAs of VCK, CPI and CPIM to meet on lending support. President of Vietnam Tho Lam emphasizes India-Vietnam role in global supply chain at Business Forum in Mumbai. Commerce Minister Piyush Goyal reviews initiatives to strengthen India's position in global agriculture landscape. Saudi Arabia suspends US military access to its bases and airspace. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants beat Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method at Ikana Stadium. BJP Central Observer for West Bengal and Union Home Minister Amit Shah will meet newly elected party MLAs in Kolkata to elect legislative leader today. We have more from a correspondent.
9: After its sweeping victory in Bengal, the BJP is seeking to turn the swearing-in ceremony into a political event of national significance. The first BJP government in West Bengal will take oath on Saturday, the 25th Boishakh, at the Brigade Parade Ground. Preparations for the stage and security arrangements at Brigade began on Wednesday itself. According to BJP sources, Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Nitin Gadkari, JP Nadda, BJP President Nitin Naveen and several other central ministers may attend the ceremony. Chief ministers and deputy chief ministers of various BJP and NDA ruled states are also being invited. On Friday, a meeting of the newly elected BJP MLAs will be held at Bishwa Bangla Convention Center in New Town, where the leader of the legislative party will be formally elected. Amit Shah will be present as the central observer. Since the oath-taking ceremony is being held on the occasion of Rabindra Jayanti, special emphasis is also being given to cultural performances. The BJP is planning to showcase Bengali culture through Rabindra Sangeet and other cultural presentations. Shondipan Dashgupta, Akashbani News, Kolkata.
8: In Tamil Nadu, with the formation of the new government getting delayed, talks have been held to reach the magic number of 118 to prove the majority. The DMK and the AIADMK held the legislative party meetings of the newly elected MLAs yesterday. AIADMK General Secretary Edapati Palaniswamy has been elected as a leader of the legislative party during the meeting at Puducherry. The crucial meeting of the newly elected MLAs of VCK, CPI and CPIM is to take place today on the issue of lending support to the single largest party, TVK. We have more from a correspondent.
10: The situation in the state has taken interesting political outcome with the AIADMK and the DMK legislative party meeting held yesterday. Both of the parties have commented on their governor's decision on proving the majority. DMK spokesperson TK Ilangovan has said that it is the duty of the single largest party to prove its majority and added that DMK chief MK Stalin does not want any constitutional crisis. It is to be noted that Puducherry AIADMK secretary A. Anbaragan, who met the media after the legislative party meeting, had said that the power to decide has been given to the general secretary of the party. He hailed the decision of the governor on the issue of majority and said that there will be unexpected decisions in the prevailing political uncertainty. He also informed the media that their leader felt sad about Stalin's loss in this election. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
8: President of Vietnam Tho Lam has emphasized that India and Vietnam together have a significant opportunity to play a pivotal role in the global supply chain in today's changing world order. Addressing the India-Vietnam Business Forum in Mumbai, Mr. Lam highlighted that the current global scenario is indeed a challenge but also an opportunity to elevate cooperation between India and Vietnam to a new level. Speaking on the occasion, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis asserted that entrepreneurs, investors and professionals from the technology and manufacturing sectors in countries like India and Vietnam will shape the future of Asia.
4: India and Vietnam offer something important to the world: trusted partnership, stable governance, economic dynamism and long-term strategic confidence. The future of Asia will be built by entrepreneurs, innovators, investors, technology leaders, manufacturers and young people from countries like India and Vietnam working together.
8: After concluding his visit to India, the Vietnamese president arrived in Sri Lanka last night on a two-day state visit aimed at deepening bilateral ties and boosting trade and investment cooperation. The visit, undertaken at the invitation of the Sri Lankan president Anuradha Kumaradesanayake, coincides with the 55th anniversary of diplomatic relations between the two countries and marks the first visit by a Vietnamese president to Sri Lanka in 15 years. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal chaired a meeting with the chairman of the Indian Chamber of Food and Agriculture, Dr. M.J. Khan. Sharing this information in a social media post, Mr. Goyal said they discussed initiatives to further enhance the quality of life of our farmers, strengthen India's position in the global agriculture landscape, deepen collaboration with the African region, and share India's expertise in the sector. He added that they also deliberated on new pathways to enhance agricultural cooperation for long-term food security. Foreign Secretary Vikram Misri met UAE Minister of State for International Cooperation Rim Al-Hashimi in Abu Dhabi yesterday. In a social media post, External Affairs Ministry said that both sides reviewed the full spectrum of the India-UAE Comprehensive Strategic Partnership and identified areas for further cooperation. They also discussed the ongoing regional situation and global issues of mutual interest. The government has debunked a digitally altered video of External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal, wherein he is seen stating that India lost 4 Rafale fighter jets during the conflict with Pakistan. In a social media post, the fact-check unit of the Press Information Bureau clarified that the video is an AI-generated deepfake video and has been circulated by Pakistani propaganda accounts to spread misinformation. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Akashwani organized a marathon in the national capital today to mark its 90th anniversary. The nearly 3.5-kilometer marathon began from Akashwani Bhavan and passed through Krishi Bhavan, Rail Bhavan and the RBI building before concluding at Akashwani Bhavan. Employees of Akashwani, Doordarshan and Prasar Bharati, along with the family members, participated in the marathon. Prasar Bharati CEO Gaurav Dwivedi and Director General of Akashwani Rajiv Kumar Jain were present on the occasion. Akashwani was established in 1936 and continues to be one of the country's most trusted broadcasting platforms. Police have arrested absconding accused Nida Khan from Chhatrapati Shambhaji Nagar in connection with an alleged forced religious conversion case linked to a TCS company employee in Nashik. A joint operation was carried out last evening by a Nashik police team with the help of the crime branch in Chhatrapati Shambhaji Nagar. A case had earlier been registered against Nida Khan at Deolali Camp Police Station in Nashik for allegedly trying to force the religious conversion of a girl working in the TCS company. After the case was filed, she had gone absconding. Even after anticipatory bail plea was rejected, police were unable to trace her for nearly a month. IndiGo Airline has announced that it will begin commercial flight services from Noida International Airport in Jewar from the 15th of June. With this, IndiGo is set to become the airport's first launch carrier. IndiGo will gradually connect Noida International Airport with more than 16 cities across the country through direct flights. These include major metro cities like Bengaluru and Hyderabad, along with important destinations such as Amritsar, Chandigarh, Dharamshala, Jaipur, Lucknow, Navi Mumbai, Pantnagar and Srinagar. This will provide passengers with better travel options and faster connectivity. The Uttar Pradesh government has issued orders to operate all smart meters installed across the state in post-paid mode. Energy Minister Arvind Kumar Sharma stated that all smart meters installed under the RDSS scheme have been converted to the post-paid system with immediate effect. Under this arrangement, consumers will receive bills after electricity consumption. The bill for electricity consumed in May 2026 will be issued in June 2026 under the post-paid system. The Energy Minister said that prioritizing the convenience of electricity consumers, the Uttar Pradesh government has decided to discontinue the smart prepaid meter system. Saudi Arabia suspended U.S. military access to its bases and airspace, forcing President Donald Trump to abruptly abandon his plan to escort ships through the Strait of Hormuz, 2 U.S. officials have confirmed. The move marks a significant setback for Washington's Gulf strategy, with a key regional ally effectively blocking the operation known as Project Freedom before it could gain traction. Mr. Trump has shifted focus to diplomacy, describing recent talks with Iran as very good and saying a permanent deal is very possible.
11: Iran is now reviewing a 14-point U.S. proposal to end the war, with Tehran's Foreign Minister Abbas Araghchi calling for dialogue and diplomacy. The proposed framework would pause hostilities and open a 30-day window of final negotiations, even though core issues including Iran's nuclear program would be left for later talks. Washington says it expects an Iranian response imminently. The diplomatic picture remains fluid. Iran has not publicly confirmed acceptance of any terms, and Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Khalibaf has dismissed some media reports as fake. This is Vinod Kumar for Akashwani News from Dubai.
12: While diplomacy advances, fighting across West Asia shows no sign of stopping. Israel bombed Beirut, southern suburbs on Wednesday in the first strike on the Lebanese capital since a U.S. brokered ceasefire nominally took effect on the 17th of April. The Israeli military says its operations target Hezbollah's infrastructure and fighters, and has reported more than 220 Hezbollah members killed since the ceasefire began. In Gaza, Israeli strikes have continued, with Hamas condemning the attacks as a continuation of what it calls Israel's war of extermination. Meanwhile, the U.S. military has carried out strikes on Iranian military facilities after responding to attacks on Navy ships. Washington said that it does not want the conflict to grow but is ready to defend its forces. Earlier, U.S. claimed that Iran attacked three U.S. Navy ships in the Strait of Hormuz, but American forces intercepted the attacks and no ships were damaged. In IPL cricket, Lucknow Super Giants defeated Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method in a rain-hit match at the Ikana Stadium in Lucknow last night. Chasing 213 runs for victory, Royal Challengers Bengaluru made 203 for 6 in 19 overs. Earlier put into bat, Lucknow Super Giants scored 209 for 3 in 19 overs. Multiple rain interruptions reduced the match to a 19-over-a-side affair, setting Bengaluru a DLS target of 213. Mitchell Marsh scored a dazzling 111 off 56 for Lucknow, while Rajat Patidar contributed 61 off 31 for Bengaluru. Mitchell Marsh was adjudged player of the match. And now for a look at today's newspapers, is over to Subhadra.
13: Thank you, Abhishek. BJP preparing to assume office in Kolkata after its stunning victory in West Bengal finds prominent mention in most of the dailies. Governor dissolves West Bengal Assembly, leads the pioneer. Amit Shah to meet Bengal MLAs today on choice of new chief minister, says the Asian Age. Bengal's re-industrialization roadmaps being chalked out, informs the statesman. India urges Bangladesh to speed up verification of illegal migrants, reports Hindustan Times. In another story, Hindustan Times headlines, Governor keeps Vijay waiting as Tamil Nadu deadlock deepens. The Tribune in its editorial piece says, hung mandate led Tamil Nadu Assembly floor decide. The paper writes that Tamil Nadu's unfolding post-election uncertainty has once again brought the constitutional role of the governor under scrutiny. With Vijay's Tamaraga Vetri Karagam falling short of the halfway mark, the question before Raj Bhavan is politically explosive yet constitutionally settled. Who should be invited to form the government? The Constitution does not automatically grant the single largest party the right to govern. The governor is expected to determine which formation is most likely to command the confidence of the assembly. And finally, Financial Express, citing Niti Aayog's National Education Report released yesterday, says that Indian school kids are weakest in mathematics, higher reasoning. And with that, it's back to you, Abhishek.
12: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. BJP Central Observer for West Bengal Amit Shah to meet newly elected party MLAs in Kolkata to elect legislative leader today. Deadlock continues in Tamil Nadu over government formation as MLAs of VCK, CPI and CPIM to meet on lending support. President of Vietnam, Tho Lam, emphasizes India-Vietnam role in global supply chain and business forum in Mumbai. Commerce Minister Piyush Goyal reviews initiatives to strengthen India's position in global agriculture landscape. Saudi Arabia suspends U.S. military access to its bases in airspace. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants beat Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method at the Ikana Stadium. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
14: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 50% आरक्षित पदों पर पारा शिक्षकों से आवेदन लेकर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का दिया निर्देश। दुमका गोविंदपुर ट्रांसमिशन लाइन शुरू, झारखंड को मिलेगा 450 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का लाभ। संताल परगना समेत कई जिलों में बिजली आपूर्ति होगी मजबूत। झारखंड बिहार में आयकर विभाग ने 20,000 करोड़ रुपए का कर किया संग्रह, महेंद्र सिंह धोनी बने सबसे बड़े व्यक्तिगत आयकर दाता। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली करेगा लागू। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के दिए निर्देश। और रांची में कल से आयोजित होगी 12वीं जिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता, 600 से अधिक खिलाड़ी लेंगे भाग। और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड के पारा शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार को सहायक शिक्षक और सहायक आचार्य के 50 अतिरिक्त आरक्षित पदों पर केवल पारा शिक्षकों से आवेदन लेकर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार को 10 सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने तथा हर शैक्षणिक सत्र में आरक्षित पदों पर नियमित भर्ती प्रक्रिया चलाने का आदेश दिया है। साथ ही रिक्तियों की पहचान, विज्ञापन जारी करने और नियुक्ति पत्र देने के लिए भी समय सीमा तय की गई है। झारखंड को बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में बड़ी राहत मिली है। दुमका गोविंदपुर ट्रांसमिशन लाइन के एक सर्किट का चार्जिंग कार्य सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद अब JUSNL लगभग 450 मेगावाट तक बिजली प्राप्त कर सकेगा। इस परियोजना से दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, देवघर, गिरिडीह, धनबाद और बोकारो सहित कई जिलों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी और लोड शेडिंग से राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार झारखंड के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त डी सुधाकर राव ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में आयकर विभाग ने निर्धारित 18,500 करोड़ रुपए के लक्ष्य को पार करते हुए 20,000 करोड़ रुपए का कर संग्रह किया है। इसमें झारखंड से 12,000 करोड़ और बिहार से 8,000 करोड़ रुपए का योगदान शामिल है। महेंद्र सिंह धोनी बिहार झारखंड के व्यक्तिगत करदाताओं में सबसे बड़े आयकरदाता बने हैं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में आज समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
15: यह आरक्षण प्रणाली वर्ष 1986 में शुरू की गई और पिछले 40 वर्षों में इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इसकी क्षमता का व्यापक विस्तार किया गया है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसी परिवर्तन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष जुलाई में रेलवन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। रेलवन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है। इस पर वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। अक्षत कुमार वेद्यान के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
14: झारखंड विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने देवघर में विभिन्न विभागों की योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क और पुनासी परियोजना समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस मौके पर हेमलाल मुर्मू ने कहा कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा किया जाए।
16: सभी विभागों को बहुत ही गहनता के साथ हम लोगों ने समीक्षा किया है और जो डायरेक्शन देना था उचित, जो जनहित के लिए, वो डायरेक्शन हम लोग दे दिए हैं और उसको टाइम टेबल वगैरह फिक्स किया है। इतना दिन के अंदर उसको पूरा कर लेना है, यही आज की मीटिंग है।
14: रांची नगर निगम की महापौर रोशनी खलखो ने जनगणना 2027 के तहत मोबाइल फोन के माध्यम से स्वयं और अपने परिवार की स्वगणना की। उन्होंने बताया कि जनगणना का पहला चरण 1 से 15 मई तक चलेगा, जिसमें नागरिक वेबसाइट सेंसस सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल पर अपनी जानकारी अपलोड कर यूनिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जामताड़ा जिले में रजिया नदी पर सौर्य ऊर्जा संचालित उद्धव सिंचाई परियोजना का शिलान्यास मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने किया। इस योजना के तहत नदी का पानी लिफ्ट कर सैकड़ों एकड़ भूमि तक पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि यह परियोजना किसानों के लिए वरदान साबित होगी और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगी।
17: निवासियों का जो गांव मंडल का जो गांव है, यादव का जो गांव है, वो नदी से ऊपर है और यहाँ पर अगर आप लिफ्ट इरिगेशन दे देते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ के किसानों को लाभ मिलेगा, आदिवासियों को लाभ मिलेगा। ये रजिया नदी पर सिंधवा जो पंचायत है, हमारा गांव है, तैनी पंचायत में हमने बहुत बड़ा लिफ्ट इरिगेशन दिया है। यहाँ के लोग अब नदी से पानी उठाएंगे और अपने खेतों तक पहुँचाएंगे।
14: रांची यातायात पुलिस ने शहर में बिना वैध दस्तावेज और क्षमता से अधिक सवारी बैठाकर चलने वाले बस, ऑटो और टोटो वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। चलाए गए अभियान के दौरान कुल 111 वाहनों पर कार्रवाई की गई। इनमें 3 बस, 103 ऑटो और 5 टोटो वाहन शामिल हैं। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों और मालिकों से वैध कागजात रखने तथा निर्धारित क्षमता के अनुसार ही सवारी बैठाकर वाहन चलाने की अपील की है। झारखंड में अपराधियों से निपटने के लिए पुलिस को हाई स्पीड बाइक दी जा रही है। इस कड़ी में हजारीबाग पुलिस को 42 नई बाइक मिली है, जिन्हें पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि ये बाइक संकीर्ण गलियों और मोहल्लों में तेज पेट्रोलिंग तथा अपराधियों का पीछा करने में मददगार साबित होगी।
18: झारखंड सरकार के द्वारा पेट्रोलिंग के लिए बाइक्स दिए गए थे, 42 बाइक नए आए थे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन और पुराने बाइक्स का भी रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जिसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं शहर के थानों को और जहां पे अर्बन पॉपुलेशन या पॉपुलेशन बहुत घना है वहां के थानों को, ताकि वहां पर पेट्रोलिंग हम लोग बाइक से भी कर सके। स्पॉट्स को हम लोग कवर करें जहां अड्डेबाजी होती है, जहां परेशानी होती है, जहां आम नागरिक ज्यादा डेंसिटी में रहते हैं, वहां पर बाइक्स की पेट्रोलिंग हम लोग करें।
14: रांची रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने जांच अभियान के दौरान 13 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। आरपीएफ के अनुसार सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब्त मादक पदार्थ को आगे की कार्रवाई के लिए जीआरपी रांची को सौंप दिया गया। मौसम। झारखंड में चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से आज से 13 मई तक मौसम में उतार चढ़ाव बना रहेगा। मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज हवा, बारिश और वज्रपात की आशंका को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रांची समेत कई जिलों में 9 और 10 मई को 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और बारिश होने की संभावना जताई गई है। ताइक्वांडो। रांची में कल से 12वीं रांची जिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। रांची जिला ताइक्वांडो संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में जिले भर से करीब 600 खिलाड़ी, कोच, मैनेजर और रेफरी विभिन्न स्कूल, कॉलेजों और क्लबों की ओर से भाग लेंगे। प्रतियोगिता के पहले दिन सब जूनियर और जूनियर वर्ग, जबकि दूसरे दिन कैडेट और सीनियर वर्ग की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। चयनित खिलाड़ी वर्ष भर जिला टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने बिहार में हुए 32 मंत्रियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की खबरों को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर लिखता है, पश्चिम बंगाल में आज होगी मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा, शपथ ग्रहण कार्यक्रम कल। प्रभात खबर की सुर्खी है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, तैराकी प्रतिभाओं को उपलब्ध कराई जाएगी अत्याधुनिक सुविधा। हिंदुस्तान ने लिखा है, ऑपरेशन सिंदूर पर पाक के खिलाफ अभियान पर सेनाओं ने किया खुलासा, 100 आतंकी मारे गए। दैनिक जागरण की सुर्खी है, दूसरे राज्यों के चिकित्सकों को झारखंड में निबंधन से मिलेगी छूट। और अंत में मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 50% आरक्षित पदों पर पारा शिक्षकों से आवेदन लेकर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का दिया निर्देश। दुमका गोविंदपुर ट्रांसमिशन लाइन शुरू, झारखंड को मिलेगा 450 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का लाभ। संथाल परगना समेत कई जिलों में बिजली आपूर्ति होगी मजबूत। झारखंड बिहार में आयकर विभाग ने 20,000 करोड़ रूपये का कर किया संग्रह, महेंद्र सिंह धोनी बने सबसे बड़े व्यक्तिगत आयकरदाता। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली करेगा लागू, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के दिए निर्देश। और रांची में कल से आयोजित होगी 12वीं जिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता, 600 से अधिक खिलाड़ी लेंगे भाग। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 8:44 और 47 सेकेंड्स हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी।

कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए सुनते कार्यक्रम का पहला गाना, जिसे हमने लिया है फिल्म सबूत से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

0: 87 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम को। इसी के साथ और फिल्म का नाम था दोस्त वंश, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम मॉर्निंग में लोटी यहीं समाप्त होता है। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:59 हुए हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से।

भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे।

0: फिर से आपका स्वागत है बहुत बहुत चित्रलोक कार्यक्रम में।
1: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
2: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
1: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
2: चलो चले मितवा।
1: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए। आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
2: आजा शाम होने आई।
0: चित्रलोक कार्यक्रम में आपको आप सुनवा रहे हैं सत्यमेव जयते 2 फिल्म का गाना। ज़ारा अस्खान और जास मानक की आवाज़ें हैं। गीतकार हैं तनिष्क बख्शी।

सत्यमेव जयते टू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है लोगों में उदारता, सहानुभूति, मदद और निस्वार्थ भाव से सेवा की भावना को मजबूत करना, बढ़ावा देना है। ये दिन रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े उन लोगों को के सम्मान को सम्मान देने के लिए भी मनाया जाता है जो युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और संकट के समय बिना किसी भेदभाव के लोगों की सहायता करते हैं। सभी के लिए ये दिन मानवता के प्रति अपने जिम्मेदारी समझने का भी संदेश देता है। लोगों को चाहिए कि जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आएं, रक्तदान के प्रति जागरूक हों और संकट के समय एक दूसरे का सहारा बनें। कई बार किसी के लिए हमारी छोटी सी मदद, छोटी सी सहायता बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। चित्रलोक कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं ये। ये धड़क टू फिल्म का गीत है।

0: श्रेया घोषाल और जुबिन नौटियाल की आवाजों में रश्मि बिराग का लिखा गीत आप सुन रहे थे। धड़क टू फिल्म का नाम था। आप सुन रहे हैं इस समय चित्रलोक कार्यक्रम।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
4: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
5: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
4: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
5: चलो चले मितवा।
4: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए विविध भारती के सदस्यों के साथ। वॉक कीजिए
6: चलते चलते
4: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
5: आजा शाम होने आई।
0: आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। 9:15 और समय है एक और ब्रेक का।

ब्रेक के बाद फिर स्वागत। अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की आवाजों में आर राजकुमार फिल्म का ही गीत।

आर राजकुमार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की थीं। गीतकार थे नीलेश मिश्रा और स्वानंद किरकिरे, दोनों ने इस गीत को मिलकर लिखा। आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम इस समय। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 8 मई से मनाया जाता है। ये सप्ताह सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। लोगों को चाहिए कि वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखें, हेलमेट सीट बेल्ट का उपयोग करें और ट्रैफिक संकेतों का पालन करें। पैदल चलते हुए इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना, मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी न चलाना और लाल बत्ती पर रुक जाना, इन सभी बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। कई बार लोग ये कहते हैं और सोचते हैं कि घर तो पास ही है, लेकिन दुर्घटनाएं दूरी देखकर नहीं होते।

0: चित्रा और स्वानंद किरकिरे की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे स्वानंद किरकिरे और संगीतकार थे शांतनु मोइत्रा। परिणीता फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना।
1: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
2: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
1: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
2: चलो चले मितवा।
1: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए। विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।

ऋत्विक तराशिलकर और साथियों की आवाजों में मलाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार, आप स्वस्थ और समृद्ध रहिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाज।

0: बुलंद हो गई, डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया। कहने लगे, बरखुरदार, अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकर की, जिसने साल 1973 से साल 1989 के बीच अमिताभ बच्चन के साथ एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में बनाई और सिनेमा के इतिहास पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवा लिया।

0: धन्यवाद।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे जाने माने फिल्मकार प्रकाश मेहरा की। प्रकाश मेहरा का जन्म 13 जुलाई 1939 को बिजनौर में हुआ था और उनकी परवरिश दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके में हुई। एक सामान्य परिदृश्य में पले बढ़े प्रकाश मेहरा ने आम आदमी की जिंदगी को बहुत करीब से देखा, उसके दुख दर्द, उसके जीवन की कमियों को और उसके जीवन में हो रही नाइंसाफियों को अपने जहन के भीतर जज्ब किया। तब उन्हें पता नहीं था कि वो आगे चलकर बन जाएंगे फिल्मकार और उनका नायक एक आम आदमी होगा जो बड़े बड़े कारनामे करेगा। सन 1950, प्रकाश मेहरा मुंबई आए नौकरी की तलाश में और किसी तरह से जिंदगी उन्हें फिल्मों की दुनिया में ले गई। वो बन गए प्रोडक्शन मैनेजर। बरस दर बरस प्रकाश मेहरा जिम्मेदारी भरा ये काम करते रहे और उसके बाद उन्होंने एक लकीर पार की। सन 1968 प्रकाश मेहरा के निर्देशन में पहली फिल्म आई हसीना मान जाएगी।

हसीना मान जाएगी शशि कपूर की एक बेहतरीन फिल्म में शुमार हुई। ये फिल्म बेहद कामयाब थी। प्रकाश मेहरा की इस फिल्म के जरिए धाक जम गई। हसीना मान जाएगी बनाने के बाद प्रकाश मेहरा ने कुछ और फिल्में बनाई और इन फिल्मों के जरिए जैसे वो अपने मुहावरे को तलाश कर रहे थे, जैसे फिल्म संसार कदम दर कदम एक लेजेंड फिल्म मेकर तैयार कर रहा था। सन 1971 संजय खान और फिरोज खान को साथ मिलकर उन्होंने बनाई फिल्म

प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों की कहानी पर बड़ा जोर देते थे और कोई अच्छी कहानी उनका मन मोह लेती थी। ऐसी ही एक अच्छी कहानी थी एक पुलिस वाले की कहानी, और प्रकाश मेहरा इस कहानी को लेकर अलग अलग नायकों के पास जाते रहे। ये नायक इस कहानी को ठुकराते रहे, लेकिन प्रकाश मेहरा का विश्वास कम नहीं हुआ। इस कहानी को एक तरफ रखा और सन 1972 में वो लेकर आए समा

इसी साल उनकी फिल्म आई आन बान। आखिरकार एक के बाद एक कई फ्लॉप फिल्म देने वाले एक बेहद लंबे कद के दुबले पतले अभिनेता अमिताभ बच्चन को लेकर उन्होंने अपनी उस महत्वाकांक्षी फिल्म पर काम शुरू किया। सन 1973 20 मई का दिन फिल्म जंजीर रिलीज हुई और इस

0: ने अमिताभ बच्चन को बना दिया एंग्री यंग मैन। दरअसल एंग्री यंग मैन ये जो जुमला है ये नाटककार जॉन ऑसबोर्न के प्ले लुक बैक इन एंगर से लिया गया है। इसी नाम की एक फिल्म बनी है। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर के जरिए एंग्री यंग मैन बना दिया।
1: यही है वो इलाका जहां लोग तुम्हें जानते हैं शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और न ही मैं ड्यूटी पर हूँ। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूँ।
2: मतलब का बात बोलू साहब।

आज इतने बरस बाद भी फिल्म जंजीर एक कल्ट फिल्म मानी जाती है, एक कालजयी फिल्म जिसने एक बेमिसाल निर्देशक और एक जबरदस्त हीरो हिंदी फिल्म सिनेमा को दिया। फिल्म जंजीर के बाद प्रकाश मेहरा ने अगले 15 वर्षों में अमिताभ बच्चन के साथ 7 फिल्में और बनाई। आइए एक के बाद एक इन फिल्मों से होकर गुजरें। सन 1976, खून पसीना।

0: 1981 प्रकाश मेहरा के करियर का एक बेमिसाल साल रहा। इस साल वो लेकर आए मुकद्दर का सिकंदर, एक बार फिर अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना एक साथ।
1: सिकंदर का है।
2: मैं आया हूँ विशाल।
1: पंडित जी शुरू कीजिए।
3: मंगलम भगवान
1: अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूँ।
3: वस्त्र कंधे पर रख मान।
2: सिकंदर, सिकंदर, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं मेरे यार, जरा सी झड़प हो गई। कैसे हुई? बाल कैसे हुई?
4: नहीं बताती।
2: नहीं,
4: दिलावर मुझे उठा कर ले गया था। सिकंदर मुझे बचा कर यहाँ ले आया। अगर सिकंदर नहीं होता तो मैं भी दुनिया में नहीं होती।
2: बस बस करो मैम साहब।
1: मैम साहब,
2: क्या काम ना है तेरे मैम साहब जिससे तू?
1: नहीं
4: मुझे तो सिकंदर सारी जिंदगी मेम साहब को
2: करता।
4: सिकंदर आज मुझे कह लेने दो, आज मुझे कह लेने दो। विशाल सारी जिंदगी सिकंदर मुझसे दिल ही दिल में प्यार करता रहा और मैंने इसे सिवाय नफरत के कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया।
2: सिकंदर ये तुमने क्या किया? क्या?
0: इसी साल आई फिल्म लावारिस।
4: तुम?
5: हाँ मैं। तुमने मुझे लावारिस कहा? जानती हो लावारिस क्या होता है?
6: मेम साहब लावारिस गंदी नाली का वो कीड़ा होता है जो न जीता है न मरता है। अपना पाप समझकर लोग जिसे फुटपाथ पर फेंक जाते हैं मरने के लिए। मौत भी कमबख्त उसे पूरा नहीं खाती, अधमरा छोड़ जाती है तुम्हारे जैसे इंसानों के नोचने के लिए। इस दुनिया में कौन कैसा क्यों है ये जाने बगैर कभी किसी पे छींटे मत कसना। पर गुनाह के पीछे गुनाहगार कौन है ये कोई नहीं जानता।

प्रकाश मेहरा की फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही थीं। अमिताभ बच्चन का सितारा लगातार जगमगा रहा था। जाने माने फिल्मकार मनमोहन देसाई ने प्रकाश मेहरा के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जिसने प्रकाश मेहरा की फिल्में नहीं देखी हों। एक ऐसा फिल्मकार जिसने ब्लॉकबस्टर टर्म को जन्म दिया, एक ऐसा फिल्मकार जिसने हिंदी सिनेमा में मसालेदार सिनेमा का नया व्याकरण गढ़ा और सारे देश को अपने तिलस्म की गिरफ्त में ले लिया। सन 1982 में आई नमक हलाल। सन 1984 अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के जादुई साथ की फिल्म शराबी। कहते हैं कि जब सूरज बहुत तेज चमके उसके बाद शाम नजदीक होती है। एक के बाद एक कमाल की फिल्में देने के बाद जैसे वक्त करवट ले रहा था। सन 1989 प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन के साथ वाली एक बड़ी फिल्म आई जादूगर। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म चारों खाने चित हो गई। ऐसा लगा जैसे एक बेमिसाल फिल्मकार का जादू टूट गया। एक वक्त था जो पीछे छूट गया, एक चमक थी जो मध्यम पड़ गई, एक कहानी थी जो खत्म होने लगी। अमिताभ बच्चन के अलावा प्रकाश मेहरा ने दूसरे कलाकारों के साथ भी काम किया है। सन 1974 में प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली फिल्म आई थी हाथ की सफाई।

सन 1991 में अनिल कपूर को लेकर प्रकाश मेहरा ने बनाई जिंदगी एक जुआ। सन 1996 में जाने माने अभिनेता राजकुमार के बेटे पुरू राजकुमार को फिल्मों में उतारने के लिए उन्होंने निर्देशित की बाल ब्रह्मचारी। ये प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली आखिरी फिल्म थी। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने किसी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। सन 1993 में आई फिल्म दलाल के निर्माता प्रकाश मेहरा ही थे। इस फिल्म के निर्देशक थे पार्थो घोष। प्रकाश मेहरा ने एक जमाने में अमिताभ बच्चन से ये वादा किया था कि जिस दिन वो हिट फिल्म नहीं बना पाएंगे उस दिन अमिताभ बच्चन के साथ काम करना बंद कर देंगे। सन 1989 के बाद प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म नहीं की। प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन, इन लोगों ने मिलकर हिंदी सिनेमा का एक नया इतिहास गढ़ा है, ब्लॉकबस्टर फिल्मों का इतिहास। वो समय जरूर बीत गया लेकिन मसालेदार फिल्मों का दौर नहीं बीता। अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा को चाहने वाले आज भी बड़े चाव से देखते हैं 70 और 80 के दशक की वो बेमिसाल फिल्में।

17 मई 2009 प्रकाश मेहरा ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। पीछे रह गईं उनकी बनाई बेमिसाल फिल्में, वो कहानियां जिन्होंने हमें हंसाया और रुलाया, वो कहानियां जिन्होंने हमारा दिल जीता, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने तालियां बजाई, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने निर्देशक की वाह वाह की। आज प्रकाश मेहरा नहीं है, लेकिन उनका सिनेमा है, और उस सिनेमा का कमाल है, किसी लेखक ने कहीं लिखा, फॉर्मूला खत्म नहीं होता। प्रकाश मेहरा की फिल्मों का फॉर्मूला आज दूसरे निर्देशकों की फिल्मों में जिंदा है। फॉर्मूला कभी खत्म नहीं होता। फॉर्मूला फिल्मों में प्रकाश मेहरा हमेशा जिंदा रहेंगे।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के बेमिसाल निर्देशक प्रकाश मेहरा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे कयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 9:59:55 में हैं। आइए सुनते हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।
1: 10 9 8 7 6

0: प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग। और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों संग हेलो हजारीबाग।
1: कार्यक्रम हेलो हजारीबाग सुन रहे सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, साथ ही स्वीकार करें परमेंद्र कुमार मिश्रा की ओर से सप्रेम नमस्कार भी। दोस्तों, अच्छी सुबह वो होती है जब हम दिन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत अच्छे गीतों और अच्छे विचारों के साथ करते हैं। इससे मन प्रसन्न और ऊर्जावान रहता है। मधुर गीत, प्रेरणादायक गीत या हल्के गीत सुनने से सकारात्मक विचार आते हैं। दिन भर ताजगी बनी रहती है। सुबह के शांत वातावरण में संगीत मन को शांति देता है, तनाव कम करता है। यदि हम योग, प्रार्थना या टहलने के साथ संगीत का भी आनंद लें तो शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। अच्छे गीत हमें प्रेरणा देते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। इसीलिए हर दिन की शुरुआत मधुर संगीत और अच्छे विचारों से करनी चाहिए ताकि पूरा दिन खुशहाल और सफल बन सके। तो दोस्तों, अब एक गीत के साथ कार्यक्रम का आगाज करते हैं। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में गाए इस गीत को, और इस गीत में साथ दे रहे मोहम्मद रफी साहब।

0: और दोस्तों, अब हम जानते हैं आज के मौसम का हाल, शहर की गतिविधियां और सराफा बाजार के बारे में। आज अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस होगा। आज हवा चलेगी, बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश की संभावना है और मौसम में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। शहर में अगर हम अनुष्ठान की बातचीत करें तो भगवद्गीता का पाठ किया जाएगा झील सेंटर में शाम के 6 बजे, और आज ही उपायुक्त जनता दरबार लगेगा उपायुक्त सभागार में 10:30 बजे से, यानी 10:30 पर। सोना आज 22 कैरेट 1,41,500 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी प्रति किलो 2,68,000 रुपये होगा। ये तो हो गई सराफा बाजार की बात। और दोस्तों, आज है 8 मई, दुनिया भर में मनाया जाता है आज 8 मई को रेड क्रॉस सोसाइटी दिवस। यह दिन मानवीय सेवा, करुणा और स्वैच्छिक योगदान के प्रति समर्पण को दर्शाता है। 1859 में सेल्फ हीरोनों के युद्ध की भयावहता और घायल सैनिकों की दयनीय स्थिति देखकर हेनरी डुनेंट ने एक संगठन की स्थापना की, और उन्होंने महसूस किया कि युद्ध में निष्पक्ष रूप से घायलों की मदद भी हो सके, और इसीलिए हेनरी डुनेंट को ही 1901 में दुनिया का पहला नोबेल शांति पुरस्कार मिला। यह दिन उन लाखों स्वयंसेवकों और कर्मचारियों के कार्यों को मान्यता देता है जो युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं, स्वास्थ्य आपात स्थितियों में लोगों की मदद करते हैं। यह दिन याद दिलाता है कि बिना किसी भेदभाव के, चाहे वह धर्म, जाति या राष्ट्र का हो, किसी भी धर्म, जाति या राष्ट्र का हो, संकट के समय मानवता की सेवा करना सर्वोच्च कर्तव्य है। यह दिन हेनरी डुनेंट की विरासत और उनके मानवीय विचारों को याद करने का अवसर भी है। और दोस्तों, आज हम सभी उनको याद करते हैं उनके जन्मदिन के अवसर पर। आज हम आपके लिए एक भेंट वार्ता लेकर के आए हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी ने गढ़े समाज के नए सोपान। भेंट वार्ताकार हैं तनवीर सिंह, जो रेड क्रॉस सोसाइटी हजारीबाग के सचिव हैं। भेंटकर्ता प्रवीण कुमार मिश्रा।
1: श्रोताओं, यूं तो मानवीय संवेदना का सामाजिक संस्थाओं के काम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जब संस्थाएं मानवीय संवेदना को अपनाती हैं, तो वे सिर्फ आर्थिक सहायता ही नहीं करती, बल्कि लोगों के दर्द, उनकी जरूरतों को भी समझती हैं। इससे समाज में विश्वास, सहानुभूति और सहयोग बढ़ता है, वंचित वर्गों को सशक्तिकरण मिलता है और समाज में एक न्यायपूर्ण, समावेशी और समृद्ध वातावरण का निर्माण होता है। इसी संदर्भ में आज हमारी बातें हो रही हैं श्री तनवीर सिंह जी से, जो रेड क्रॉस सोसाइटी हजारीबाग के सचिव हैं। तो सर, आपको आकाशवाणी परिवार की ओर से नमस्कार।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने लोगों तक एक अच्छा संदेश पहुंचाने के लिए ये एक इंटरव्यू लाइनअप किया है। मैं रेड क्रॉस सोसाइटी के झारखंड इकाई का वाइस चेयरमैन हूं और हजारीबाग रेड क्रॉस सोसाइटी का सचिव हूं।
1: वर्षों से आप इस संस्था के माध्यम से समाज को पोषित कर रहे हैं, और इसकी स्थापना के बारे में कुछ जानकारी आप हमारे श्रोताओं से साझा करें।
2: जो ये रेड क्रॉस सोसाइटी है, ये एक पूरे विश्व में संस्था चलती है, और इसका जो पहली बार स्थापना हुआ था वो 1863 में जिनीवा स्विट्जरलैंड में हुआ था, और इसको स्थापना करने वाले थे हेनरी डुनेंट, जिन्होंने इसकी स्थापना लोगों के भलाई के लिए और लोगों के मेडिकल उपचार के लिए किया था। उस समय काफी जगह पर लड़ाइयां चल रही थी, दो देश के बीच में लड़ाइयां चल रही थी, और वहां पर लोग घायल हो रहे थे,
1: सैनिक
2: घायल हो रहे थे, कुछ सिविलियंस जो थे वो भी घायल हो रहे थे इन लड़ाइयों में। तो इन्होंने इसकी जो स्थापना की थी, उसमें सैनिकों को मदद करने के लिए, सैनिकों का उपचार करने के लिए, जो सिविलियंस घायल हो रहे थे उसका उपचार करने के लिए की थी, और उसमें ये नहीं देखा जा रहा था कि किस देश के सैनिक को चोट लग रही है या वो घायल हो रहे हैं। इसको ह्यूमैनिटेरियन एंगल से किया गया था कि जो भी सैनिक, जो भी इंसान घायल हो रहा है, चाहे वो किसी भी प्रांत, किसी भी देश, किसी भी जाति का हो, उसको बचाने के लिए, उसको सहायता देने के लिए ये मेजरली रेडक्रॉस शुरू किया गया था। धीरे धीरे इसका पूरे विश्व में विस्तार हुआ, और भारत में 7 जून 1920 में इसकी स्थापना हुई। और ये भारत में जो इसकी स्थापना हुई है, वो इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी एक्ट 1920 के तहत में हुई है, और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो सभापति होते हैं, वो पूरे देश के जो सभापति हैं, वो हमारे देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं, और उसी तरह हर स्टेट के जो हमारे महामहिम गवर्नर होते हैं वो उस स्टेट के प्रेसिडेंट होते हैं, और फिर उसके नीचे हर डिस्ट्रिक्ट में इसकी एक इकाई होती है, और वहां के जो उपायुक्त महोदय होते हैं, पदेन उपायुक्त जो होते हैं, ये पदेन है, तो वो इसके अध्यक्ष होते हैं, और उसी तरह फिर उनके नीचे सोसाइटी के और मेंबर्स होते हैं जो लोग लोगों की भलाई का काम करते हैं।
1: हजारीबाग में रेडक्रॉस सोसाइटी का जो कार्यालय है वो कहाँ?
2: हजारीबाग में रेडक्रॉस सोसाइटी का कार्यालय इंदरपुरी चौक के पास है, और हमारे लिए एक बहुत अच्छी और गर्व की बात है कि उस रोड का जो नाम है वो रेडक्रॉस रोड ही है। तो आज अगर आप देखेंगे सरकारी कागजों पे तो उस रोड का नाम भी रेडक्रॉस रोड है, और उसी रोड पे एक रेडक्रॉस बड़ा अच्छा सा हमारे पास भवन है, और वहीं से हम लोग इसका सारा रोज का कार्यक्रम है वो सारा वहां से देखते हैं। साथ ही साथ हम लोग हजारीबाग रेडक्रॉस सोसाइटी के अंडर में एक ओल्ड एज होम भी संचालित करते हैं। अच्छा। जिसमें 50 लोगों को रखने की हमारे पास क्षमता है, और एट प्रेजेंट अभी तकरीबन 30 लोग वहां पर हमारे यहाँ रहते हैं, जो वृद्ध हैं, जो अपने घर में रहने में असमर्थ हैं, जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, वो लोग हमारे यहाँ आकर के रहते हैं, और ये जो हम सेवा करते हैं ये टोटली निशुल्क है, उनको किसी भी तरह से कोई भी चीज का पैसा नहीं देना पड़ता है वहां रहने के लिए, और वहां रहने के लिए हम उनको उनका कमरा देते हैं जिसमें उनके लिए रहने के लिए पलंग रहता है, उनके कपड़ों के लिए अलमारी रहती है, 3 समय का खाना रहता है, क्योंकि बुजुर्ग हैं तो उनको दवाइयां दी जाती हैं जरूरत पे, हर 15 दिन में मेडिकल कैंप, फिजियोथेरेपी कैंप, इस तरह का कैंप लगते रहता है। कैंपस काफी बड़ा है तो बुजुर्गों को सर्दी के समय में धूप सेकने के लिए खुली जगह मिलती है, और गर्मी के समय में वहां पर इन्वर्टर वगैरह लगा है तो उनका निरंतर पंखा चलते रहता है, और हम अपने तरफ से जो मैक्सिमम सुविधा उनकी जिंदगी को, जो उनका आखिरी चरण है जिंदगी का, उसको जितना सुखद बना सके हमारी उसकी वही कोशिश रहती है।
1: अच्छा, ये इसके साथ साथ जो अज्ञात शव वगैरह है उसके संस्कार के लिए जो कुछ रेडक्रॉस सोसाइटी है वो भी बहुत कुछ कर रही है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी।
2: जो अज्ञात शव मिलते हैं हमारे हॉस्पिटल में या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक सीओ थाने के माध्यम से, तो उसका जो नियमतः तरीका होता है कि इतने घंटों तक उस शव को हम लोगों को मॉर्चरी में रखना है, और जब उसका कोई क्लेमेंट नहीं होता है तो एज पर दी रूल परमिशन लेकर के उसका दाह संस्कार कराना है। वो हम लोग डायरेक्टली रेडक्रॉस के थ्रू नहीं करके, हमारे ही रेडक्रॉस के मेंबर्स हैं उनके थ्रू ये हम लोग कार्य कराते हैं।
1: तो और क्या एम्बुलेंस वगैरह भी आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं?
2: हमारे पास एम्बुलेंस भी है, और हमारे जो यहाँ के सांसद महोदय हैं श्री मनीष जायसवाल जी, जो हमको आज नहीं पिछले 15 वर्षों से, जब से मैं उनको सामाजिक कार्यक्रम के लिए जान रहा हूँ, वो अपने निजी फंड से, जब वो विधायक थे विधायक फंड से, और अब जो वो सांसद है वो सांसद फंड से, उनसे निरंतर हमको काफी सहूलियत मिलती है। उसी तरह अभी जो हमारे विधायक प्रदीप प्रसाद जी हैं, उनके तरफ से भी जब भी हम लोगों को कोई आशा होती है तो हम उनके तरफ से भी कभी निराश नहीं होते हैं, उनके तरफ से भी हमको काफी हद तक सहयोग मिलता है। पहले तो मैं बता दूं कि ये 8 मई जो रक्तदान दिवस हम लोग मनाते हैं, विश्व रक्तदान दिवस, ये रेडक्रॉस सोसाइटी को एस्टैब्लिश करने वाले जो हेनरी डुनंट थे, ये उनका बर्थ एनिवर्सरी है, उसी दिन को रखते हुए ये विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। और वैसे तो हम लोग पूरे साल भर ही जब मौका लगे जितना मौका लगे रक्त एकत्रित करते हैं, रक्तदान दिवस करते हैं, पर 8 मई को निरंतर हर साल जरूर से एक रक्तदान दिवस लगता है उनको ऑनर करने के लिए। और हजारीबाग में भी हर साल 8 मई को हम लोग रक्तदान दिवस मनाते हैं, रक्तदान कैंप लगाते हैं, और जितना भी ज्यादा से ज्यादा रक्त इकट्ठा हो सके वो हम लोग करते हैं। इस हजारीबाग में रक्तदान बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हजारीबाग से सटे हुए जितने भी जिले हैं, चाहे वो चतरा हो गया, चाहे वो कोडरमा हो गया, या आसपास के छोटे जितने भी ब्लॉक्स हो गए, वो बड़का गांव हो गया, चाहे चतरा टंडवा हो गया, इन सब जगह में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अच्छी जो मेडिकल सुविधा है वो हजारीबाग में है। तो इसके कारण से हजारीबाग में जो इनफ्लो ऑफ पेशेंट है वो बहुत हाई है,
1: बहुत ज्यादा
2: है। आज अगर आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो मुझे लगता है 30-50% जो पेशेंट हैं वो हजारीबाग के बाहर डिस्ट्रिक्ट के हैं, पर अब ब्लड की उपलब्धता तो क्योंकि वो हजारीबाग में आए हैं तो हमको हजारीबाग में ही करानी होगी। प्लस यहाँ पर आज की डेट में अनुमानित 300 थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं, और थैलेसीमिया पेशेंट ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अपना रक्त बनाने की क्षमता उनकी शरीर में नहीं होती है या बहुत ही कम होती है, जिसको हर महीने 15 दिन में ब्लड चढ़ाना होता है। तो उन बच्चों को ससमय ब्लड मिल सके, ये हमारी और हजारीबाग के कई समाज सेवियों की हमेशा सबसे प्रायोरिटी लिस्ट पे काम रहता है। तो इन सब लोगों के लिए हमको ब्लड डोनेशन कैंप निरंतर लगाते रहना पड़ता है, और मेरा आपके रेडियो के माध्यम से जो भी इसके श्रोता जहां भी सुन रहे हैं उनसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप ब्लड जरूर दें। आप अगर एक हेल्दी पर्सन हैं तो आपका ब्लड देने से आपकी हेल्थ और इम्प्रूव होती है, और आप हर 90 दिन में यानी 3 महीने में ब्लड दे सकते हैं, और ब्लड देने से आपकी कहीं काफी बीमारियां दूर होती हैं, और काफी सारी ऐसी बीमारियां हैं जो लगातार जो रक्त देते हैं उनको वो रक्त की बीमारियां कभी नहीं होती हैं।
1: अच्छा, जो रक्त दान करने के लिए आते हैं या आना चाहते हैं तो उनको क्या सहूलियतें मिलती है, जैसे उनको अगर कभी भविष्य में रक्त की आवश्यकता हो जाए तो क्या उसको रेडक्रॉस सोसाइटी ब्लड देगी?
2: सर, जब आप रक्त दान करते हैं तो आपको हम लोग रक्त दान करने के लिए आपको प्रोत्साहन का एक सर्टिफिकेट देते हैं। वो सर्टिफिकेट जो है, अगर भगवान ना करे आपको भी कभी किसी कारण से या आपके किसी परिवार के जन को किसी कारण से रक्त की जरूरत पड़ जाए, तो उस सर्टिफिकेट के प्रूफ से आपको हम लोग रक्त उपलब्ध कराते हैं बिना रिटर्न में रक्त डोनेट किए, यानी कि उस सर्टिफिकेट के प्रमाण पत्र के वैल्यू से आपको वहां पर रक्त एक यूनिट फ्री दिलाते हैं। वैसे तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी रक्त की कमी से आए उसको रक्त जरूर इकट्ठा करा के दिया जाए, पर जिस इंसान ने बिना किसी लोभ के बिना किसी सोच के किसी को ब्लड दिया है तो हमारा दायित्व बनता है कि जब उसको खून की जरूरत मिले तो हमारी पूरी सोसाइटी कोशिश करती है कि उसको सबसे पहले ब्लड का इंतजाम कराया जाए, ताकि उनको हमेशा किसी दूसरे को मदद करने में प्रोत्साहन उनका जो बरकरार रहे।
1: इसीलिए कहा गया है कि रक्तदान महादान, सबसे बड़ा दान भी है।
2: जी देखिए, रक्त एक लौती ऐसी चीज है ना जिसको किसी फैक्ट्री में किसी के घर में बनाया नहीं जा सकता है, ये एक अंग दान के बराबर की चीज है। आज आप अपनी बॉडी से रक्त निकाल करके किसी भी ऐसे इंसान को रक्त दे रहे हैं जो शायद उसके लिए जान बचाने का काम करता है, तो आपका ये जो रक्त दान है इसीलिए इसको महादान कहा जाता है, क्योंकि आज आप डॉक्टर तो नहीं है पर रक्त दे करके किसी की जान बचाने में उतनी ही सहभागी कर रहे हैं जितनी एक डॉक्टर आधी रात को जाकर के आपको बचाने की जो कोशिश करता है, तो आपकी कोशिश भी उनसे कहीं कम नहीं होती है।
1: अच्छा, आप हमें ये बताइए तन्वीर सिंह जी कि रेड क्रॉस सोसाइटी इसके द्वारा भविष्य में आप किन किन कार्यों को करने जा रहे हैं?
2: हम लोग अभी तो तत्काल में एक जैसे आज की डेट में जो ब्लड बैंक है वो हमारा शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में है, और हम लोग उसी से अटैच होकर के उसी में ब्लड देते हैं और वहीं से ब्लड दिलाते हैं। ब्लड की कमी को देखते हुए और उसकी और उपलब्धता को बढ़ाने के लिए हम अभी कार्यरत हैं एक और नया ब्लड बैंक बनाने में। तो उससे क्या होगा कि जहां 2 ब्लड बैंक हो जाएंगे तो कुछ लोगों को ज्यादा राहत होगी। तो अभी हमारा ब्लड बैंक करीब 80% बन चुका है, 20% काम बाकी है, तो हम इसी कोशिश में हैं कि इस साल हम लोग एक नया ब्लड बैंक भी बना लें। ये बनेगा रेडक्रॉस भवन में। इसके साथ साथ ही हम लोग और भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं उनको जो आयरन की कमी और बाकी मिनरल्स की कमी होती है उसकी हम लोग साथ साथ में आगे से जब भी उनको ब्लड चढ़े उनकी दवाइयां मुफ्त मुहैया कराएं, ताकि उनकी सेहत हमेशा बेहतर की तरफ जाए। साथ में ही हम नहीं चाहते हैं कि कभी भी ऐसी कोई आपदा आए, पर जैसे जब पूरे विश्व में कोरोना की आपदा आई थी तो रेडक्रॉस ने निरंतर 3 महीने लगातार राशन बांटा था, लगातार बना हुआ खाना बांटा था, लगातार जितने भी मजदूर थे प्रवासी मजदूर थे वो जहां पर भी गवर्नमेंट के शेल्टर्स में या जहां पर भी रह रहे थे उनको दवाइयां बांटी थी, उनको सैनिटाइजर बांटा था। इनफैक्ट हम लोगों ने जिला प्रशासन के सहयोग से पूरे हजारीबाग में जितने भी प्रशासनिक ऑफिसेज हैं, एम्बुलेंसेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सीएचसी हैं, पीएचसी हैं, सारों को सैनिटाइजर बांटने का, सैनिटाइजर उपलब्ध कराने का काम, उस समय जो सैनिटाइजर था उस समय हम लोगों ने हर संस्था को सर समय सैनिटाइजर पहुंचाया और जितने भी ऐसे बुजुर्ग थे लोग थे उनको दवाइयां पहुंचाई। उस समय जितने भी थैलेसीमिया पेशेंट्स थे उनको ब्लड दिलाने के लिए हम लोगों ने उस समय एक नई मुहिम चलाई थी जहां हमारी एम्बुलेंस के अंदर में ही जाकर के लोगों के घर से जाकर के हम लोग ब्लड कलेक्ट करते थे और फिर उसको ब्लड को उसकी जितने भी तरह की टेस्टिंग होती है टेस्टिंग करके हम जरूरतमंद पेशेंट्स को वो ब्लड दिलाते थे। तो हमने उस समय डोर टू डोर हम लोगों ने ब्लड कलेक्शन का उस समय मुहिम चलाया था। तो हम तो सर कभी नहीं चाहते हैं कि दोबारा जिंदगी में ऐसी कहीं आप कभी आपदा आए, पर अगर भगवान न करे ऐसी आपदा आए तो उस समय भी मदद करने के लिए रेडक्रॉस सबसे आगे चल के जरूर आएगा। मैं अंततः फिर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी श्रोता यहाँ सुन रहे हैं, आप हर आदमी चाहे वो 100 रुपए कमाता है चाहे वो 1 करोड़ कमाता है, वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जरूर दान पुण्य के लिए रखना चाहता है, तो हमें सर आपका किसी भी तरह से पैसा नहीं चाहिए, पर अगर आप आज एक हेल्दी इंसान हैं तो जरूर आगे आइए, रक्तदान करिए और किसी अनजान आदमी की जिंदगी बचाइए। उसका जो आनंद है वो आपको बिल्कुल ही अलग तरीके का आनंद मिलेगा, वो आनंद आपको किसी और दूसरी जगह नहीं मिल सकता।
1: मुझे लगता है कि रेडक्रॉस सोसाइटी के द्वारा हजारीबाग के और आसपास के क्षेत्रों को काफी लाभ मिला है और आने वाले वर्षों में भी इसका लाभ उन्हें अनवरत मिलेगा, अहर्निश मिलेगा। और तन्वीर सिंह जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आपने अपना बहुमूल्य और बेशकीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे एक भेंटवार्ता, विषय था रेड क्रॉस सोसाइटी ने गढ़े समाज के नए सोपान। भेंटवार्ताकार थे तन्वीर सिंह और भेंटकर्ता प्रमित कुमार मिश्रा। दोस्तों, ये तो हम सभी समझ गए हैं कि रेड क्रॉस सोसाइटी ने विश्व के लिए कितने सामाजिक कार्य किए और आगे भी करते आएंगे और जिससे समाज को गति मिलेगी और समाज जो है वो निरंतर आगे की ओर बढ़ेगा। जानकारी के क्रम में आज हम जानते हैं कि विभिन्न अखबारों में छपी खबरों के अनुसार देखते हैं कि किन खबरों को कौन से अखबार ने प्रमुखता से अपने अखबार में स्थान दिया है। सबसे पहले बातें करते हैं हजारीबाग भास्कर की, तो कई खबरों को इन्होंने प्रमुखता से अपने अखबार में स्थान दिया है। कहता है कि जिले के 140 बैंक और 146 ज्वेलरी दुकानों पर रोज पुलिस लगाएगी हाजिरी। बैंक लूट कांड के बाद पुलिस ने जिले के सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी है। जिले भर में 388 स्थलों को चिन्हित किया गया है, इनके बैंक, पेट्रोल पंप और ज्वेलरी की दुकानें शामिल हैं। यहां हर दिन पुलिस की पेट्रोलिंग टीम जाकर जांच करेगी और बनाए रजिस्टर में उपस्थिति भी दर्ज करेगी। बरही में पिछले दिनों दिनदहाड़े बैंक से लाखों की लूट हुई थी, बदमाश बेखौफ बैंक में घुसे और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। धनवा घाटी में दुर्घटना कम करने के लिए लाल सड़क बनेगा सुरक्षा कवच। जीटी रोड स्थित धनवा घाटी जो लगातार हो रहे सड़क हादसों के कारण दानव घाटी के रूप में चर्चित होती जा रही थी, वहां दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए नई पहल शुरू की गई है। एनएचएआई ने घाटी के दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सड़क पर विशेष लाल पट्टी लगाने का कार्य शुरू किया है। नहर पुल के दोनों ओर लगी सुरक्षा रेलिंग टूट कर गिरी, यह कहना है हजारीबाग भास्कर का। एनएच 522 पर स्थित नहर पुल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है जो कभी भी किसी बड़ी घटना का सबब बन सकता है। विडंबना यह है कि इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं, लेकिन विभागीय स्तर पर इसे दुरुस्त करने की कोई सुगबुगाहट नहीं नजर आ रही है। चौथा गांव जो बगोदर विधानसभा और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, प्रशासनिक रूप से विष्णुगढ़ प्रखंड में आता है। यह स्थान हजारीबाग जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर और बगोदर प्रखंड मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और हम पढ़ते अगले अखबार की तरफ और जानते हैं कि दैनिक जागरण किन खबरों को प्रमुखता से अपने अखबार में स्थान दिया है। विश्वविद्यालय शिक्षक और कर्मियों के लिए अनिवार्य होगा 12 माह का प्रशिक्षण। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों व अंगीभूत कॉलेजों में नियुक्त होने वाले शिक्षकों के लिए 12 माह का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, यह प्रशिक्षण की अनिवार्यता शिक्षकेतर कर्मचारी पर भी लागू होगी। शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति के साथ ही उन्हें यह अनिवार्य प्रशिक्षण नवगठित झारखंड स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी में दिया जाएगा। व्यक्तिगत करदाता के रूप में धोनी की बादशाहत कम। बिहार झारखंड के व्यक्तिगत करदाताओं में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की बादशाहत कायम है। धोनी की बादशाहत, उनका टैक्स लगातार बढ़ा या आयकर संग्रह की बात करें तो दोनों ही राज्यों के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से वित्तीय वर्ष 2025-26 में 18,500 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया था, जिसे आयकर विभाग ने पार करते हुए 20,000 करोड़ रुपये का कर हासिल किया है। इसमें झारखंड से 12,000 करोड़ और बिहार से 8,000 करोड़ रुपये शामिल हुए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में आयकर विभाग को बिहार झारखंड में 20,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया है। कच्चे चेक डैम बनाकर वन भूमि पर होगा जल संरक्षण, पशुओं की बुझेगी प्यास। वन भूमि पर जल का स्तर बरकरार रखने के लिए करीब 6,000 कच्चे चेक डैम बनाए जाएंगे। पहाड़ियों से उतरने वाली नालिकाओं की जगह जगह पर बांध बनाकर ये चेक डैम तैयार किए जाएंगे, जिससे भूमि के ऊपर तो जल मौजूद रहेगा ही, भूगर्भ जल भी रिचार्ज होगा। बांधवगढ़ वन क्षेत्र में यह प्रयोग करने वाले केंद्रीय पर्यावरण विशेषज्ञ दिनेश त्रिवेदी ने बताया कि गर्मी में वन्य जीवों के लिए यह आसानी से उपलब्ध होने वाला जल स्रोत होगा। शराब की हर बोतल पर रहेगी नजर, QR कोड से होगी ट्रैकिंग, यह कहना है हजारीबाग दैनिक जागरण का। राज्य में प्रभावी तरीके से ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू करने पर जल्द निर्णय होगा। शराब निर्माण से लेकर आपूर्ति तक की निगरानी की तैयारी है। इसके लिए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव डॉ. अमिताभ कौशल के निर्देश पर विभागीय अधिकारियों की एक टीम ने राज्य के डिस्टिलरी का दौरा किया। कुछ खबरें शिक्षा जगत से भी हैं। माध्यमिक आचार्य नियुक्ति विवाद में कोर्ट ने कहा प्रार्थी चाहे तो दे सकते हैं पुनर्परीक्षा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस MS सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने माध्यमिक आचार्य नियुक्ति विवाद से संबंधित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों ने पुनर्परीक्षा पर रोक लगाने का आग्रह किया, लेकिन अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत नहीं दी। अदालत ने कहा कि परीक्षार्थी चाहे तो उक्त परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में अब प्रार्थियों सहित सभी 2,819 अभ्यर्थियों और 8 और 9 मई को प्रस्तावित पेपर 2 की दोबारा परीक्षा होने वाली परीक्षा में शामिल होना होगा। और सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और JSC की ओर से अदालत को बताया गया कि उक्त परीक्षा में 24,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। इन खबरों के बाद एक बार फिर से गीत संगीत की दुनिया में लौटते हैं और सुनते हैं कर्ज फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी साहब ने।

इस गीत के बाद एक बार फिर से हम जानकारी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि विभिन्न अखबार में छपी कौन कौन सी खबर है और किन खबरों को इन्होंने प्रमुखता से अपने अखबार में स्थान दिया है। प्रभात खबर की अगर हम बात करें तो क्या कुछ कहता है, आइए देखते हैं। अफसरों की लापरवाही से सिकनी कोलेरी 18 दिन में ही बंद हो गई, 6000 लोगों की रोजी रोटी पर संकट। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम की लापरवाही से काफी जद्दोजहद और प्रयास के बाद शुरू हुआ सिकनी कोलेरी का उत्पादन फिर से बंद हो गया। 13 फरवरी 2026 को यहां से कोयले का उत्खनन शुरू किया गया था, जिसे 12,000 परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लौटी थी, लेकिन यह मुस्कान ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकी और 2 मार्च को यानी 18 दिन में ही उत्पादन बंद कर दिया गया। आगे खबरों की तरफ हम बढ़ते हैं। सम्राट कैबिनेट में 32 मंत्री, 7 नए चेहरे को जगह, ये कहना प्रभात खबर का। करीब 22 दिन पहले बनी सम्राट चौधरी सरकार ने गुरुवार को अपना पहला कैबिनेट विस्तार किया। पटना में ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन ने कुल 32 नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल पूर्व नियोजित थे शुभेंदु के सहयोगी की हत्या, ये कहना है प्रभात खबर का। पीछा किया, रास्ता रोका और बरसाती चंद्रनाथ पर ताबड़तोड़ गोलियां। पश्चिम बंगाल और सीआईडी की टीम उत्तर 24 परगना जिले में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। पुलिस अब तक हत्यारों तक नहीं पहुंच पाई है, सीसीटीवी फुटेज में खंगाले जा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल में साक्ष्य एकत्र किए हैं। हत्यारों का पता लगाने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मान रहे हैं कि हत्या पूर्व नियोजित थी। हत्यारों ने बुधवार की रात करीब 11 बजे रथ के घर से महज 100 मीटर पहले से ही रास्ते में अचानक आगे एक छोटी सी कार खड़ी कर उनके वाहन को रोका। फिर मोटरसाइकिल सवारों में से एक ने नजदीक से रथ पर गोलियां बरसाई। रथ कोलकाता से मध्यमग्राम स्थित अपने घर लौट रहे थे। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी कार छोड़ वहीं भाग गए। मोटरसाइकिल से अलग अलग दिशाओं में भाग निकले। पुलिस ने उस कार को जब्त कर लिया है और वारदात में इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। महंगाई के विरोध में झामुमो का हल्ला बोल। झामुमो ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। झामुमो नेता ने कहा कि बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। शादी से लौट रही अनियंत्रित कार तालाब में डूबी, रामगढ़ के 2 लोगों की मौत, ये कहना है प्रभात खबर का। रांची के तमाड़ स्थित चालीडी गांव के पास बुधवार को मध्यरात्रि कार के जेगो तालाब में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में कमलजीत और रिंकी गुप्ता शामिल है, दोनों रामगढ़ जिले के बरलंगा के रहने वाले थे। हजारीबाग की घटना है। बाइक की डिक्की से 25 लाख रुपए के जेवर उड़ाकर फरार हो गए चोर। चतरा रोड स्थित महाराजगंज बाजार में एक बड़ी चोरी की घटना हुई है। अलखदेव पोदार बुधवार देर शाम अपनी दुकान बंद करने के बाद बाइक की डिक्की में घर ले जाने के लिए कुछ जेवरात रखे थे। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने मौका पाकर डिक्की से लगभग 25 लाख रुपए मूल्य के गहने लेकर फरार हो गए। सीएम बोले ईसांग को मिलेगी वर्ल्ड क्लास कोच की सुविधा, ये कहना है प्रभात खबर का। 7 वर्षीय बालक तैराक ईसांग सिंह ने सीएम हेमंत सोरेन से गुरुवार को काके रोड स्थित सीएम आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। सीएम ने ईसांग को 5 लाख रुपए का चेक, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मौके पर ईसांग की मां ने सीएम के समक्ष राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्विमिंग पूल और कोच की कमी का मुद्दा उठाया। इस पर सीएम ने भुवनेश्वर में तैयारी करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन परिवार इसके लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री ने खेलगांव स्थित स्विमिंग पूल को विकसित करने और ईसांग की बेहतर ट्रेनिंग की व्यवस्था कराने के लिए इंटरनेशनल कोच दिलाने का भरोसा जताया। और दोस्तों अब बढ़ते हैं हिंदुस्तान अखबार की तरफ।
आइए जानते हैं क्या कुछ कहता है। 88 घंटे में 11 एयरबेस, 13 जेट, 100 आतंकी मार गिराए, यह कहना हिंदुस्तान का। ऑपरेशन सिंदूर का एक साल पूरा होने पर भारतीय सेना ने गुरुवार को बताया कि सेना ने 88 घंटों की कार्रवाई में पाकिस्तान के 11 एयरबेस और 13 विमान नष्ट किए थे। एक विमान को 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर मार गिराया था, साथ ही 100 आतंकवादियों को भी ढेर कर दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा भंग, ममता अब मुख्यमंत्री नहीं, यह कहना हिंदुस्तान अखबार का। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर एन रवि ने निवर्तमान राज्य विधानसभा को उसका कार्यकाल पूरा होने के बाद 7 मई से भंग कर दिया। लोकभवन से गुरुवार शाम को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। विधानसभा भंग होते ही उनका मुख्यमंत्री पद अपने आप खत्म हो गया। जब तक नई सरकार शपथ नहीं ले लेती तब तक राज्य का प्रशासन राजभवन की देखरेख में रहेगा। राज्यपाल का यह फैसला ऐसे वक्त आया है जब ममता बनर्जी चुनाव में मिली करारी हार को मानने को तैयार नहीं थी और इस्तीफा देने से इनकार कर चुकी थी। राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 174(2) का इस्तेमाल किया। विधानसभा भंग होने के साथ ही बंगाल में पिछले 15 साल से चला आ रहा ममता राज्य का खात्मा हो जाएगा। इन खबरों के बाद एक बार फिर से गीत संगीत की दुनिया में लौटते हैं और आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और एस बी बालसुब्रमण्यम को फिल्म एक दूजे के लिए में।

इस गीत के बाद अब हम जानेंगे कि आज के दिन भारत और विश्व में कौन कौन सी प्रसिद्ध घटना घटी और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज किन प्रमुख व्यक्तियों का जन्म हुआ और किन का आज देहावसान हुआ। दोस्तों, आज 1886 के दिन अमेरिका फार्मासिस्ट जॉन एस पेस्टबर्ड पेम्बर्टन ने कोका कोला का विकास किया और इसे टॉनिक के रूप में बताया गया। और ऑस्ट्रेलिया लेबर पार्टी की स्थापना आज के दिन हुई। माउंट बेली मार्टिनिक के विस्फोट से सेंट पियरे शहर नष्ट हुई थी आज के दिन और 30,000 लोगों की मौतें हुई थी। आज के दिन 1933 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ 21 दिन का उपवास शुरू किया था। आज के दिन 1959 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीन को भारत विरोधी बयानों से बचने की चेतावनी दी थी। आज के दिन 1980 में WHO ने चेचक के उन्मूलन की घोषणा की। और 1999 में दोस्तों आज के दिन बांग्लादेश में मेघना नदी हादसे में 300 से अधिक लोगों की मौतें हुई थी। और 1999 में आज के दिन नाटो द्वारा बेलग्रेड स्थित चीनी दूतावास पर मिसाइल हमला हुआ। आज के दिन 2010 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर यानी भोपालपट्टनम NH-16 पर नक्सली LED ब्लास्ट में 8 CRPF जवान शहीद हुए थे। आज के दिन 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील से अमेरिका को बाहर किया था। अब दोस्तों, आज जन्मदिन की बातचीत करें तो 1828 में हेनरी डोनेंट का जन्म, जो मानव सेवा के कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला और इसके संस्थापक भी थे रेडक्रॉस सोसाइटी के। 1800

1932 में सत्यव्रत मुखर्जी जी का जन्म हुआ, जो पद्मभूषण से सम्मानित नेता हुए। और दोस्तों आज ही के दिन यानी 8 मई को किन प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन हुआ ये बता दें हम आपको। 1777 में मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे उनका निधन हुआ। आज ही के दिन 1899 में वासुदेव चापेकर जी का जन्म, जो एक क्रांतिकारी थे। और आज ही के दिन 1915 में अमीर चंद जी का जन्म, जो स्वतंत्रता सेनानी थे। आज ही के दिन 1915 में भाई बाल मुकुंद जी का जन्म, जो एक क्रांतिकारी माने जाते थे। और आज ही के दिन 1927 में जन्मे दामोदरम सजीवैया, जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। आज के दिन मराठी साहित्यकार आत्माराम रावजी देशपांडे जी का जन्म हुआ, निधन हुआ। और आज के दिन 1933 में निधन हुआ देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय जी का, जो एक इतिहासकार थे। और आज के दिन 2013 में निधन हुआ जिया फरीदुद्दीन डागर का, जो ध्रुपद गायक थे। और आज के प्रमुख अवसर के बारे में हम आपको बता दें, आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है और आज विश्व थैलेसीमिया दिवस भी है, और आज ही के दिन यूरोप विक्ट्री डे दिवस है। इस जानकारी के बाद एक और गीत का आनंद हम सभी मिलकर लेते हैं। फिल्म का नाम है प्रेम कैदी, आवाजें साधना सरगम और एसपी बाला सुब्रमण्यम की।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: दोस्तों, कार्यक्रम का समापन होता है इसी गीत के साथ। जाते जाते आज का मोटिवेशनल थॉट सुन लीजिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अंदर की प्रतिभा को पहचानिए। इसी सुविचार के साथ कार्यक्रम हेलो हजारी बाग यही समाप्त होता है। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को, जिसे हम रिले करेंगे अपने मुंबई केंद्र से। इसके लिए कर बस थोड़ा सा इंतजार।
0: 10, 9, 8, 7,

रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। कार्यक्रम की शुरुआत हरिहरन की आवाज से। शब्दकार मुस्तार सिद्दीकी, संगीत हरिहरन का और एल्बम का नाम लविंगली योर्स।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
3: अली मोरे अंगना इस एल्बम का गाना, शुभा मुद्गल की आवाज से इन्हीं का लिखा हुआ गीत संगीत जवाहर वत्तल का।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए, ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए।

0: किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उस आपको आईवी लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
1: ये है अभिजीत सावंत की आवाज, समीर के बोल, हरदीप सिद्धू और प्रेम पाल हंस का संगीत है।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।

रंग तिरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश अदनान सामी की आवाज मकबूल ख्वाजा के बोल संगीत अदनान सामी का एल्बम किसी दिन।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन TARA हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने TARA हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग को बधाई दी है। उन्होंने से भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण विकास बताया। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात 2 दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्य प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार, निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। उन्होंने बताया कि अमरीका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार को लेकर भी बातचीत हुई। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार 15 मार्च के बाद से देश में 57 लोगों की मौत खसरे से और 279 लोगों की मौत खसरा जैसे संक्रमण से हुई है। महानिदेशालय ने बताया कि परीक्षण किट की कमी से संकट और गहरा गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 427 अंक गिरकर 77,418 पर, जबकि निफ्टी 121 अंक की गिरावट के साथ 24,205 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, 8 से 12 मई तक हम मना रहे हैं सड़क सुरक्षा सप्ताह। सड़क पर वाहन चलाते समय सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। सड़क पर चलने के जो नियम हैं उनका पालन करें, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें, बेल्ट पहनना, हेलमेट पहनना, ये सब बातें हमारी सुरक्षा के लिए है। तो इसी विषय से जुड़े कुछ गाने हम सुनेंगे आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। पहला जो गीत है ये कूली फिल्म का गाना, शब्बीर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मैंने सिग्नल देखा, ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सिट।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
0: इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
3: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको तो आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
4: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है यादों की महफिल। अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक ब्रेक का।

0: ब्रेक का समय पूरा हो चुका है, अब आपको सुनवाने जा रहे हैं चलती का नाम गाड़ी, इस फिल्म का गाना किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।
1: बाजू।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3:03।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
1: कुंवारा बाप फिल्म का ये गाना किशोर कुमार महमूद और साथियों की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है राजेश रोशन का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
3: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
4: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
5: यादों की महफिल इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मेरा नाम जोकर। इस फिल्म का गाना मन्ना डे की आवाज में, नीरज के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है।

दुनिया ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तर तर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है ये भाई जरा देख के चलो।

0: भाई
1: क्या है करिश्मा कैसा खिलवाड़ है जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी फिर भी वो मालिक के करता नहीं बार है और इंसान ये माल जिसका खाता है प्यार जिससे पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
0: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है।
1: माल जिसका खाता है प्यार जिससे पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो, हम भी चले, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए। आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
2: यह है जीत फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गाना खुद्दार फिल्म का गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में बोल मजरू सुल्तानपुरी के संगीत है राजेश रोशन का।

भाभी फिल्म का ये गाना आपने सुना नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल और संगीत अनु मलिक का। इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल ये कार्यक्रम संपन्न होता है।

दोस्तों नमस्कार, सुरीला सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। दोस्तों विविध भारती के फेसबुक पेज पर आपने आज की इबारत यानी कि आज जो टेक्स्ट हमने भेजा है वो तो आपने पढ़ ही लिया है और इससे संबंधित बहुत सारी बातें भी आपने हमें लिख भेजी, उससे पता चलता है कि कितनी शिद्दत से आपने उसे पढ़ा है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम आपको इसे पढ़ करके सुना देते हैं। शादियों का मौसम चल रहा है तो ख्याल आया कि ऐसे में सजना संवरना तो बनता है, अगर चंद्रहार मिल जाए तो सैया से नैना लड़ाने से कौन रोकेगा। शादी में जाएंगे तो दोस्तों के बीच खान पान और मौज मस्ती होगी, दुल्हा दुल्हन रस्म रिवाजों के बंधन में बंध जाएंगे, फिर दुल्हन अपनों की दुआएं लेकर इस घर आंगन से विदा होगी। आधी रात जब चंद्रमा आधा होगा तो बातें होंगी, दिन प्यार करने के होंगे और प्यार से बना एक प्यारा घर होगा जो उनकी नजरों में सबसे न्यारा होगा। ये आज का जो टेक्स्ट है हमने प्रेषित किया, आपने पढ़ा और नहीं पढ़ा तो हमने आपको पढ़ के सुना दिया। और जिन शब्दों के गाने हमने शामिल किए उन पर थोड़ा सा हमने जोर भी देकर के पढ़ा है ताकि आपको समझ में आ जाए। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि सुरीला सफर में एक बात तो है जो बांधे रखता है और वो ये है कि आपका गाना बजे या ना बजे एक्साइटमेंट बरकरार रहती है, आपकी बातें भी हमें बांधे रखती है और आज के गाने मुझे लगता है शादियों की नोकझोंक से भरे होंगे। एक साथी हमारी ये भी लिख रही है कि शहनाइयों की गूंज बता रही कि खुशियों ने दस्तक दे दी है और ऐसे में अगर खनकती चूड़ियों के साथ माथे पर बिंदिया सज जाए तो महफिल में चार चांद लगना तय है, बारातियों के स्वागत में हंसी ठिठोरी होगी, पकवानों की खुशबू से आंगन

महकेगा और फेरों के वक्त जब सात वचनों की गूंज होगी तो हर आंख में दुआओं का समंदर होगा। विदाई की उस घड़ी में बाबुल की लाडली जब नए सफर पर निकलेगी तो यादों का कारवां साथ होगा। फिर तारों भरी वो पहली रात होगी, मीठी बातों के सिलसिले होंगे और शुरू होगा एक ऐसा सफर जिसमें दो दिल मिलकर अपने सपनों का आशियाना सजाएंगे। जी हाँ, कुछ हद तक आपकी ये बातें ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी गाने जुड़ते चले जाएंगे। अब वो कौन से गाने हैं ये आपने, कुछ लोगों ने अनुमान लगा भी लिया है, तो चलिए सुनते हैं आपके और हमारे गानों के बीच कितना मेलजोल होता है। लेकिन इसी बीच हम आपसे कुछ बातें भी पूछना चाहते हैं कि जब आप किसी शादी समारोह में जाते हैं तो बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव वहां पर होते हैं, कुछ हंसी ठिठोली होती है, कुछ ऐसी शरारत हो जाती है जो ताउम्र हमें याद रहती है। तो आप किसी शादी समारोह में गए, कुछ ऐसी बात हो गई जो अनोखी लगती है या जिनको सालों बाद भी उस बात को याद करते हुए आपके मन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है या हंसी आ जाती है या ठहाका लगाने पर मजबूर हो जाते हैं, ऐसा कोई अनुभव हो तो वो आप हमें लिख भेजिए। फिलहाल हम आपको सौतन फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। सावन कुमार का लिखा हुआ ये गाना है, संगीत किसका है ये आपको बताना है। हमने आपसे कहा था कि शादियों का मौसम चल रहा है तो ख्याल आया, सुनिए ख्याल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो घड़ी में दोपहर के 1:07 हुए हैं। आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: श्रोताओं, अभी आपने सुना जरूरी संदेश। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:09 हुए हैं। आइए आपको लिए चलते हैं हमारे रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार। बस कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन के पार। बफर स्टॉक से 3 गुना अधिक भंडारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कल्याणकारी योजनाओं को मिलेगी मजबूती। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने स्वयं सहायता समूहों के बीच 40 प्रसंस्करण इकाइयों का किया वितरण। 65 लाभुकों को 17 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि की प्रदान। देवघर में नवंबर से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय वीजा सेंटर। अब सिंगापुर, दुबई और मलेशिया समेत कई देशों के लिए देवघर में मिलेगी वीजा सुविधा। मोरी स्टेशन पर विकास कार्यों के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिए जाने के कारण आज और कल कई ट्रेनों का परिचालन रहेगा प्रभावित। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। और अब समाचार विस्तार से। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। यह मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मांडर प्रखंड परिसर में स्वयं सहायता समूहों और प्राथमिक सहकारी समितियों के बीच गेहूं प्रसंस्करण मशीन तथा मिनी राइस मिल का वितरण किया। कार्यक्रम के तहत कुल 40 प्रसंस्करण इकाइयां लाभुकों को सौंपी गईं, जबकि प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं से प्रभावित 65 लाभुकों के बीच 17,24,000 रूपये की सहायता राशि भी वितरित की गई। झारखंड बिहार का पहला वीजा फैसिलिटी सेंटर अक्टूबर नवंबर में देवघर में शुरू होगा, जिसकी जानकारी सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने दी। यह पूर्वी भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी फिलहाल वीजा बनाने की सुविधा नहीं है। शुरुआत में यहां छोटे देशों के लिए वीजा बनेंगे और पर्यटन या पढ़ाई के लिए सिंगापुर, दुबई, मलेशिया और बैंकॉक जाने वालों को सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही देवघर एयरपोर्ट से हैदराबाद, गुवाहाटी व सूरत के लिए सीधी उड़ान और गोड्डा से गुजरात, राजस्थान के लिए सीधी रेल सेवा की भी तैयारी है, जिससे क्षेत्रीय विकास, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने मैराथन में भाग लिया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी

0: लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था कि आकाशवाणी से जैसे आपका लगाव पिछले 9 दशकों से बना हुआ है, आने वाले समय में भी वैसे ही बना रहेगा।
1: रांची विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की फीस वापस करेगा। कुलपति डॉ. सरोज शर्मा ने बताया कि सत्र 2024-25 की प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं हो पाने के कारण फीस वापसी की तैयारी की जा रही है।
2: हम लोगों ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि उन विद्यार्थियों की फी जो है जो ली गई थी उसको वापस कर दिया जाएगा और इस पे हम अगले हफ्ते प्लान कर रहे हैं कि कुछ स्लॉट हम बनाएंगे और विषयवार विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा और उनके पैसे जो सबमिट हुए थे उसको उनको लौटा दिया जाएगा।
1: स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी सिविल सर्जनों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में सरायकेला में मां बेटी की मौत और रांची की घटनाओं पर चर्चा करते हुए संबंधित दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अपर मुख्य सचिव ने अस्पतालों की नियमित निगरानी और रिक्त पदों को भरने पर जोर दिया। पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में यूरेनियम खनन से जुड़े स्वास्थ्य और पर्यावरणीय मुद्दे राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए हैं। द्रौपदी मुर्मू को भेजी गई याचिका के बाद राष्ट्रपति सचिवालय ने झारखंड सरकार से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। याचिका में खनन के कारण स्थानीय लोगों में कैंसर, त्वचा और श्वसन रोग तथा भूजल और कृषि भूमि के प्रदूषण की आशंका जताई गई है। याचिकाकर्ता संजीव कुमार अम्बष्ट ने मामले की स्वतंत्र जांच, स्वास्थ्य सर्वेक्षण, मुफ्त इलाज और विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की मांग की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मोरी स्टेशन पर विकास कार्यों के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिए जाने के कारण आज और कल हटिया आदित्यपुर एक्सप्रेस, हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस, रांची खड़गपुर एक्सप्रेस, बोकारो स्टील सिटी रांची मेमू तथा हटिया सांकी मेमू ट्रेनों को रद्द किया गया है। इसके अलावा बर्धमान हटिया बर्धमान मेमू ट्रेन का आंशिक समापन और प्रारंभ गोमो स्टेशन से होगा। इन ट्रेनों का गोमो हटिया गोमो के बीच परिचालन 8 और 9 मई को रद्द रहेगा। विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान ने दिल्ली सहित साहित्य अकादमी सभागार में रांची की साहित्यकार वीना श्रीवास्तव को अनिता प्रभाकर स्मृति कहानी प्रतियोगिता 2026 में प्रथम पुरस्कार के लिए सम्मानित किया। उनकी कहानी अब आप सुनिए को देश भर से आई 175 प्रविष्टियों में से भाषा, संवेदना, शिल्प और सामाजिक सरोकारों के आधार पर चुना गया। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में महिला से चेन छिनतई मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 अपराधियों और एक ज्वेलरी दुकानदार को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि आरोपियों के पास से छीनी गई चेन से बनाई गई 3 सोने की अंगूठियां, स्कूटी और नकद राशि बरामद की गई है।
3: स्कूटी सवार व्यक्ति थे, उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। घटनाओं पर रोकथाम के लिए एक दल का गठन किया गया, उनको पकड़ने का कार्य किया है। रबरी में हमको 2-3 चीजें प्राप्त हुई, जिसमें एक स्कूटी जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया था, 15,000 रूपए कैश प्राप्त हुए हैं, 3 सोने की अंगूठी जो सोना पिघलाकर बनाई गई वो भी हमें बरामद।
1: जमशेदपुर में झारखंड क्षेत्रीय युवा संघ ने कल वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 487वीं जयंती भव्य रूप से मनाने की घोषणा की है। संघ के एक सदस्य ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत मरीन ड्राइव स्थित महाराणा प्रताप चौक पर शंखनाद और माल्यार्पण के साथ होगी।
4: 487वां जन्म जयंती है, अदम्य साहस, शौर्य और देश के प्रति मर मिटने के जो जज्बा रहा है, वीर महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती शौर्य दिवस के रूप में मनाई जाती है। मरीन ड्राइव बुलचक्कर पे 5 ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण के बाद आरती करेंगे और आरती के बाद माल्यार्पण का कार्यक्रम किया जाएगा।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 427 अंक गिरकर

77,418 पर, जबकि निफ्टी 121 अंक की गिरावट के साथ 24,205 पर था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने का भाव 1,41,500 रुपए है, जबकि चांदी की कीमत 2,68,000 रुपए प्रति किलो है। रांची के रातू थाना क्षेत्र में सड़क विवाद के दौरान मारपीट और लाइसेंस से राइफल छीनने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर लिया है। रांची पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर छीनी गई राइफल और घटना में प्रयुक्त पिकअप वैन बरामद की है। क्रिकेट। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। इससे पहले कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। और अब अंत में मुख्य समाचार। देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन के पार। बफर स्टॉक से 3 गुना अधिक भंडारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कल्याणकारी योजनाओं को मिलेगी मजबूती। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने स्वयं सहायता समूहों के बीच 40 प्रसंस्करण इकाइयों का किया वितरण। 65 लाभुकों को 17 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि की प्रदान। देवघर में नवंबर से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय वीजा सेंटर। अब सिंगापुर, दुबई और मलेशिया समेत कई देशों के लिए देवघर में मिलेगी वीजा सुविधा। मुरी स्टेशन पर विकास कार्य के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिए जाने के कारण आज और कल कई ट्रेनों का परिचालन रहेगा प्रभावित। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभिनेत्री मीना कुमारी पर फिल्माया गया गाना है। साथ ही हमारे लिखते हैं कि जिसे विवाह या परिणय सूत्र भी कहा जाता है, शादी ये मानव समाज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र स्तंभ है। ये केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि दो परिवारों, संस्कृतियों और विचारधाराओं का संगम है। भारतीय परिवेश में तो शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है जो उसकी गहराई और गंभीरता को दर्शाता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आज मंजू जी बड़ी सहजता और सरलता से धीरे धीरे बात करते हुए इस शादी के सफर को पूरा कर रही है और हम सब बाराती बनकर इस शादी में जरूर शामिल हो रहे हैं। हाँ, कोई ढोलक बजाएगा, कोई गीत गाएगा, कोई दुआएं देगा, कोई मस्ती करेगा, अभी बात खत्म नहीं हुई है और ये बात और भी आगे बढ़ेगी। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मेरी शादी को इसी महीने 28 मई को 40 साल पूरे हो जाएंगे। शादी शाम को 6:45 पर थी। सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को बारात में नाचना था, किंतु मेरे बड़े भैया ने बारात को शॉर्टकट से ले जाकर मंडप में पहुंचा दी और कह रहे थे शादी का मुहूर्त निकल जाएगा और सब नाराज हो गए। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि ये 80 के दशक की बात है। मेरे गांव में 2 जुड़वा बहनों की शादी थी। सब रीति रिवाज बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई। विदाई के समय में घर परिवार वाले रोने धोने लगे हुए थे और इसी गहमी में रिश्तेदारों ने दोनों कन्याओं की विदाई करवा दी। बारात अलग अलग गांव से आई थी। बाद में पता चला दोनों दुल्हनों के ससुराल में अदला बदली हो गई है। फिर आनंद फानन में उनके सही घर में उन्हें पहुंचाया गया। आज भी वो घटना याद करके वहां के जो निवासी है वो हंसने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बात आगे बढ़ती है कि दोस्तों के बीच जो हमने आपसे टेक्स्ट जो लिखा है उसके बारे में कि शादी में जाएंगे तो दोस्तों के बीच खान पान और मौज मस्ती होगी, तो इन्हीं बातों पर जो गाना है आपकी खातिर, इस फिल्म का गाना है। शैली शैलेंद्र की आवाज, बप्पी लाहिरी का संगीत, विनोद खन्ना, रेखा और साथियों पर फिल्माया गया ये गाना है। आवाज किसकी है ये आपको पहचानना है।

मेरा दोस्त hey, hey! दोस्त को सलाम करो hey, hey! रात को खाओ पियो hey, hey! दिन को आराम करो hey, hey!

तो दोस्तों की बातें हो गई, एक हमारे साथी की बात अब आपको पढ़ के सुनाते हैं। लिखते हैं कि बारात का उद्देश्य केवल खाना पीना और नाचना नहीं है, बल्कि एक नए रिश्ते की गवाही देना है। रस्मों के दौरान शांति बनाए रखना और वधु पक्ष की भावनाओं को समझना जरूरी है, विशेषकर विदाई के समय जब एक परिवार अपनी बेटी को विदा कर रहा होता है। बारातियों का व्यवहार अत्यंत संवेदनशील और धैर्यपूर्ण होना चाहिए। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आपका व्यवहार ही आपका परिचय होता है, ये बात हर बाराती को ध्यान में रखना चाहिए। एक साथी ने लिखा है कि हमारे यहाँ दूल्हे का कान पकड़ने की रस्म होती है, जिसमें 7 फेरों के बाद दुल्हन का भाई दूल्हे का कान पकड़ के रखता है और जब तक उसका नेक नहीं मिलता तब तक पकड़ कर रखता है। हम सब जब भी मेरे भाई की शादी की सीडी देखते हैं तो यह सब रस्में देख कर बहुत ही हंसी आती है। एक साथी लिखते हैं कि 11 मार्च 1992 को गंगानगर जिला संगरिया में रात 10 बजे ठीक खाने के समय ऐसा तूफान आया कि सब कुछ उड़ा के ले गया, शादी का मजा किरकिरा हो गया। एक साथी लिखते हैं कि दीदी आपका एक सवाल बहुत अच्छा है, हाल ही में अपने भतीजे की शादी में गई थी, लड़की वालों ने जूती चुराई की रस्म में मुंह खोलकर पैसे मांगे, जो होना नहीं चाहिए। रस्मों को तोड़ मरोड़ कर अपनी मांग पूरी करना ये गलत बात है। जूते चुराई में बहुत झगड़ा और झंझट हुआ था। तो भाई शादी ब्याह का जो कार्य होता है सबके लिए एक अत्यंत शुभ और खुशी का मौका होता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, दूल्हा दुल्हन रस्मों रिवाजों के बंधन में बंध जाते हैं, ये हमारी बात है, टेक्स्ट में लिखी हुई बात। चलिए इसी पर एक गाना सुनवाते हैं, मोम की गुड़िया। इस फिल्म का गाना, लता जी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अभिनेत्री कौन है आप बताइए।

अभिनेत्री तनुजा पर फिल्माया गया एक ये गाना आपने सुना। एक साथी लिखते हैं, जिस पिता की बेटी पराया घर जाने वाली है उस पिता को बहुत दर्द होता है क्योंकि उसने फूलों की तरह उसे प्यार किया है। उस पिता ने अपने जीवन भर की कमाई अपनी बेटी के दहेज में दे दी है, फिर हम बारात लेकर जाते हैं। एक मर्यादा, सहनशीलता और अनुशासन ढंग से हमें बारात में जाना चाहिए और दोनों परिवार और प्रेम और स्नेह का आशीर्वाद देना चाहिए। यहाँ अभी अगला जो गाना है हम आपको सुनवाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि बेटी की विदाई के समय उसे क्या सीख देनी चाहिए, ये आप हमें लिख करके भेजिए। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि हाँ, ये जो गीत है इसके बारे में मैंने सोचा तो था, यानी जो अभी मोम की गुड़िया फिल्म का गाना, लेकिन उसके बारे में हमने लिखा नहीं, पर पसंद है गाना और आपने सुनवा दिया। एक साथी लिख रहे हैं कि बारात का उद्देश्य एंजॉयमेंट करना ही नहीं है, बाराती घराती को बहुत तंग भी करते हैं और जिसे कभी कभी माहौल बहुत खराब भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं कि पुराने जमाने में नीचे बैठकर यानी पंगत में खाने में तो मजा आता है, बूफे में नहीं आता है। वहीं अब शादियों में बूफे के बदले टेबल कुर्सियों पर बिठाकर खाना परोसा जाता है, ये बदलाव काफी अच्छा और सफल भी हो रहा है। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि समय धीरे धीरे बदल रहा है, हमारे भारत के कई शहरों में और कुछ समाजों में यह सख्त फैसला लिया गया है कि शादी में निश्चित प्रकार के व्यंजन ही बनाए जाएंगे और खिलाए जाएंगे ताकि व्यंजन व्यर्थ ना जाए और दुल्हा दुल्हन के माता पिता पर खर्च का बोझ ना पड़े, अन्य फिजूल खर्चों को भी रोका जाए। मेरी प्रभु परमेश्वर से ये प्रार्थना है कि हमारे संपूर्ण देश में सभी समाजों में ये निर्णय लेना चाहिए। चलिए अब हम अपने टेक्स्ट की बात को आगे बढ़ाते हैं कि दुल्हन अपनों की दुआएं लेकर इस घर आंगन से विदा हो जाती है। नीलकमल फिल्म का ये गाना अब आपको सुनवाते हैं, मोहम्मद रफी की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत किसका है ये आपको बताना है। साथ ही आप हमें ये भी लिख करके भेजिए कि बेटी को विदाई के समय क्या सीख देनी चाहिए।

नीलकमल फिल्म का गाना आपने सुना, संगीत रवि का। जब भी ये गाना सुनते हैं तो हाथ कंप कपा जाते हैं और आंखें नम तो हो ही जाती है, मुझे ऐसा लगता है, आप बताइएगा। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि मंजरी, जब मेरी बेटी पैदा हो रही थी ये गाना बज रहा था, आज याद आ गई और मैं रोने लगी हूँ। जिस बेटी को हम बड़े प्यार से पालते हैं उसे एक ही झटके में दूसरे को सौंप देते हैं, ये बात एक माँ बाप से बेहतर और कौन जान सकता है उस दर्द को या उस तकलीफ को। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आजकल तो लड़कियाँ खुद ब खुद सब सीख लेती हैं, माँ किसी की यदि मान ले तो ये जो घर आजकल टूट रहे हैं ये टूटने से बच जाए। लेकिन ये सीख की अगर हम बात करते हैं तो क्या केवल लड़कियों के लिए सीख होती है? लड़कों के लिए भी तो बहुत सीख होती है, लड़के वालों के लिए भी तो बहुत सारी सीख होती है, तो उन बातों पर भी हमें गौर करना चाहिए। और एक साथी लिख रहे हैं कि बेटी का हृदय सिंधु समान विशाल होता है, अतः सभी उठती लहरों, ज्वारों और हृदयंगम

कर शांत चित्त नए जीवन में प्रवेश करना चाहिए। चलिए अगला गाना हम सुनते हैं, आधी रात होगी आधी आधा चंद्रमा होगा बात आधी होगी, नवरंग फिल्म का गाना।

0: कहे रात आधी है,
1: कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न।

जाती है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बेटी को विदा करते समय माता पिता को उसे धैर्य, सहनशीलता और समझदारी से काम लेने की सीख देनी चाहिए। ससुराल में नए रिश्तों का सम्मान करने, मीठी वाणी बोलने और घर के काम में आत्मनिर्भर बनने की सलाह उसे देनी चाहिए। और एक साथी लिख रहे हैं कि बेटी को विदाई के अवसर पर एक ही सीख सबको समान देना चाहिए, आत्मसम्मान का भी पूरा ध्यान रखना है आपको, ये अब घर तुम्हारा है, ये सीख उसे देना चाहिए। चलिए हमारी जो अगली बात है वो ये है कि प्यार से बना एक प्यारा घर होगा जो उनकी नजरों में सबसे न्यारा होगा। साथ साथ फिल्म का गाना, जगजीत सिंह चित्रा सिंह की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, कुलदीप सिंह का संगीत, कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है आप बताइए।

आज सुरीला सफर कार्यक्रम में जिस गाने की सबसे ज्यादा चर्चा हुई या फिर लोगों को पसंद आया वो नीलकमल फिल्म का गाना। लिखते हैं कि बाबुल की दुआएं लेती जा, ये गीत पिता और पुत्री के उस अनकहे और पवित्र रिश्ते की पराकाष्ठा है जहां एक पिता अपने जिगर के टुकड़े को विदा करते समय अपना कलेजा निकाल कर रख देता है। मोहम्मद रफी साहब की दर्द भरी आवाज ने इस गाने में पिता की लाचारी, उसकी ममता और उसकी शुभकामनाओं को इस तरह पिरोया है कि आज भी यह गाना बजते ही आंखें नम हो जाती है। धन्यवाद आपका। और आज विविध भारती का ये जो कार्यक्रम है सुरीला सफर, ये सुरीला सफर आपने तय किया मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ। अब कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सवनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 27वीं कड़ी।

0: 7 अगस्त 1905, ये वो दिन था जब कलकत्ता के टाउन हॉल के विशाल प्रांगण में संपन्न चार बड़ी बड़ी सभाओं में वंदे मातरम इन शब्दों का पहली बार सार्वजनिक सामूहिक जय घोष हुआ। और अगले मात्र 2 महीनों में ये युद्धघोष बंगाल के विभाजन के विरुद्ध अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का नारा बन गया। केवल 2 महीनों में वंदे मातरम ये शब्द प्रत्येक बंगाली व्यक्ति के मुख से निकलने लगे। 16 अक्टूबर 1905 वो दिन आ गया जिस दिन विभाजन की घोषणा की गई थी। 7 अगस्त से भी बड़ी सभा अब होने वाली थी। उससे पहले सभा में आने वाले सभी लोग एकत्रित होकर जुलूस के साथ सभा स्थल पर जाने वाले थे। सभा में जाने से पहले जनता ने और भी कुछ ऐसी कार्रवाइयां करने का निश्चय किया था जिससे जनता की एकता और वंदे मातरम की शक्ति का संयुक्त परिणाम ब्रिटिश सत्ता को अच्छी तरह महसूस हो। इकट्ठा हुआ जनसमूह वंदे मातरम का जयघोष करते हुए गंगा की दिशा में चल पड़ा।
1: गंगा स्नान के बाद सभी लोग एक दूसरे को राखी बांधने वाले थे। उन सब के आगे रविंद्रनाथ पैदल चल रहे थे। उस दिन ठाकुर परिवार के सभी नौकर, मुनीम और मालिक बराबरी से बिना किसी घोड़े गाड़ी के पैदल ही चल रहे थे। दोनों ओर भारी भीड़ जमा थी। किसी उत्सव जैसा माहौल बन गया था। सामने जगन्नाथ घाट था। रविंद्रनाथ के साथ लोगों ने गंगा में स्नान किया और सबने एक दूसरे को राखी बांधना शुरू कर दिया। इसके बाद बिडन स्क्वायर में एक बड़ी सभा होने वाली थी। जगन्नाथ घाट से निकलते समय पाथुरिया घाट के पास कुछ मुसलमान अपने पालतू घोड़ों की देखभाल कर रहे थे। रविंद्रनाथ जल्दी से आगे बढ़े और उन्हें भी राखियां बांधी। वहां से आगे जाते हुए अचानक रविंद्रनाथ ने तय किया चितपुर रोड पर स्थित मस्जिद में जाकर वहां के मुसलमानों को भी राखी बांधें। कुछ लोगों को लगा अब निश्चित ही कोई दंगा फसाद होगा, परंतु रविंद्रनाथ आगे बढ़े तो मस्जिद के लोगों ने आदरपूर्वक आगे आकर हंसते हुए राखियां बंधवा ली। उस दिन पूरे कलकत्ता में स्वयं स्फूर्त बंद रखा गया।
0: रविंद्रनाथ सहित सभी लोग बिडन स्क्वायर में सेंट्रल कॉलेज के मैदान पर एकत्रित हुए थे। वयोवृद्ध नेता आनंद मोहन बसु बीमार होने के बावजूद मंच पर आराम कुर्सी में बैठे थे। उनका लिखित भाषण सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने पढ़कर सुनाया। उनका घोषणा पत्र कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आशुतोष चौधरी ने पढ़ा। उसका बंगाली अनुवाद रविंद्रनाथ ठाकुर ने सबको सुनाया। आनंद मोहन बोले,
2: समस्त बंगाल वासियों की भावनाओं की अवहेलना करके ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बंगाल का विभाजन करने का निश्चय किया है, इसलिए आज हम सभी शपथ लें कि बंगाल का विभाजन रद्द होने तक बंगाल में एकता बनाए रखने के लिए समूचे बंगाल का प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जो जो संभव है वो करेगा।
1: इस सभा में 50,000 लोग उपस्थित थे। इस दिन के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर रचित वो गीत प्रार्थना के रूप में गाया गया जो आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध

इस सभा के आयोजन में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता का बड़ा योगदान था, जो भारतीय न होते हुए भी मात्र 5 वर्षों में पूरी तरह भारतीय हिंदू बन चुकी थीं। यह सभा समाप्त होने पर सर्कुलर रोड पर एक और बड़ी सभा हुई, अखंड बंग भवन इस इमारत का शिलान्यास समारोह हुआ। इस सभा में भी लोगों ने स्वदेशी की शपथ ली। इस सभा में 75,000 रुपयों का राष्ट्रीय निधि इकट्ठा हुआ। बंग भंग विरोधी आंदोलन में आम जनता के साथ युवा छात्र वर्ग भी शामिल होने लगा। बंगाल सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से कार्लाइल सर्कुलर नामक कुख्यात सर्कुलर जारी किया गया, जिसके अनुसार जो कोई भी विद्यार्थी स्वदेशी की सभा में भाग लेगा या वंदे मातरम का नारा लगाएगा, उसे स्कूल कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। इस सर्कुलर से छात्रों में दहशत फैलने की बजाय और अधिक संख्या में विद्यार्थी इस आंदोलन में भाग लेने लगे।

आगे 1906 में बहुचर्चित बारिसाल प्रकरण के नेता अश्विनी कुमार दत्त के आह्वान को प्रतिक्रिया देते हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने कॉलेज बंद करवा दिए और ये इमारत किराए पर देना है इस आशय के पोस्टर विश्वविद्यालय की दीवारों पर चिपका दिए। रंगपुर के एक विद्यालय के 200 छात्रों को वंदे मातरम का नारा लगाने के लिए प्रत्येक को 5 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा।

सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 27वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद, संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी और जयंत पात्रीकर, सहभागी कलाकार यूनुस खान, संगीतकार अजय पराड़, गायक कलाकार अपर्णा केड़कर, पार्थ उमराणी, देवव्रत भातखंडे और पद्मजा लामरूट, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता का था, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
2: तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे।
1: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
2: चलो चले मितवा।
1: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
3: चलते चलते
1: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
2: आजा शाम होने आई।
1: इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
4: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स। अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायक के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरू थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मानित करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
4: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
5: इंडिया कंट्रीब्यूट्स,
4: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हों। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैयन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैयन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
6: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
7: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशंस हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
6: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
8: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुँचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
9: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
6: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6वें युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हों। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना प्यार किया तो डरना क्या। इस फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी की बोल, संगीत है रवि का।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो, हम भी चले, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आह फिल्म का गाना अब आपको सुनवाएंगे हम। लता मंगेशकर की आवाज, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

शैलेंद्र का लिखा और शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया। ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में अब आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम पतीता।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मदारी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, फारूक कैसर के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली पहनी।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में अब आपको सुनवाते हैं इंदिवर का लिखा हुआ गाना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, फिल्म का नाम पारस।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:52 हुए हैं। आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: श्रोताओं, अभी आपने सुना जरूरी संदेश। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो घड़ी में दोपहर के 2:54 हुए हैं। आइए आपको लिए चलते हैं हमारे रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार। बस कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: ये रांची केंद्र है, आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। रांची में जल संरक्षण पर केंद्रित सुजलम झारखंड 2026 का भव्य आयोजन हुआ। जल संसाधन विभाग और सस्टेनेबल कॉमर्स फोरम के इस साझा प्रयास में विशेषज्ञों ने जल सुरक्षा की चुनौतियों पर चर्चा की। जल योद्धा पद्मश्री उमाशंकर पांडे ने पानी की बर्बादी रोकने को सबसे बड़ी चुनौती बताया।
2: झारखंड झरनों का प्रदेश है, पेड़ों का प्रदेश है, खनिज का प्रदेश है, सभ्यता का प्रदेश है, संस्कृति का प्रदेश है। खेत का पानी खेत में रहे, मेड़बंदी करें, वाटर सेट छोटे छोटे जो नाले हैं उनको पानी को रोका जाए, वर्षा की बूंदे जहां गिरे वहीं रोकें, जल को धन मानकर रोकें, जल जीवन है, जल है तो कल है।
1: वहीं CMPDI के महाप्रबंधक वी के पांडे ने खदानों में जल संचयन के सफल मॉडलों की जानकारी दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत छठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना पर आधारित इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच सांस्कृतिक तालमेल और आपसी समझ को बढ़ाना है। इस पहल के जरिए युवा प्रतिभागी दूसरे राज्यों का दौरा कर वहां की शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और समृद्ध विरासत का गहन अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। अब तक 6000 से अधिक युवा 130 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की यात्रा कर चुके हैं। देश में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रति नागरिकों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। इस वर्ष मार्च तक राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी NPS से जुड़ने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 2,17,00,000 के पार पहुंच गई है। वहीं असंगठित क्षेत्र के लिए शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने भी नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके लाभार्थियों की संख्या अब 8,96,00,000 से अधिक हो गई है। झारखंड के बहुचर्चित उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में जेल में बंद 168 आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। आज रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अदालत ने प्रत्येक आरोपी को 20,000 रुपए के 2 निजी मुचलकों पर जमानत प्रदान कर दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली में एक विशेष मैराथन का आयोजन किया गया। 3.5 किलोमीटर की इस दौड़ को प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी और महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आकाशवाणी की यात्रा और भविष्य के संकल्पों पर अपने विचार साझा किए।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा और ये उत्सव है। हम देश की सेवा में जो आकाशवाणी का योगदान रहा है उस योगदान को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
1: मैराथन में शामिल सभी प्रतिभागियों को पदक और विजेताओं को ट्रॉफियां प्रदान की गयी। जमशेदपुर के कालीमाटी रोड पर कल देर रात भीषण आग लग गई। यहां बिक्री के लिए खड़ी 2 कारें अचानक लगी आग में जलकर पूरी तरह राख हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी भीषण थी कि उसे देखते ही देखते दोनों वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। सरायकेला खरसावां जिला अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अपराधी को कड़ी सजा दी है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने राजनगर निवासी 24 वर्षीय राज हिमब्रम को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। और अब मौसम का हाल। राज्य के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में देवघर, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, जामताड़ा, लातेहार और लोहरदगा के कुछ हिस्सों में गरज और वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। खराब मौसम को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और पेड़ों या बिजली के

लोगों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों, हौसला हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। मुश्किलें बार बार राहें रोकती हैं, लेकिन उम्मीद की किरण लक्ष्य तक पहुंचा ही देती है। और हर मुश्किल हो जाती है दूर जब बातें करके मन हो जाए हल्का। और बातें करने के लिए सखियों से बेहतर और क्या है, है ना? तो बस आज अपनी सखियों से बातें करने के लिए, उनका मन हल्का करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। आज आपकी सखी से होंगी बातें बहुत सारी। तो पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बजी फोन की घंटी और देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, फोन के उस तरफ। आज कौन से सखी से बात हो रही है हमारी, क्या नाम है आपका?
1: जी मेरा नाम संगीता अग्रवाल है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप संगीता जी?
1: मैं गुड़गांव मुंबई से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, मुंबई में रहती हैं आप तो?
1: हाँ जी।
0: जीवन में इन दिनों क्या चल रहा है संगीता जी, कैसी हैं आप?
1: हाँ एकदम बढ़िया, जीवन भी अच्छा चल रहा है।
0: तो आप बढ़िया बात है। और आप घर पर ही रहती हैं, गृहिणी हैं या किसी तरह का कोई काम करती हैं, क्या करती हैं आप?
1: वैसे तो गृहिणी हूँ, लेकिन थोड़ा पार्ट टाइम में मैं अपना इंडियन हैंडीक्राफ्ट का मेरा छोटा सा बिजनेस है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। इंडियन हैंडीक्राफ्ट मतलब कि हस्तकला, कहाँ से लेती हैं? घर पर ही कुछ बनाती हैं या कहीं से मंगवाते हैं आप, किस तरह से होता है ये सब?
1: हाँ जी, मैं मतलब थोड़ा सा ट्रेडिंग जैसे आप समझ सकते हैं उसे, जयपुर से रिलेटेड है मेरे सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम।
0: अच्छा, तो ये अच्छा, तो ये जो सामान होते हैं आप जयपुर से मंगाती हैं सारी चीजें, तो गिफ्ट आइटम्स होते हैं या इनको फिर किस तरह से बेचती हैं? और ये भी बताइए कि आप कैसे पसंद करती हैं, क्योंकि आप तो रहती हैं मुंबई और आपका अधिकतर जो सामान है वो आता है जयपुर से, तो किस तरह से ये जो चुनाव आप करती हैं कि क्या पसंद आएगा आपके कस्टमर को, ये सब कैसे होता है?
1: आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, तो व्हाट्सएप पे सारे पिक्स आ जाते हैं हमारे होलसेलर के यहाँ से, मैन्युफैक्चरर के यहाँ से, तो उसमें भी सेलेक्ट करते हैं। और साल में दो बार हमारा विजिट रहता है जयपुर में।
0: अच्छा,
1: तो वहाँ पे सिलेक्शन करके आते हैं ज्यादातर।
0: अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। और किस तरह का लोग आपके अनुभव के अनुसार किस तरह की चीजें लोग ज्यादा पसंद करते हैं?
1: मोस्टली

0: अपना जैसे पेंटिंग्स है टेबल के ऊपर रखने के जो आर्टिफैक्ट्स रहते हैं वो रहते हैं और फ्रोज वगैरह वगैरह रहते हैं तो उस तरीके के आइटम लोग बहुत पसंद करते हैं
1: जी।
0: ज्यादातर टेबल वेयर आइटम जो रहते हैं
1: वो ज्यादा पसंद किए जाते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है ना कि आप रहती हैं मुंबई और जो आजकल का डिजिटल जमाना है इसका पूरा इस्तेमाल कर रही हैं आप और जयपुर से सामान मंगवा करके यहाँ मुंबई में बेचती हैं, मतलब आप सेल आउट करती हैं। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाएं?
0: गीत तो वैसे मुझे पुराने काफी पसंद है, उसमें से एक मेरा पसंदीदा गीत है ओ मेरे दिल के चैन, जो कि फिल्म है मेरे जीवन साथी से
1: जी।
0: और मुंबई की भागदौड़ में चैन तो कम ही है, इसलिए गीत सुनकर मैं थोड़ा चैन मिल जाता है
1: जी। तो आपकी पसंद का ये गीत आपको प्रस्तुत करते हैं और लीजिए चैन के थोड़े से लम्हे।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, आज किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं पूनम मंडोवरा जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ।
0: मध्य प्रदेश जबलपुर से क्या बात है? तो पूनम जी, क्या चलता है आपके जीवन में और क्या कर रही हैं आप इस वक्त?
1: शिक्षिका हूँ केंद्रीय विद्यालय में।
0: अरे वाह, आप एक शिक्षिका हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती हैं। तो कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं आप?
1: कक्षा 6 से 10 तक मैं विज्ञान की शिक्षिका हूँ।
0: विज्ञान की शिक्षिका कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक। तो ये आप कितने सालों से पढ़ा रही हैं?
1: मुझे 14-15 वर्षों का अनुभव।
0: 14-15 वर्षों का, यानी कि बहुत सारा एक अनुभव आपके साथ इकट्ठा हो गया होगा। तो काफी सारा समय आपको पढ़ाने में निकल जाता होगा।
1: जी बिल्कुल, अभी नया सिलेबस भी आपने सुना भी होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो हम लोग का सिलेबस की बुक्स भी हर साल लगभग बदल रही है।
0: अच्छा अच्छा, तो इसके लिए तो आपको भी तैयारी करनी होती होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, हमें भी कई वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ती हैं। कई बार हमें घर से सप्ताह भर 10 दिन के लिए बाहर रहना पड़ता है। घर में भी हमें करीब 1 या 2 घंटा पढ़ाई करनी पड़ती है।
0: जी देखिए, सब जानते हैं कि पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना होना या शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी तो है ही, लेकिन हमेशा लगातार पढ़ते रहना पड़ता है। तो आप फिर खुद भी पढ़ती हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाती हैं, कैसे ये सब चीज आप मैनेज करते हैं?
1: जी सहेली आपने बिल्कुल सही बोला, ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हमें ना समय का प्रबंधन बड़े अच्छे से करना पड़ता है।
0: जी ये बात तो बिल्कुल सही कही।
1: अपने दोनों बच्चों पर भी ध्यान देना है, साथ ही मुझे विद्यालय के बच्चों पर भी बराबरी से ध्यान देना है। तो मुझे समय का प्रबंधन बड़े सकुशलता से करना पड़ता है।
0: जी बिल्कुल सही
1: कहूँ तो मैं कुछ टीवी वगैरह ज्यादा मोबाइल वगैरह नहीं देखती हूँ। बस आपके विविध भारती के गाने और विविध भारती की जो मुझे न्यूज है
0: जी जी
1: वो बड़ी अच्छी लगती है, तो अपने रिक्रिएशन या अपने एंजॉयमेंट के लिए वो जरूर मैं सुनती हूँ।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और दोनों बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं या किसी और भी अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी वो सब पसंद करते हैं भाग लेना?
1: हाँ जी बिल्कुल, आपने सही बोला, मेरे दोनों बच्चे चेस के बड़े शौकीन है।
0: चेस खेल के शौकीन है, क्या बात है। घर में खेला जाता है या स्कूल में ही सिखा रहे हैं आप बच्चों को?
1: नहीं स्कूल में सिखाते हैं, साथ में मैं उन्हें बाहर चेस क्लब मैंने ज्वाइन करा रखा है। और अभी रिसेंटली वो दोनों रीजनल चेस स्पोर्ट्स मीट में गए थे
0: जी,
1: और दोनों का सिलेक्शन नेशनल्स के लिए हुआ है।
0: क्या बात है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। पूनम जी बताइए, इस बात पर कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे यादों की बारात मूवी का कोई सा भी गाना सुना दीजिए।
0: तो चलिए सुनते हैं फिल्म यादों की बारात से ये गीत।

0: अंतराल हुआ खत्म और चलिए देखते हैं कि सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: बड़ौदा से।
0: बड़ौदा से? बड़ौदा से कौन से की बात कर रही है? क्या नाम है आपका?
1: बड़ौदा से रमीला बेन बोल रही हूँ।
0: बड़ौदा से रमीला बेन?
1: हाँ।
0: कैसा है बड़ौदा रमीला बेन?
1: बड़ौदा तो बहुत बड़ा है, मगर हम तो बड़ौदा में छोटा सा गांव है सुंदरपुरा, वहाँ से बोल रही हूँ।
0: अच्छा, ये बड़ौदा से पास में है सुंदरपुरा?
1: हाँ, सुंदरपुरा गांव है
0: जी। तो इन दिनों तो बहुत गर्मी होगी वहाँ?
1: बहुत सारी गर्मी है, रहने को भी कहाँ जाए कहाँ जाए, ऐसा लगता बर्फ गिरे तो अच्छा है।
0: लेकिन आम के भी तो मजे ले रहे होंगे आप?
1: हाँ हाँ, आम हमारे पास में बगीचे है बहुत सारे, वहाँ आम जा के नए नए कितने भी सारे आम है।
0: अच्छा,
1: मेरी शादी हुई थी 1990 में, अभी 36 के उतर के 37 में हो जाएगी।
0: 36 वर्ष पूरे हो गए आपके शादी के? तो ये तो बहुत बड़ा एक साथ आपका आपके पति के साथ है। तो इतने सालों का क्या अनुभव रहा आपका, क्या कहना चाहेंगी आप हमारी सखियों को?
1: हमारे 3 बच्चे हैं।
0: 3 बच्चे? अरे वाह।
1: हाँ,
0: तो बहुत सारे जी।
1: और प्रियंका।
0: अच्छा, तो जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे आपने इतने सालों में?
1: अरे बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं।
0: आपके आने वाले जिंदगी में सुखद और खुश भरे दिन आए, ये शुभकामना करते हैं। रमीला बेन, आज आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे पति को तो क्रांति पिक्चर का गाना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो क्रांति फिल्म का एक गीत आपके लिए, ये हम विविध भारती की ओर से सुनिए।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का दीपा जी हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: जी आपने अपना नाम नहीं बताया, आपने हमारा नाम तो पहचान लिया।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदा नाका इंदौर से
0: हसीना भी। तो बताइए क्या हाल है इंदौर के? और इंदौर का तो जो भोजन है, खाना वहाँ का बहुत मशहूर है, सराफा, 56 दुकानें।
1: जी जी, बहुत मशहूर है मैडम यहाँ पर, और साफ सफाई में नंबर वन है।
0: जी हाँ, ये तो नंबर वन है हमारे देश का साफ सफाई में इंदौर शहर। तो क्या चल रहा है इन दिनों आपके जीवन में?
1: अभी तो जॉब पे थे मैडम, तो आपको कॉल कर रहे थे। और गर्मी बहुत ज्यादा है गर्मी।
0: जी तो आप जॉब करती हैं?
1: जी जी, सिलाई करते हैं।
0: सिलाई का काम करती हैं, तो घर से करती हैं या कहीं जाती हैं आप?
1: दुकान पे जाना पड़ता है।
0: अच्छा, इन दिनों में आप अपना ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो सर पे कपड़ा वगैरह बांध के निकलती हैं ना आप?
1: हाँ, 9 बजे निकल जाते हैं, इससे ज्यादा 9 बजे इतनी गर्मी नहीं रहती है, मगर फिर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: हाँ, ये बात तो सही है। और जब काम से आप फुर्सत पाती हैं तो आप क्या करती हैं अपने फुर्सत के क्षणों में?
1: अधिकतर सुनते हैं मैडम, रेडियो के बिना तो हम लोग एक पल नहीं रह पाते। हाँ। कहीं पर भी फोन इन का भी काम आता ना, सब दूर लगाते रहते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए आज आपका कॉल लग भी गया, तो आज हसीना भी आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: इनका नाम है अपना बना लो, और गाने के बोल है, इस दिल का नहीं कोई, इस दिल से प्यार करना, देखो कोई प्यार न करना, मरना लेकिन प्यार न करना, ये सुना दीजिए।
0: चलिए लीजिए, पेश है आप ही की पसंद का गीत विविध भारती की ओर से।
2: इस

0: हेलो सहेली।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, किस सहेली से बात हो रही है हमारी?
1: साधना प्रतापगढ़ से।
0: साधना जी प्रतापगढ़ से, कैसी है साधना जी?
1: बहुत अच्छी, अपना बताइए।
0: बस हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और कैसा चल रहा है मौसम प्रतापगढ़ में?
1: बहुत ही अच्छा मौसम है, पितृपक्ष का अच्छा मौसम है।
0: अच्छा
1: जी, आज मुझे गाना सुनना
0: है। हाँ बताइए, कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: मिलन फिल्म का गाना है। गाने बोले गुलाबी सुराया लग जाए नजरिया है, नशा जिंदा है।
0: तो चलिए सुनते हैं पिया मिलन का गोरा मुखड़ा गुलाबी चुनरिया, आप ही की पसंद का ये गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। देखते हैं किस सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका? कौन से सखी से बात हो रही है हमारी?
1: हमारा ये मेरी नाम है ग्राम बैठी पोस्ट पकड़िया जिला सिंदौली से।
0: जिला सिंदौली से ये कौन से बड़े शहर के पास पड़ता है इमरती जी?
1: ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में सिंदौली शहर पड़ता है।
0: अच्छा, तो वहाँ से बात कर रही हैं। क्या करती हैं इमरती जी?
1: मैं घर में रहती हूँ मैम, मैं ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा, आप देख नहीं सकते, घर पे रहते हैं तो?
1: लेकिन मैं आप लोगों का प्रोग्राम सुनती हूँ हमेशा मैं रेडियो पे।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो
1: और आप लोग आते हैं सखी सहेली में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग हंसते भी तभी अच्छा लगता है।
0: तो मुस्कान आप ही सबके लिए होती है और जो बातें होती है हम सब सखियों के लिए तो होती है। जो बात आप लोग लिखते हैं, जो संदेश हम पढ़ के आपको सुनाते हैं, वो चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़े, कुछ नया सीखे, है ना?
1: हर विषय पे आप लोग जानकारियां देते हैं, हर विषय की जो बातचीत आप लोग करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा
0: जी
1: जानकारियां भी मिलती है रेडियो के जरिए।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तो इमरती जी बताइए, आज कौन सी फिल्म का गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: राज फिल्म का इतना मैं चाहूँ तुझे, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में गीत है, बहुत अच्छा गीत लगता है मुझे। मैं पुराने सभी तरह के गीत अच्छे लगते हैं, रेडियो पे जैसा भी गाना बजता है वो सभी गाने अच्छे।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं रजनी रावत बोल रही हूँ।
0: रजनी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी, मैं एमपी भिंड जिले से बोल रही हूँ।
0: एमपी भिंड से। रजनी जी, क्या करते हैं आप? गृहिणी हैं या कुछ किसी तरह का काम करते हैं?
1: जी, वैसे तो मैं गृहिणी ही हूँ और घर में ही काम करती हूँ, जो कुछ करना है। बाकी फिल्मी गाने सुनने का बहुत शौक है, पुराने गीत
0: जी।
1: और आपके प्रोग्राम सुनने का शौक है पूरे विविध भारती के।
0: क्या बात है, विविध भारती के आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनती हैं?
1: विविध भारती का एक गीत मालिका है
0: जी,
1: और सबसे अच्छा लगता है मुझे छाया गीत
0: जी। हाँ
1: जी हाँ, और वो कम से कम मैं 15-20 सालों से मतलब वो कार्यक्रम सुन रही हूँ। मैं छोटी से मतलब मैंने विविध भारती सुना है बचपन से, और मेरी उम्र मतलब लगभग 43 साल हो गई
0: जी।
1: मैंने कम से कम 20-25 साल हो गए विविध भारती सुनते सुनते।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी हाँ, और सखी सहेली सुनना थी यही में
0: जी।
1: सखी सहेली तो बहुत बाद में शुरू हुआ था प्रोग्राम।
0: तो आज रजनी जी कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी, मुझे आशा भोसले के बाद में तीसरी कसम फिल्म का गाना है, पान खाए सैया हमारे।
0: तो आशा जी को याद करते हुए सुनते हैं ये आपकी पसंद का गीत। पान

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम झनकार बोल रहे हैं, मुंबई से।
0: झनकार मुंबई से, क्या बात है, आपकी तो आवाज में ही एक झनक सुनाई दे रही है झनकार जी।
1: जी बहुत धन्यवाद।
0: तो क्या करती हैं झनकार आप?
1: आजकल तो मेरी एक कथक टीचर है और श्रीमती नूतन पटवर्धन, मैं उनको असिस्ट करती हूँ, बच्चों को कथक सिखाती हूँ उनके साथ।
0: क्या बात है, तो आप कथक सिखाती हैं, इसका मतलब है कि आपने भी पहले सीखा होगा।
1: मैं बहुत साल से उनके साथ हूँ और अभी भी सीख ही रही हूँ, क्योंकि ये ऐसी विद्या है जो चलती रहती है, हम कभी कह नहीं सकते कि हम पारंगत हो गए हैं। तो अभी भी उनके साथ सीख ही रही हूँ और कुछ आया नहीं है ज्यादा, पर हाँ ये उन्होंने कहा कि थोड़ा मेरी हेल्प करो, साथ में असिस्ट करो, तो मुझे तो बहुत गौरव महसूस हुआ, तो मैं उनके साथ बच्चों को आजकल कथक थोड़ा सिखाती हूँ।
0: बहुत सुंदर बात है,
1: क्या बात है। शायद आपको पीछे घुंघरू सुनाई पड़े होंगे, क्योंकि मैं उसी क्लास में हूँ।
0: अच्छा, आप उसी क्लास में हैं और सिखा रही हैं?
1: सीख रही हूँ इस वक्त तो,
0: सीख रही हैं
1: अपनी।
0: अच्छा, बहुत सुंदर बात है। और जब सिखाती हैं आप, आपने जो सीखा उसी तरीके से आप सिखाती हैं, या अपने आपने कोई अपना ही एक तरीका अपनाया है बच्चों को सिखाने?
1: नहीं, शास्त्रीय संगीत भी सीखती हूँ मैं और कथक में भी। एक हम गुरु जो प्रणाली होती है, गुरु शिष्य, हम उसी को फॉलो करते हैं, तो इसमें आपको अपना बिल्कुल नहीं डालना होता है
0: जी।
1: ये बहुत संभाल के दी गई विद्याएं होती हैं जो गुरु से शिष्यों में जाती है, तो उसको थोड़ा सा संभालना पड़ता है और अपने को थोड़ा पीछे रखना पड़ता है।
0: ये बात
1: हम
0: आपने
1: कुछ भी करते हैं, सिखाते हैं, हमको हमारे दिमाग में पता है। दीपा जी, मैं आपको बात कर रही हूँ, मैं जब बोलती हूँ ना बच्चों के साथ है तत तत है, तो मेरे दिमाग में मेरी ताई की आवाज होती, गुरु की।
0: क्या बात
1: कि
0: है,
1: वो जैसे बोलती थी थाई जोर से मारो, तक लगाओ, तो वो अपने आप मेरे अंदर से मेरे गुरु ही बोल रहे होते हैं, वो ही कोशिश करती हूँ।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: तो अपूर्णता है, थोड़ा तो है, तो गलती होती होगी, लेकिन ये हम वैसे ही चाहते हैं जैसे है, कम से कम पहले थोड़ा आ जाए, तब हम शायद कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सही,
1: योग्य हो जाए तब कर सकते हैं, अभी मुझे नहीं लगता मैं उस योग्य हूँ।
0: देखिए, गुरु शिष्य परंपरा की यही खूबसूरती है कि कभी भी जो सीखता है विद्यार्थी हमेशा अपने आप को विद्यार्थी ही समझता है, और कहीं वो अहम या अहंकार की भावना पनप ही नहीं पाती।
1: इसलिए हमारे यहाँ तो शुरू में नमस्कार किया जाता है
0: जी,
1: जिस जगह हम हैं उस जगह को अपने गुरु को सबको नमस्कार करके ही हम क्लास शुरू करते हैं
0: जी। तो आप कोई छोटा सा तोड़ा टुकड़ा अगर इस वक्त आपको याद है तो बोल के बताएंगी?
1: कोशिश कर सकती हूँ
0: जी,
1: और चलिए मैं आपको एक टुकड़ा बोलती हूँ
0: जी,
1: जो तीन ताल में है और मैं बोलती हूँ, तो तीन ताल में 16 मात्रा होते हैं और मैं वो आपको टुकड़ा बोलती हूँ। तत तत थुन थुन टिक दा दिक टिक थई, तत तत थुन थुन टिक दा दिक टिक थई, टिक दा दिक टिक थई, टिक दा दिक टिक थई, ता थई तत तत थई, तत तत थई, तत तत थई। इसे सादा तोड़ा बोलते हैं और कथक में जो कई अंग होते हैं, जैसे ठाट है, आमद है, तोड़े हैं, टुकड़े हैं, परन है, तो ऐसा ही ये एक सादा तोड़ा है। और ये बहुत ही शुरू में 2-1 साल बच्चे जब सीखते हैं तो फिर उनको सिखाया जाता है।
0: क्या बात
1: और
0: है,
1: और आपने एकदम से बोला तो बस मेरे को ये मैंने बोल दिया
0: जी। तो देखिए, लेकिन आप क्योंकि हमेशा सीख भी रही हैं, सिखा भी रही हैं, तो आपको वो मुंह जबानी अच्छे से याद है। तो बताइए झनकार जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं वो एक स्वामी पिक्चर का है, पल भर में ये क्या हो गया, मुझे
0: जी,
1: बहुत
0: जी,
1: अच्छी
0: जी,
1: लगी थी।
0: जी, वो बहुत सुंदर गीत है, तो सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मेरा नाम सीमा है।
0: सीमा जी कहाँ से बात कर रही हैं सीमा जी?
1: जी उज्जैन, उज्जैन के पास गांव है पान बिहार।
0: अच्छा सा नाम है, पान बिहार, है ना सुनने में।
1: इस अच्छा सा और बड़ा भी है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या करती हैं सीमा जी आप?
1: कुछ नहीं मैडम, मैं तो खेती का काम करती हूँ।
0: खेती का काम? तो ये कोई छोटा काम नहीं है, ये तो बहुत बड़ा काम है और बहुत महत्वपूर्ण भी है ना।
1: महत्वपूर्ण भी, मतलब खेत पे ही शुरुआत खेत से ही होती है हमारे तो सुबह की।
0: तो किस तरह का काम आपका खेत पे रहता है? कोई
1: ये निंदाई खुदाई है, तो खुद चारा वारा डालना है
0: जी,
1: इसमें पानी देना है।
0: तो वहाँ पे पशु भी हैं?
1: हाँ है ना,
0: क्योंकि आपने चारे की बात की ना, तो वहाँ पे पशु भी हैं?
1: है ना, है भैंस भैंस है।
0: क्या है वहाँ पर पशुधन में?
1: भैंस
0: भैंस है। कितनी भैंसे हैं वहाँ?
1: दो भैंसे हैं और दो गाय हैं।
0: दो गाय दो भैंसे, तो भाई इन्हें भी बहुत ध्यान से रखना होता है ना, बिल्कुल अपने परिवार अपने बच्चों की तरह।
1: बच्चों की तरह रखना पड़ता है उनको, टाइम से पानी पिलाना।
0: जी, तो इन दिनों गर्मी भी बहुत है, तो उनके भी चारा देने का
1: तो उनको छाया की व्यवस्था भी की है ना मैडम।
0: जी अच्छा, बहुत सुंदर बात कि उनके, आप खुद का तो ध्यान रख ही रही हैं, उनके लिए भी छाया की एक अलग से जगह बनाई है जहाँ पे वो छाव में रह सके, बैठ सके।
1: छाव में बंदे रहते हैं और उनको चारा पानी पानी वानी टाइम टाइम से पिलाते हैं।
0: जी, तो थक कर जब शाम को घर पे आती हैं, फिर से आपको भोजन बनाना
1: फिर
0: होता
1: वहाँ
0: होगा?
1: पे घर है, इसमें घर में अंदर बांध के चला देते हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे सीमा जी। आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: जी मैडम, मेरे को वो सुनना है, माँ तो कितनी अच्छी है कितनी भोली है।
0: तो कितनी अच्छी है तो कितनी भोली है, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं मनीषा कौशल इंदौर से बात कर रही हूँ।
0: मनीषा जी इंदौर से? मनीषा जी जी, क्या कर रही थी अभी आप फोन लगाने से पहले?
1: मैंने अभी ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ, सिलाई का काम करती हूँ।
0: सिलाई का काम करती हैं?
1: खुशी इतनी हो रही मुझे कि मेरी कॉल लग गई, पहली बार कॉल लगा मेरा।
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना।
1: क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं हमेशा बोलते थे कि एक बार मैं लगा के रहूंगी, क्योंकि वो हमेशा सखी सहेली सुनते हैं, दिन भर उनका प्रोग्राम चलता रहता है। उनको मतलब शौक है रेडियो सुनने का, तो वो वेडिंग का काम करते हैं, तो वो मतलब चलता रहता है उनका डेली का। तो बोलते लगा के देखना, एक बार तो लग ही जाएगा तेरा।
0: बोल के बहुत अच्छा लगा। आप बताइए, आज आप आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं बहुत प्यार करते हैं तुमसे, सनम वाला गाना सुनवा दीजिए।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: रेणुका भाई शालपुरा जिला बारा राजस्थान से प्रेमलता तिवारी साहब। और दीदी आज मेरा 7 सालों बाद कॉल लगा, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है।
1: 7 सालों के बाद?
0: जी दीदी,
1: बहुत बहुत बधाई आपको प्रेमलता जी, तो बहुत खुशी हो रही होगी आपको।
0: हाँ दीदी, बहुत खुशी हो रही है।
1: रेडियो तो सुनती हैं, इसके अलावा आपको क्या पसंद है?
0: दीदी मेरे को तो रेडियो सुनना पसंद है, और मतलब कहीं अपन मतलब कोई मतलब अच्छा धार्मिक कार्यक्रम होते हैं ना
1: जी,
0: उसमें जाना पसंद है मुझे।
1: बहुत अच्छी बात है, तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाए हम?
0: दीदी फिल्म का नाम है गाइड, पिया तोसे नैना लागे रे।
1: तो चलिए सुनते हैं गाइड फिल्म का पिया तोसे नैना लागे रे, आप ही की पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली में बातों का सिलसिला आज बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 02240024662, अंग्रेजी में 02240024662। इसके अलावा 02228670288 यानी 02228670288 02 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सहेलियों के कॉल लगे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल न करें ताकि अन्य हमारी सहेलियों को एक अवसर प्रदान हो सके। आज की हेलो सहेली में सहयोग दिया संपादन में नम्रता टिकोड़े ने, तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारी इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो दीजिए दीपा माहेश्वरी को इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज हम आपके लिए लेकर आए
1: प्रादेशिक मुख्य समाचार।
2: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्राथमिक स्वास्थ्य टीमों के लिए एक विशेष एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों को सशक्त बनाना है, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सके। रांची में जल संरक्षण पर केंद्रित

0: सुजलम झारखंड 2026 का भव्य आयोजन हुआ। जल संसाधन विभाग और सस्टेनेबल कॉमर्स फोरम के इस साझा प्रयास में विशेषज्ञों ने जल सुरक्षा की चुनौतियों पर चर्चा की। जल योद्धा पद्मश्री उमाशंकर पांडे ने पानी की बर्बादी रोकने को सबसे बड़ी चुनौती बताया। धनबाद के कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के वासेपुर स्थित घर पर आज पुलिस ने बड़ी कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। बैंक मोड़ थाना और भूली ओपी पुलिस ने भारी सुरक्षा बल के साथ अदालत के आदेश पर यह कार्रवाई पूरी की। लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने आज अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका विद्यालय से प्रोजेक्ट पहल की शुरुआत की। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना है। पाकुड़ के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आज राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कटे होंठ और तालू वाले बच्चों के लिए विशेष मेगा कैंप का आयोजन किया गया। आरसीएच पदाधिकारी डॉक्टर एस के झा ने शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने 25 बच्चों की स्क्रीनिंग की। राज्य के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में देवघर, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, जामताड़ा, लातेहार और लोहरदगा के कुछ हिस्सों में गरज और वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित होने वाली दो दिवसीय सीनियर रैंकिंग नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए साहिबगंज के 4 पहलवानों का चयन हुआ है। इसमें महिला वर्ग में रूपाली कुमारी और रोशनी कुमारी, जबकि पुरुष वर्ग में गुंजन यादव और अंगद कुमार झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं उर्दू कार्यक्रम।
2: मम्मी, मेरी ज्यादातर किताबें वहीं पड़ी हैं। मैं एक बार फिर आऊंगी ले जाने के लिए। अनुष्का की आवाज बहुत मध्यम थी। बिल्कुल बेटा, तुम जब चाहोगे आ जाना, मैं तुम्हें लेकर आऊंगी। कहते कहते मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था। आवाज भर्रा गई थी। मैं डर गई थी कि कहीं इसी घर में अकेले रहने का ये फैसला न कर ले। इस ख्याल से ही मेरा दिल बैठ गया। 3 बरस मैंने अनुष्का के बिना कैसे बिताया, ये मेरा दिल ही जानता है। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच।

अनुष्का पूरे रास्ते कार की खिड़की से बाहर देखती रही। कई बार उसने टिश्यू पेपर से आंखों को दबाया, शायद भराए पानी को सुखा रही थी। उसकी आंखें गोलाई में ऐसे घूम रही थीं जैसे सड़क के किनारे दुकानों पर लिखी हर इबारत को वो पढ़ रही हो, जबकि वो तो सिर्फ अपने आप से गुफ्तगू कर रही थी। मैं उसकी ओर देखकर कुछ कहना चाहती थी, पर जैसे जबड़ा लॉक हो जाता। डर लग रहा था कहीं उसे कोई बात बुरी न लग जाए और वो मेरे साथ चलने से इनकार कर दे। इन 3 बरस में बचपन के सुनहरे रंग से अलग किशोरावस्था का चंपई रंग इसके गालों पर निखर आया है। हालात ने इसे जल्दी से सयानी बना दिया है।

पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकी और वक्त के उसे एक पल से मैं बाहर आ गई। देखो बेटा अनुष्का, ये देखो, ये तुम्हारा कमरा है। अनुष्का ने जब दहलीज पार की तो एक अजीब सी गंध ने उसे घेर लिया। घर सजा धजा, दीवारों पर वही तस्वीरें टंगी थीं, रस्किन बॉन्ड, रुडयार्ड की जंगल बुक और भी उसकी पसंद की तमाम किताबें कमरे में जस की तस सजी थीं। उसकी आंखों के सामने पुराने घर की टूटी अलमारी, माँ के कपड़ों से भरी संदूक और रसोई में रखी चूल्हे की आंच पर खाना पकाती माँ का चेहरा घूम गया। लाचार, बेबस, जीर्ण माँ से वो असंख्य सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन वो कोई सवाल वो पूछ नहीं सकी और माँ विदा हो गईं। वो इस दुनिया से चली गईं। कई बार अनुष्का ने पूछना चाहा, हर बार वो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर टाल देती। वैसे भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझते इंसान के प्रति दया भाव ज्यादा होता है, प्रेम कम। अनुष्का कभी अपने इस कमरे को देख रही थी जो उससे कहीं छूट गया था, कभी वो उस घर को याद कर रही थी जिसे अभी अभी छोड़कर आई थी। दरवाजे पर खड़ी उसकी आंखों में समंदर सा ज्वार था, आंखों में जंगल था जो उसके मन की वीरानी को बयां कर रही थी। चौखट के उस पार वही घर था, दीवारें, खिड़कियां, आंगन, सब कुछ वैसा ही, लेकिन उसका मन मानो हजार टुकड़ों में बटा पड़ा था। उसने गहरी सांस ली। क्या मैं सचमुच लौट आई हूं? लेकिन किस रूप में? कहीं फिर यहां से कहीं और तो नहीं जाना पड़ेगा मुझे? कब मेरी किसको जरूरत पड़ जाए और मैं उसके काम आ जाऊं? आखिर उस घर में अपनी माँ की जरूरत बनकर ही तो मैं गई थी ना। माँ के लिए मैं सिर्फ जरूरत थी। उसकी आंखों में स्मृतियों का सागर उमड़ आया। ये वही घर था जिसे छोड़कर अनुष्का भटकती रही, कानूनी लड़ाइयों और अनचाहे सवालों के बीच अब फिर उसी चौखट पर आ खड़ी थी। उसका मन भारी हो रहा था।

यहीं लौट कर माँ ने मुझे अपनाने का दावा किया था, वही माँ जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा अपना लिया। किसी ने मेरे भीतर की ज्वाला को जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे जज्बात का फैसला हर बार कानून करेगा। मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी, कितने दिन रहूंगी, इसका निर्णय कानून ने किया। आखिर मुझे क्यों, माँ के अधूरेपन का बोझ मुझे क्यों ढोना पड़ा? आखिर मैंने क्या गुनाह किया था, क्या बात थी आखिर? मैंने उसके कंधे को सहलाया, उसने अपनी पलकें उठाई, मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अपनापन पाकर मुझे राहत मिली, सुकून मिला। अनुष्का की पनीली आंखों में टूटी हुई स्मृतियों का गुबार था जिसे मैं लगातार देख रही थी। फिर अचानक मैंने उसे खूब कस के सीने से लगा लिया और उसके भीतर का झरना फूटकर देर तक बहता रहा और मेरे भीतर की ममता देर तक उसे भिगोती रही। मैं उसे बहुत देर तक सीने से लगाए बैठी रही। फिर धीरे धीरे उसने दरवाजे के भीतर कदम रखा। हर कोना मानो उसकी चुप्पी सुन रहा था। एक मेज पर रखी पुरानी चादर, दीवार पर धूल जमी तस्वीरें और बंद खिड़की से आती ठंडी हवा, सब कुछ अपना सा लगा। वो सीधी खिड़की तक गई, उसने खिड़की खोली, धूप का एक सुनहरा टुकड़ा कमरे में भर आया। उसने सूटकेस का जिप खोला, उसमें से कुछ वो तलाशने लगी। कुछ किताबें उसी घर में छूट गई हैं, सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे अपने सामान सूटकेस से बाहर निकालने लगी वो। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और मैं रसोई में चली गई। अनुष्का के लिए फ्रैंकी और ब्रेड टोस्ट लेकर लौटी तो देखा वो अपनी पुरानी ड्राइंग बुक पलट रही थी। वाटर कलर का डब्बा और ब्रश मेज पर रखा हुआ था। कितनी जुनूनी है ये लड़की, सचमुच अजीब है। सेकंड क्लास में पढ़ती थी तभी कितनी सुंदर पेंटिंग करने लगी थी। संस्कृति मंत्रालय के कला विभाग में एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इतनी छोटी सी उम्र में इसने फर्स्ट प्राइज ले लिया था। जिंदगी का वो सबसे खुशगवार लम्हा था जब गोद में बैठी अनुष्का ने मुस्कुराते हुए अपने नरम हाथों का घेरा मेरे गले में डाल दिया था। उसे जब पहली बार घर लेकर आए थे तो घर पहुंचकर एक छोटी सी पार्टी दी थी हमने और बस उसकी सारी थकान, कानूनी झंझट, समाज के ताने सब गायब हो गए थे। कितना सुनहरा समय था वो, आंखों के सामने जैसे अभी ठहर गया है।

उस रोज अनुष्का ने मुझे पहली बार माँ कहा था, तब जैसे घर में फूलों की बरसात हुई हो। वो पैदाइशी ही उम्र से दो कदम आगे थी। अनुष्का की ड्राइंग बुक मैंने अपने हाथ में ले ली और पलटने लगी। एक पन्ने पर मेरी निगाह अटक गई। आंखों के सामने कागज का वो पन्ना याद आ गया जिस पर मैंने हस्ताक्षर किया था। सर्दी की सियाह रात थी, मैं और नीरव किसी शादी में जा रहे थे। हम जंगल से गुजर रहे थे। यूं कि जंगली जानवरों के डर से हम जंगल को जल्द ही पार कर लेना चाह रहे थे। नीरव गाड़ी बहुत फास्ट चला रहे थे। ठंडी और कुदरती हवा खाने की गरज से मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया हुआ था। एसी बंद था। गहन निर्जन सन्नाटे में झींगुरों की तेज आवाज के बीच अचानक झाड़ियों से आती रोने की पतली सी आवाज ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया और हम बड़े निर्भीक हो गए थे। उस समय रात के इस बीहड़ सन्नाटे में कराह भरी महीन महीन रोने की आवाज समझने में खासी परेशानी हो रही थी कि किसी इंसानी बच्चे की कराह है या कोई जंगली जानवर का बच्चा है या कोई छोटा मेमना जो बिल्कुल नवजात शिशु जैसा है। हम सड़क से थोड़ी दूर पेड़ों के झुरमुटों के बीच पहुंच गए थे। सामने कुछ सूखी डालियां पड़ी थीं, जिन्हें हटाया तो कंबल और सफेद कपड़ा जैसे कुछ दिखाई दिया। हम और नजदीक गए, उस आकृति के और करीब गए और करीब गए। अरे, ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज लग रही है। नीरव, ऐसा लग रहा है कोई बच्चा है। ये कपड़े में लिपटा कोई बच्चा लग रहा है, नवजात शिशु। ओह, हमने फौरन गाड़ी से टॉर्च निकाला और ओस में नहाए पेड़ों पर हम रोशनी फेंकने लगे इधर उधर। तभी टॉर्च जब उस झाड़ी पर पड़ी जहां कंबल और सफेद कपड़ा जैसा कुछ दिखाई दिया, उस पेड़ के नीचे नजदीक गए तो देखा कपड़े में लिपटी नवजात बच्ची कांप रही थी। उसका रोना अनवरत जारी था। मेरा तो कलेजा जैसे मुंह को आ गया था। सवालों का समुद्र जैसे मेरे भीतर समाकर पूरे जंगल को पानी पानी कर देगा। हमने उस नवजात शिशु को उठाया और इधर उधर देखा। फिर मैं सोचने लगी, आखिर समाज ने ऐसा कौन सा वितान रचा है जिसके चलते ये नवजात शिशु अभिशप्त कर दी गई है। ऐसा कौन सा प्रश्न रहा होगा जिसके तहत इसकी माँ ने यहां उठाकर इस प्यारी बच्ची को फेंक दिया। उस माँ का कलेजा कांपा नहीं होगा। हम संभल संभल के और डरते हुए उस बच्ची के नजदीक पहुंचे। हाथों में ग्लव्स पहने नीरो ने उसे झुककर उठाया और मेरी गोद में डाल दिया। उस बच्ची का स्पर्श पाते ही मैंने अपने पेट में 9 महीने का उभार सा महसूस किया। मेरी छाती में जैसे दूध उतर आया था। मैं ममता से भर गई थी। ऐसा लगा मैं मां बन गई हूं। सुनो, इस बच्ची को ना ऊपर वाले ने हमारी गोद भरने के लिए इन झाड़ियों में भेज दिया है। किस्मत की किताब का एक नया पन्ना लिखा जाने वाला था। कहते हुए मैंने अपना सिर नीरव के कंधे पर टिका दिया था। मेरी गोद की गर्माहट पाकर वो बच्ची थोड़ी देर के लिए जैसे चुप हो गई थी। फिर थोड़ी ही देर में उसके रोने का सुर और ज्यादा ऊंचा हो गया था। उसकी धड़कनों की रफ्तार बहुत तेज थी। समझ में नहीं आ रहा था उस नन्ही जान को पानी पिलाना ठीक होगा या नहीं। कितने दिन की बच्ची है ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था।

उस फूल से नरम नाजुक बच्ची की जान बचाने के लिए हमने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस के सायरन से जंगल का वीराना शोर से भर गया। कुछ ही देर में वो मासूम अस्पताल की रोशनी में थी। फाइल पर लिख गया, अननोन गर्ल, उम्र एक दिन। उसकी नाम की जगह खालीपन था, पहचान की जगह एक सवाल। माँ की गोद नहीं, कागज के पन्नों में कैद जिंदगी की शुरुआत। झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची सुबह अखबार की सुर्खी बन गई थी। चाय का प्याला हाथ में लिए मैं तो जैसे बर्फ बन गई। अब क्या होगा, उस बच्ची का कोई ना कोई उम्मीदवार जरूर आ धमकेगा, फिर मेरी सुनी गोद का क्या होगा? नीरो, ऊपर वाले ने मेरी सुनी गोद भर दी थी, झाड़ी में पड़ी वो बच्ची ऊपर वाले ने मेरे लिए ही तो भेजी थी ना। नीरो, ये बच्ची तो अपने लिए जंगल में कोई छोड़ गया था। चलो चलो जल्दी चलते हैं अस्पताल, वरना कोई भी उस बच्ची को अपना उम्मीदवार बताकर उठा ले जाएगा। चलो चलो जल्दी चलते हैं। देखा है ना, यहाँ तो हर चीज का व्यापार होता है। वाक्य पूरा होते तक मेरी आवाज कांप गई थी, दिल कलप गया था, जैसे उस नन्ही जान से मेरा बरसों का नाता हो। क्या वो खिलौना है जो अस्पताल से कोई उठा ले जाएगा? अरे वैसे हमने अडॉप्शन के लिए आवेदन तो पहले ही कर रखा है, ये कागजी कार्रवाई होगी और वो बच्ची हमें मिल जाएगी। नीरो ने मुझे दिलासा दी थी। अस्पताल की खिड़की से अंदर झांकते ही मेरे कदम जैसे रुक गए थे। नन्ही सी देह, नींद में सिकुड़ा हुआ चेहरा, वो जैसे कोई अधूरी कविता लग रही थी। मेरा आंचल एक बार फिर ममता से भर गया। ऐसा लग रहा था एक बार फिर मेरी छाती में दूध उतर आया हो। नीरो, यही हमारी बेटी है, यही है हमारी बेटी। मेरी आवाज कांप रही थी लेकिन आंखों में अविश्वास के बादल थे। नीरो ने धीरे से मेरा हाथ थामा, पर उनके भीतर भी वही प्रश्न उमड़ा, क्या सचमुच बच्ची हमें मिलेगी? कहीं कानूनी झंझट में उलझकर इसकी उंगली हमसे छूट न जाए। सपना जैसे पास खड़ा था लेकिन छूते ही ओझल हो जाने का डर मेरे साथ था। बच्ची को घर लाना इतना आसान नहीं था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, अदालत, कागजात, पूछताछ, हर जगह शक की नजरें थीं। तो क्या आप बाज हैं? क्यों चाहते हैं बच्चा? क्या गारंटी है कि आप उसका भविष्य बिगाड़ेंगे नहीं? आप सही तरीके से इस बच्चे को माता पिता का प्रेम दे पाएंगे, ये हम कैसे यकीन करें? ये सवाल मुझे भीतर तक छलनी कर देता था। कई रातें मैंने रोते रोते गुजारी, पर हर सुबह वही दृढ़ वाक्य दोहराती, नीरो, उस बच्ची ने कांटों सी जिंदगी पाई है, हमें उसके लिए कांटों का ये रास्ता भी पार करना होगा। आप सीधे गोद नहीं ले सकते बच्ची को, आपको सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। आप इंतजार कीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, डॉक्टर ने सख्त स्वर में समझाया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज, पूरी जांच, ये सब होने के बाद ही आपको बच्ची मिल सकती है। मेरी आंखें फाइल से हटकर बच्ची पर टिक गई थी। कागजों से बड़ी हैं उसकी सांसें, सोचते हुए मेरा मन थोड़ा उदास हुआ था। घर लौटते ही मैंने वो फॉर्म भरा जिसे पूरा करने के बाद वो दुधमुही मासूम मुझे मिल जाएगी, जिसकी अधमुदी आंखें अपनी माँ को देखने को आतुर होंगी। आधार कार्ड की कॉपी, आयकर रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, परीक्षा के प्रश्न पत्र की तरह न जाने कितने तरह के प्रश्न थे उसमें, जिनके उत्तर देकर मुझे और नीरो को भरने पड़े वो फॉर्म। प्रत्येक कॉलम भरते हुए मुझे लगता जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो और मैं दीवार पार कर रही हूं। हर दस्तावेज पर कलम चलाते हुए आंखों के सामने उस प्यारी बच्ची का चेहरा आ जाता, उसकी निरीह आंखें,
नन्ही नरम हथेलियां, उसके निर्बल सांसें, उसकी अकेली पहचान। कल तक जो मेरे लिए कोई नहीं थी, आज वो मेरे दिल की धड़कन बन गई। मेरी सांस, मेरी दुनिया है वो बच्ची, मेरे जिगर का टुकड़ा बन गई थी। क्या मां बनने के लिए इतना सारा हिसाब किताब करना जरूरी है? मां बनने के लिए इन सारे हिसाब का जवाब देना जरूरी है? मैं खुद से ही सवाल कर रही थी।

0: कानून का इंतजार करना होगा। 60 दिन तक हम देखेंगे कि असली माँ बाप सामने आते हैं या नहीं। वकील मिस्टर सेठी ने यही तो कहा था। बाद में ये 4 से 6 महीने मेरे और नीरव के लिए सदी से भी लंबे थे। हर दिन एक ही चिंता होती, कहीं ये बच्ची किसी और को सौंप न दी जाए। कानून को हमें अपनी ममता क्यों साबित करनी पड़ रही है? कभी अस्पताल के बाहर खड़े होकर हम सोचते अपनी उस अबोध बच्ची तक पहुंचने के लिए।
1: यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 4:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की घड़ी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
1: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
1: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
1: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
2: जी,
1: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
2: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
1: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं, यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
2: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी जी जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
1: जी श्रोताओं, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
2: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
1: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
2: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
1: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
2: जी,
1: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
2: जी।
1: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की। सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
2: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
1: जी श्रोताओं, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है
2: जी,
1: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये यानी माउना केया
2: जी,
1: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है
2: जी।
1: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
2: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है, जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया। आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
1: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें
2: जी।
1: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है, और मालूम है इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है
2: जी। समुद्र की गहराई के 3 भाग हैं, सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है,
1: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहां समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहां पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं,
2: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहाँ पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहाँ कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है?
1: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओं, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
1: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cit.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
1: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है रविंद्रनाथ टैगोर।
2: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविंद्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
1: विश्व शिक्षक रविंद्रनाथ टैगोर।

0: रविन्द्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविन्द्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविन्द्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसी भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन कीर्तन कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युष्कल बंगा विंध हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है। कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवक शाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
4: रविंद्रनाथ
2: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखी।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यही वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों, सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेह युक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: आमार सोनार बांगला आमी तोमाए भालोबाशी, चिरोदिन तोमार आकाश तोमार बाताश आमार प्राणी बाजाए बाशी।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: আমাদের শান্তি নিকেতন, আমাদের
2: শান্তি। সন 1901 में শান্তি নিকেতন আরম্ভ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
1: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
2: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब यह विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
1: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
0: उनका मानना था, इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
2: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
1: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
0: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना।

0: मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
1: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

0: सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।
1: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:58 और 59 सेकंड हुए हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य में बिजली और पानी के संकट को लेकर भाजपा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में आज हजारीबाग में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राज्य को केंद्र से पेयजल सुधार के लिए मिले 12,700 करोड़ रूपये का बंदरबांट कर लिया गया है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हिंसा की खबरों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। हजारीबाग में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि हिंसा करने वाले अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। आईआईटी आईएसएम धनबाद ने सत्र 2026-28 के लिए अपने प्रतिष्ठित एग्जीक्यूटिव एमबीए कार्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कोर्स विशेष रूप से कामकाजी पेशेवरों और उद्यमियों के लिए डिजाइन किया गया है। विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर संदीप मंडल ने बताया कि 2 वर्षीय इस कार्यक्रम के

0: कक्षाएं ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आज साल 2017 की होमगार्ड बहाली में चयनित अभ्यर्थियों ने अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि यदि उन्हें जल्द नियुक्ति नहीं मिली तो वे आत्मदाह जैसा आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर होंगे। देवघर जिले के ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार का सुनहरा अवसर सामने आया है। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह के निर्देश पर एसबीआई आरसीटी में आगामी 11 मई से गाय पालन और वर्मी कंपोस्ट का 12 दिवसीय निशुल्क प्रशिक्षण शुरू होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 18 से 45 वर्ष के ग्रामीण युवक युवतियां आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी। लीजिए सुनिए कार्यक्रम के आरंभ में सुनवा रहे हैं कसूर फिल्म का ये गाना, आवाज़ें हैं अलका याग्निक और साथी की।

आप सुन रहे थे खलनायक फिल्म का ये गाना, आवाज़ें थी अलका याग्निक और साथी की। इसी के साथ इवनिंग मेलोडी कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं, अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बाड़ी।

कार्यक्रम खेती बारी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मुकेश का प्यार भरा नमस्कार। साथ ही सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है, जोहार है। और हम लोग

खेती बाड़ी करते हैं, पशुपालन करते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, और यहाँ की अधिकतर जो आबादी है वो खेती बाड़ी और पशुपालन पे ही निर्भर है। लेकिन चूंकि अब जनसंख्या वृद्धि हो चुका है यहाँ पे, और दिनों दिन मांग भी बढ़ते जा रहा है खेती बाड़ी का, खाद्यान्न का समस्या भी होता है, तो इसलिए हम लोगों को अब जो है आधुनिक ढंग से खेती बाड़ी करने का समय भी आ गया है। लोग आधुनिक ढंग से खेती बाड़ी कर भी रहे हैं, लेकिन आधुनिक ढंग से जब हम खेती बाड़ी करते हैं तो इसमें हम जो जैविक विधि है इसको भी भूल जाते हैं। तो ऐसा करना चाहिए कि आधुनिक विधि में जैविक विधि और जो हमारा है आधुनिक विधि मिला करके ही खेती बाड़ी करना चाहिए। इसमें जैसा कि है हरी खाद, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए और वृद्धि करने के लिए एक जैविक तरीका है जो हरी खाद होता है। इसमें देखिए, इसमें ढैचा, मूंग, लोबिया जैसा जो है इसमें फसल उगाया जाता है, और फूल आने के पहले यानी 40 से 45 दिन के पहले इसको हल से या ट्रैक्टर से इसको जोतवा दिया जाता है, जिससे ये पूरा मिट्टी में मिल जाता है। इसके मिलने से ये होता है कि इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ जो है इसमें मिल जाता है मिट्टी में, जो कि मिट्टी के लिए रामबाण होता है। हरी खाद से लाभ ये होता है कि उर्वरा जो क्षमता है उसमें वृद्धि होती है, मृदा संरचना में सुधार होता है, खरपतवार नियंत्रण होता है, और जल धारण करने की क्षमता इसमें बनी रहती है। क्योंकि अगर हम हरी खाद का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उर्वरा क्षमता हमारा लंबा समय तक बना हुआ रहता है, मिट्टी में बीमारी भी इसमें कम आती है, और कम पानी में सिंचाई भी इसमें होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि खरपतवार जो कि पोषक तत्व को हम

चाय भी इसमें होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि खरपतवार जो कि पोषक तत्व को हमारे जो पौधा को मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलता है, वो खरपतवार नष्ट कर देता है, तो इसमें खरपतवार भी बहुत नाम मात्र का होता है, जिससे हम निराई गुड़ाई के माध्यम से इसको कम कर सकते हैं। श्रोताओं, आगे हम और भी जानकारी लाए हुए हैं और अभी समय हो चुका है जरूरी संदेश का और एक प्यारा सा गीत का,

0: खार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना जरूरी संदेश और एक प्यारा सा गीत। अब बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। और देखिए, चूंकि आधुनिक विधि से हम खेती बाड़ी करते हैं और आधुनिक विधि से जब हम खेती बाड़ी करते हैं तो इसमें योजनाबद्ध तरीके से खेती बहुत बड़ा इसमें मायने रखता है। योजनाबद्ध तरीके से खेती के लिए सबसे पहला चीज ये होना चाहिए कि मिट्टी का जांच होना चाहिए कि हमारा जो खेत का मिट्टी है उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसका सेहत कैसा है। सॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से भी सरकार पूरा जोर दिए हुए है कि सबसे पहले आप मिट्टी का जांच कराइए, मिट्टी का सेहत का पता लगाइए और जो भी उसमें कमी है उसको दूर करके अपना मिट्टी को तैयार कर लीजिए, उसके बाद ही उसमें उन्नत बीज का इस्तेमाल कीजिए। मिट्टी का जांच कराने के लिए खेत का चारों कोना और बीच से भी आकार का कम से कम 6 इंची का अगर आप गठा करके मिट्टी लेते हैं, जो कि खेत का एक सही नमूना होता है, और उसको जब आप जांच कराने देते हैं तो उसमें वो खेत में पहले क्या लगा था मिट्टी जांच कराने के पहले और मिट्टी जांच कराने के बाद आप क्या लगाइएगा, इसका भी जानकारी उसमें देना चाहिए। अपना खेत का नाम, खाता, प्लॉट, ये सब जानकारी देना चाहिए। और जब आप जांच के लिए देते हैं, कुछ समय बाद जब आपको रिपोर्ट मिल जाता है कि आपके मिट्टी में क्या है, क्या चीज़ का कमी है, उसको दूर करके आप मिट्टी का जो सेहत है वो पूरा बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास 1 एकड़ का खेत अगर है तो उसमें गोबर खाद जो हुआ 1.5 से 2 साल पुराना, जो कि अभी बाजार में देखिए 1500 से 1700 रुपये ट्रैक्टर मिलता है पुराना गोबर खाद, अगर आप उसमें डाल करके और कम से कम 3 बार अगर उसमें जुताई आप कर देते हैं और जुताई 3 बार आप करने के बाद आप खुद पैर उसमें रखिएगा तो पैर का जो छाप है वो उसमें नज़र आपको आएगा, यानी कि आपका मिट्टी पूरा तरह से तैयार हो गया। ये हुआ मिट्टी का जांच के बाद मिट्टी का तैयारी करने का। उसके बाद एक चरण आता है इसमें कि उन्नत बीज का हम इस्तेमाल। अब जब भी उन्नत बीज का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उन्नत बीज देखिए अन्य बीज से थोड़ा सा महंगा मिलता है और गाँव घर के भाषा में कहावत भी है कि सस्ता रहो बार बार, महंगा रहो एक बार, तो क्यों ना थोड़ा सा जगह ज़्यादा पैसा लगा करके हम उन्नत किस्म का बीज का प्रयोग करते हैं। उन्नत किस्म का बीज का प्रयोग करने से आपको ये भी फायदा होगा कि उसमें जो फल हो लगेगा या मान लीजिए टमाटर का अगर हम लगा रहे हैं या और कुछ लगा रहे हैं उसमें ज़्यादा मात्रा में आपका उपज होगा, साथ ही उसका रंग रूप आकार बढ़िया होगा जिससे उसका बेचने का आपको समस्या नहीं होगा। यानी देखा जाए तो जो भी चीज़ उससे उपजेगा वो एक ग्रेड का चीज आपका उपजेगा। साथ ही उसमें बाद आता है सिंचाई का साधन। तो सिंचाई का साधन यहाँ पे आप देखिए आधुनिक विधि से जब हम बात करते हैं तो कम लागत कम समय में हमारा सिंचाई हो जाए इसका हम बात करते हैं, तो इसके लिए टपक सिंचाई बूंद विधि, चूंकि गर्मी का समय भी है तो इसमें टपक सिंचाई बूंद विधि जितना जरूरत होता है पानी मतलब पौधा को पानी का उतना ही टपक सिंचाई बूंद विधि में पानी उसको मिलता है, जिससे आसपास में खरपतवार भी नहीं होता है, जिससे लागत में भी कमी आती है और इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा मजदूरा भी नहीं लगाना पड़ता है पानी पटाने के लिए। अपना एक बार आप चालू कर देंगे अकेले भी तो कुछ समय 1.5 घंटा में 1 घंटा में जो भी पूरा खेत आपका 1 एकड़ का खेत इसमें पड़ जाता है, तो इससे हमारा लागत में कमी आता है। एक बात इसमें और होता है कि अगर आपको किसी भी तरह का कीट व्याधि को अगर आप देखते हैं, कुछ फसल में बदलाव देखते हैं तो उसका नियंत्रण भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप तुरंत विशेषज्ञ से हुआ या कीट यहाँ पे आपका बीज का जो दुकान होता है वहाँ भी आप बता देंगे, क्योंकि वहाँ भी विशेषज्ञ बैठते ही हैं सुबह शाम आकर के, या वो लोग भी बहुत जान बीज बेच के और दवाई बेच के उनको जानकारी भी ये मिल जाती है कि किस तरह का रोग इसमें आ रहा है और क्या इसका उपचार होना चाहिए, तो आप उसका उपचार उसमें कर सकते हैं। सावधानी आप ये बरतें कि जब भी आप कीटनाशी का प्रयोग करें चश्मा हुआ या दास्ताना हुआ, चप्पल जूता पहन के ही आप उसमें अपना खेत में जाए, और जब हवा नहीं चले उस समय आप कीटनाशी का छिड़काव करें, जिससे सेहत पे भी असर नहीं पड़ेगा और आपका जो कीटनाशी का प्रयोग है फसल पे पूरा पड़ेगा। एक बात इसमें आता है कि बाजार भी है कि देखिए अब व्यापारी, चूंकि जब आप ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करते हैं तो व्यापारी आपका लोकल व्यापारी भी आता है और बाहर से भी व्यापारी आता है, तो आप देख लीजिए कि कहाँ पे बेचने में आपको सुविधा है, तुरंत पैसा आपको कहाँ पे मिलेगा और क्या रेट उसमें चल रहा है। कभी कभी देखे कि लोकल से दूसरा बाहर का व्यापारी है 2 रुपया ज़्यादा 1 रुपया ज़्यादा देके ही उसमें लेते हैं, तो बाज़ार का आपको ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा बाज़ार में क्या रेट चल रहा है। तो इस अगर आपको इस सब चीज़ का ज्ञान होगा तो आपका जो जो लागत का सही आपको मूल्य मिलेगा, जो कि किसान का हक भी होता है। और अब हम बढ़ते हैं आगे जानकारी की तरफ, और आज हम जानकारी लाए हुए हैं गर्मी के समय में मुर्गी पालन में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं रोहित कुमार और इनसे बातचीत कर रहे हैं मुकेश कुमार। तो सुनते हैं ये जानकारी। श्रोताओं, आज हमारी बातचीत हो रही है रोहित कुमार से, जो कि एक सफल मुर्गी पालक है और बड़े पैमाने पर ये मुर्गी पालन का व्यवसाय करते हैं और आज के समय में ये आत्मनिर्भर हैं और दो तीन लोग को ये रोजगार से भी जोड़े हुए हैं अपने साथ। तो आइए बातचीत करते हैं रोहित कुमार से। तो रोहित जी, कार्यक्रम आपका स्वागत है, जोहार है।
0: सभी को नमस्कार, श्रोताओं को।
2: रोहित जी, मुर्गी पालन का ही व्यवसाय आपको करना है, इसकी प्रेरणा या इसकी सोच आपको कहाँ से मिली?
0: मैं इसका काम जो है मोबाइल के माध्यम से देखा और उसको अच्छी तरह से समझा किस तरीके से इसको करना है, और कुछ जो पहले से भी कर रहे इस व्यवसाय में जुड़े हुए हैं उनसे भी मैंने बात किया, उसको समझने का प्रयास किया, उनके स्थल को निरीक्षण किया, तब जाकर के जो है मुझे ये समझ में आया और इसके ऊपर मैं काम को शुरू किया।
2: जी हाँ, तो अभी आपके फार्म में लगभग कितना मुर्गी है?
0: अभी मेरे फार्म में लगभग 2000 चूजे हैं
2: जी,
0: जिसको मैं अभी पाल रहा हूँ और उस पर व्यवसाय कर रहा हूँ।
2: तो 2000 चूजा का जो देखभाल होता है
0: जी,
2: उसका देखभाल आप स्वयं करते हैं या कुछ स्टाफ भी आप साथ में रखे हुए हैं?
0: 2000 को देखना पॉसिबल नहीं है अकेले, इसलिए मेरे साथ 3 स्टाफ भी काम करते हैं
2: जी,
0: और उन लोगों को सिखा भी रहा हूँ ताकि अपने क्षेत्र में वो जब जाए तो वो अपना भी व्यवसाय शुरू कर सके। अभी वो मेरे पास है और वो भी देखभाल करते हैं और उनको हम गाइड करते हैं।
2: जी हाँ, ये तो बहुत अच्छा बात है और एक तरह का पुण्य का काम भी है कि आप खुद तो स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं, आत्मनिर्भर हैं और दो तीन लोग को आप रोजगार भी दे रहे हैं जो सीख करके बाद में खुद का अपना स्वरोजगार भी करेंगे। तो रोहित जी, आइए बातचीत करते हैं सिलसिलावार ढंग से कि मुर्गी पालन का व्यवसाय कैसा है, किस तरह इसका देखभाल करना चाहिए
0: जी।
2: और इस समय देखिए कि हल्का गर्मी का एहसास भी हो रहा है, कहीं कहीं हल्का बूंदाबांदी भी हो रहा है, तो गर्मी के समय में मुर्गी पालन में क्या सावधानी बरतना चाहिए ये हम बताइए
0: जी। इसमें तो सबसे पहले आपका शेड बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि शेड जो जिस तरीके से उसकी खिड़की बनी हुई रहती है वो आपका बहुत बहुत उसका योगदान रहता है, क्योंकि गर्मी में जो है धीरे धीरे अभी गर्मी बढ़ रही है जैसा आपने बताया और अप्रैल से गर्मी लगातार बढ़ेगी और लगातार 2-3 महीने तक गर्मी को झेलना है, तो उनको जो है ठंडा रखना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए जो है खिड़की का एक बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा है कि पानी का मात्रा जो है वो अधिक से अधिक होता है गर्मी में। गर्मी में मुर्गी लोग जो है, बच्चे लोग जो है ज्यादा पीते हैं पानी को, उसके साथ हम लोग जो है गुड़ का उपयोग करते हैं। गुड़ का उपयोग करने से जो होता है उसकी इम्यूनिटी पावर और गर्मी को छीलने की क्षमता जो है वो भी बढ़ती है। पानी में घोल करके हम लोग उसको देते हैं नियमित, ये 1-2 दिन छोड़ करके, ताकि जो है वो गर्मी को उसको बर्दाश्त कर सके। और इसमें जो है दवा का भी उपयोग जो है थोड़ा सा रहता है ताकि गर्मी में जो है वो उस पे सहन कर सके
2: जी,
0: ताकि वो बीमारी से जो है भी बच सके, क्योंकि गर्मियों में जो है लू लगने का चांस जैसे मनुष्य को लगता है वैसे इनको भी लगता है।

0: जाने का बहुत खतरा रहता है। दोपहर के समय में हम लोग कोशिश करते हैं कि पर्दे को गिरा दें ताकि गर्म हवा जो है ज्यादा इफेक्ट ना करे, और सुबह में और शाम में जो है खुला छोड़ दें, और अंदर का माहौल थोड़ा सा ठंडा रखने का प्रयास करते हैं। उसके लिए जो है पंखा का भी उपयोग हम लोग हल्का करते हैं ताकि जो है टेम्परेचर जो है उस रूम का जो तापमान है वो संतुलन बना रहे।
1: जी हाँ, तो अभी आपके फार्म में जो 2000 चूजा बोलिए या मुर्गी जो तैयार हो रहा है
0: जी,
1: और ठंडा का मौसम है, ये तो संख्या बढ़ जाता होगा, गर्मी की संख्या में चूंकि जगह ज्यादा चाहिए इसमें आप लोग कम डालते हैं।
0: जी, इसमें बहुत जरूरी रखता है क्योंकि ठंडे में जो है मुर्गी थोड़ा ज्यादा भी डाल देने से चूजा जो है वो उसमें एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन गर्मी में जो है उसको स्पेस थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, इसलिए हम थोड़ा चूजे की संख्या या बोलिए तो मुर्गी की संख्या कम कर देते हैं ताकि उनको जो है स्पेस अच्छा मिल सके और वो गर्मी को जो है अच्छा से जो है गर्मी का टेम्परेचर को नॉर्मल बनाए रख सके अपने शरीर का।
1: जी हाँ, एक सफल मुर्गी पालक बनने के लिए कौन सा ग्रेड का चूजा अपनाना चाहिए?
0: अगर हम लोग देखें तो शुरुआती दौर में जो आप अगर शुरुआत करें तो ए ग्रेड का चूजा ही उपयोग करें क्योंकि उसमें मॉडलिटी जो होता है वो बहुत कम होता है
1: जी।
0: तो उसमें जो है आपका बच्चा जब बड़ा होगा तो अच्छा विकसित तैयार होगा, और अगर आप थोड़ा पुराने मुर्गी पालक बन जाते हैं तो बी ग्रेड का भी चूजा आप रख सकते हैं ताकि बच्चे का आपको आइडिया हो जाएगा कि बच्चे को कैसे उसको रखना है, उसका जो है कैसे उसको रख रखाव में ध्यान रखना है।
1: जी हाँ, तो ए ग्रेड का चूजा आप अपनाते हैं, उसके बाद रहा जो फार्म का देखभाल आप किस तरह करते हैं? मान लीजिए अगर आज के समय में आप अगर ए ग्रेड का चूजा लाते हैं तो फार्म में फिर क्या बिछाते हैं उसमें?
0: उसमें हम लोग कुन्नी का उपयोग करते हैं या धान का जो भूसा का उपयोग करते हैं ताकि जो है वो पानी को भी सोखता है और उसको जो है भीगा हुआ ज्यादा नहीं रखते हम लोग, जहाँ भीग जाता है उसको हम लोग उठा करके साइड करके उसमें नया कुन्नी या भूसा का उपयोग करके हम लोग रखते हैं।
1: जी हाँ, तो आप चूजा ले आए फिर उसको कुन्नी बिछा करके उसको छोड़ दिए उसमें
0: जी।
1: शुरुआती में समय में आप बताएं कि उसको हल्दी और गुड़ का पानी भी आप देते हैं ताकि इम्यूनिटी पावर बना रहे और शरीर उनका ठंडा भी रहता है
0: जी।
1: उसके बाद आता है दाना का ग्राउंड, दाना आप इधर कितना बोरा वो लोग खा लेते हैं? लगभग 1.25 किलो जो वो हो जाए
0: जी।
1: और कुछ खास तरह का दाना इसमें चलाते हैं?
0: इसमें प्री स्टार्टर स्टार्टर ग्रेड का जो दाना आता है उसको हम लोग प्री स्टार्टर से शुरुआत करते हैं, स्टार्टर और फिर फिनिशर में हम लोग जाते हैं, तो जैसे जैसे वो बड़े होंगे उस तरीके से उसके दाने के साइज भी चेंज होते हैं ताकि उसको खाने में दिक्कत ना हो और पाचन में दिक्कत ना हो
1: जी।
0: उसके बाद इसमें जो है हम लोग बच्चे को ध्यान रखने के लिए जो है शुरुआती दौर में जो है कुछ दवा का भी उपयोग करते हैं ताकि उसमें शुरू में देना पड़ता है, पानी के साथ हम लोग घोल के देते हैं ताकि जो है उसमें जैसे बच्चे को पोलियो BCG ये सब टीका से बचाने बीमारी से बचाने के लिए हम लोग टीका लगवाते हैं, उसी तरह उसको भी कुछ बीमारी से बचाने के लिए टीका के रूप में जो है उन दवाओं का प्रयोग करते हैं और उसका जो है इस्तेमाल करते हैं।
1: जी हाँ, पहले के समय में लगभग अगर हम 100 चूजा लेते थे उसमें 2 चूजा बोनस मिलता था, क्या अभी भी वो चीज इसमें है?
0: जी, अभी भी आपको मिलेगा, बोनस आपको मिलेगा।
1: बहुत से मुर्गी पालक बोल रहे हैं कि खुद सा व्यवसाय करते हैं, चूजा खुद से लेते हैं, सब कुछ खुद से लेते हैं, और बहुत से अब ये ऐसा चलन भी चल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट मुर्गी पालन का चलन चलता है, उनका एक फार्म रहता है बाकी सब कुछ कंपनी देता है, तो आप किसको बेहतर मानते हैं?
0: अभी तो आप देखिए समय के अनुसार जो है अगर आप शुरुआती दौर में अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मिलता है तो बेहतर रहता है क्योंकि उसके साथ आपको गाइडेंस भी मिलेगा और सारी सुविधाएं भी मिलेगी, सिर्फ आपको प्रॉफिट जो बचेगा वो जो है आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। जब आप स्थिर हो जाएंगे अपने समझ जाएंगे तो आप अपने से करेंगे तो बेनिफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, आप अपने माध्यम से बिजनेस को कर सकते हैं, जहां आपको अधिक से अधिक रेट मिलेगा वहां पे आप अपने मुर्गा को या मुर्गी को जो भी है वो बेच सकते हैं।
1: जी हाँ, अच्छा ये देखा गया है कि चूंकि समय समय पर मुर्गी का मांग बढ़ भी जाता है, देखिए चाहे वो 1 जनवरी का समय हो या फिर पर्व त्योहार का समय हो, होली का समय हो जो कि अभी कुछ ही समय पहले पार हुआ है होली, और कुछ ऐसा भी त्योहार आता है उसमें भी मांग इसका बढ़ जाता है, तो आप लोग क्या त्योहार को भी देखते हुए मुर्गी पालन में बढ़ाते या घटाते हैं और क्या अपेक्षा रखते हैं त्योहार के समय में?
0: जी, हम लोग

0: तो उसी पे निर्भर है, क्योंकि मार्केट का पॉलिसी ये है कि डिमांड जितना अधिक रहेगा तो रेट भी हम लोग को उतना अच्छा मिलेगा। और जिस तरीके से अभी त्यौहार को हम लोग फोकस मेन फोकस में रखते हैं, त्यौहार से हम लोग एक सप्ताह पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा जो मुर्गा है वो तैयार हो जाए, ताकि हम बाजार में आसानी से डिलीवरी कर सके और अच्छा मुनाफा कमा सके। तो ये सारी चीजें हैं और हमारे ध्यान में, और अन्य श्रोतागण जो हमारी बात को भी सुन रहे, ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप व्यवसाय कर रहे हैं और व्यवसाय का माध्यम ही होता है अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। तो उस अवसर को तलाशने की आवश्यकता है और अवसर के अनुसार जो है आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: अधिकतर जो मुर्गी पालक है वो 1.25 किलो का साइज में अपना मुर्गी को निकाल देते हैं, लगभग 25 से 28 दिन या 30 दिन बोलिए, इतना समय में उसमें उनका मुर्गी तैयार हो जाता है, उनका जो पूंजी है वापस आ जाता है और प्रॉफिट भी आ जाता है। और चूंकि एक मिडिल क्लास के घर का लगभग या सभी क्लास के घर का बोलिए कि बजट एक महीना वो लोग तय करते हैं कितना बजट है, और चूंकि मुर्गी पालन एक महीना व्यवसाय इसलिए वो इसको पसंद भी करते हैं और मुर्गी पालन में अधिक से अधिक लाभ हो। एक बात ये भी होता है जैसा कि आपने बताया, तो मुर्गी जब तैयार हो गया उसका बेचने का जब समय आता है तो बाहर से जब व्यवसायी आते हैं या लोकल व्यवसायी जब आते हैं, उस समय क्या आप सावधानी बरतते हैं जिससे आपको अधिक मुनाफा हो? क्योंकि तो ऐसा भी देखा गया है कि उनके तराजू में और आपके तराजू में अंतर होता है, बहुत से मुर्गी पालक को नुकसान भी होता है।
0: जी हम लोग बहुत सारी चीजें सावधानियां बरतते हैं, क्योंकि अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो नए जो खरीदार रहते हैं उन पर हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं। अगर वो अपने से तौलना चाहते हैं तो हम अपने में भी तौलते हैं और उनको भी तौलते हैं, अगर वजन सेम आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, एक मात्रा हो गया। और फिर जब वो पुराने हो जाते हैं, विश्वासी हो जाते हैं, तो फिर हम लोग को ऐसी समस्या नहीं आती है। और उसमें हम लोग खास करके ध्यान रखते हैं, व्यवसाय जो कर रहे हैं, जो खरीदने आते हैं, वो भी सोचते हैं कि हमको कम रेट में मिले और ज्यादा मुनाफा कमाए, तो हम लोग उस चीज को भी ध्यान रखते हैं कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, कितने दिनों में रेट बढ़ने वाला है, ये सब सारी चीजों को ध्यान में रख के हम लोग बिजनेस करते हैं। ताकि हम, क्योंकि हम लोग को मेहनत बहुत लगता है और मेहनत करते हैं तो हम लोग दो मुनाफा भी थोड़ा अच्छा

अदरक 80 से 100 रुपया प्रति किलो, खीरा 20 से 30 रुपया, टमाटर 20 से 25 रुपया, लाल साग और पालक साग 20 से 30 रुपया। और आज का जो मौसम का जानकारी में है, आज का अधिकतम तापमान रहा 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता रहा 49%। और कल का पूर्वानुमान है, कल का मौसम का जानकारी में है, अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता 50%। साथ ही कल बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। और इसी जानकारी के साथ अब कार्यक्रम खेती बाड़ी से जाने का समय भी हो गया है, तो मुकेश को का नमस्कार स्वीकार कीजिए।

आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम खेती बाड़ी। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से।

0: समाचार। नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भाजपा विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया। बोकारो पुलिस विभाग में हुए 10 करोड़ रुपए से अधिक के वेतन घोटाले की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति आज बोकारो पहुंची। समिति के अध्यक्ष और राज्य उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर अमिताभ कौशल ने सर्किट हाउस में जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आगामी 11 और 12 मई को रांची में 2 दिवसीय एक्सपोजर विजिट का आयोजन करने जा रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के जनजातीय छात्रों को राजधानी के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों, ऐतिहासिक स्मारकों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को करीब से देखने का मौका मिलेगा। साहिबगंज जिले के किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में 20वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित इस बैठक में पिछले वर्ष के लक्ष्यों की समीक्षा और नए वित्तीय वर्ष की कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा हुई। विश्व थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर आज सिमडेगा के सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में एक विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। आयोजकों ने बताया कि एकत्रित रक्त का उपयोग जिले के थैलेसीमिया मरीजों और आपातकालीन स्थिति में भर्ती रोगियों के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। पेश महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम अंगना।

अंगना कार्यक्रम सुनने वाली आप तमाम बहनों को रानी का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, कभी धूप तो कभी छाव, यह प्रकृति का नियम है, पर ऐसे बदलते

0: मौसम भी हमें नहीं बदलता है, हमें हमेशा एकजुट होकर आपस में प्यार से कार्य करते हुए आगे बढ़ना है, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो बहनों, कार्यक्रम में हम अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपके साथ मिलकर सुनते हैं खूबसूरत सा एक गाना, उसके पहले कुछ जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: मैनू आज है 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। हर साल 8 मई को मनाया जाता है। यह दिन उस महान व्यक्ति हेनरी डुनेट की याद में मनाया जाता है जिन्होंने रेड क्रॉस आंदोलन की स्थापना की। 8 मई को उनके जन्मदिन के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। डुनेट का जन्म 8 मई 1828 को हुआ था। बनो रेड क्रॉस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा करना, युद्ध और आपदा के समय घायल और जरूरतमंद लोगों की मदद करना और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में योगदान देना है। यह दिन न केवल सेवा और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है बल्कि समाज में सहानुभूति, करुणा और एकता का संदेश भी देता है। इस अवसर पर रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती है, जैसे कि रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान और मानवीय सहायता कार्य। रेड क्रॉस दिवस हमें याद दिलाता है आपसी मदद और सहयोग से ही समाज में सच्ची मानवता का संचार हो सकता है। मनो विश्व रेड क्रॉस दिवस 2026 की थीम, वर्ष 2026 के लिए इस विशेष दिन की थीम मानवता को जीवित रखना रखी गई है। इसकी महत्व के बारे में भी थोड़ी चर्चा करते हैं। यह थीम इस बात पर जोर देती है कि युद्ध, प्राकृतिक आपदा और कठिन समय में भी हमारी सबसे बड़ी शक्ति मानवता है। यह उन अग्रिम पंक्ति के नायकों को समर्पित है जो दूसरों के गौरव और जीवन की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। तो चर्चा के साथ ही अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और सुनते खूबसूरत सा ये गाना। उसके पहले लीजिए सुनिए ये जरूरी संदेश।

0: इस गीत के बाद लीजिए सुनते हैं भेंट वार्ता। बुटीक एक अच्छा व्यवसाय, इस विषय पे जानकारी दे रही हैं रीदा खान और इनसे बातचीत कर रही हैं श्वेता श्रीवास्तव।
1: सखियों, सजना संवरना हर किसी को अच्छा लगता है। खूबसूरत स्टाइलिश कपड़े पहनना तो सबों को बहुत ही अच्छा लगता है। हमारी कई सखियां होंगी जिनकी पसंद कपड़ों के बारे में बहुत अच्छी होंगी। कपड़ों के रंगों और डिजाइनों के मामले में उनकी सहेलियां रिश्तेदार उनकी खूब तारीफ भी करते होंगे। यहाँ तक कि कई बहनें नए कपड़े सिलवाते समय वो खुद भी अपने आइडियाज दर्जी को देकर खूबसूरत पोशाक की डिजाइनिंग में अपना रचनात्मक योगदान देती होंगी। सखियों, हमारी आज ऐसी कई बहनें हैं जिन्हें सिलाई कढ़ाई करना बहुत पसंद है और वो अपनी रचनात्मकता को घर बैठे ही किसी व्यवसाय का रूप देने की प्रबल इच्छा भी रखती होंगी। तो सखियों, आज बुटीक का व्यवसाय बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। यदि आप बहने सिलाई कढ़ाई की इच्छा रखती हैं, तो सखियों आप इस व्यवसाय को अपना सकती हैं और घर बैठे अच्छी खासी आमदनी कर सकती हैं। आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ हैं रीदा खान जी, जिन्होंने बुटीक के काम को स्वरोजगार के रूप में अपनाया है और अच्छी खासी आमदनी वो घर बैठे कर रही हैं। तो रीदा खान जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: रीदा जी, आप सबसे पहले हमारी बहनों को बताएं कि ये बुटीक क्या है।
2: बुटीक एक छोटी सी दुकान है जो महिलाओं के लिए जहाँ कपड़े मिलते हैं या फिर डिजाइनर कपड़े बनवाए जाते हैं।
1: रीदा जी, स्वरोजगार के तो बहुत सारे साधन हैं, लेकिन आपने बुटीक को ही क्यों चुना?
2: बचपन से ही मुझे बहुत शौक था कि मैं फैशन डिजाइनिंग करूं, और क्योंकि मैं छोटी जब थी मैं छोटे छोटे कपड़े अपने गुड़ियों के लिए और फिर फटे जो भी घर में रहते थे फटे हुए कपड़े ये वो मुझे सिलने का बहुत शौक था, तो मुझे स्टार्टिंग से ही उसमें बहुत इस चीज में इंटरेस्ट थी, इसलिए मुझे शौक था करने का फैशन डिजाइनिंग, तो मैंने इसी चीज में अपनी रुचि दिखाई।
1: यानी कि बचपन से ही आपको शौक रहा है बुटीक के काम में। अच्छा, बुटीक बिजनेस को करने के लिए आपको कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ी थी शुरू शुरू में?
2: जैसे कि मैंने अपना जो बिजनेस है स्टार्ट किया घर से ही किया, तो मुझे उतनी ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ी। लमसम 20 से 30 हजार में हो गया, लेकिन यही चीज अगर आप मार्केट प्लेस में करोगे तो आपकी एक्सपेंस आपके कॉस्ट और ज्यादा भागेंगे, तो उसमें 60 से आपको 70 हजार लग जाएंगे।
1: यानी कि हमारी जो बहनें घर बैठे इस काम को करना चाहेंगी, हाँ, उन्हें 20-30 हजार रुपए में वो इस काम को शुरू कर सकती हैं।
2: बिल्कुल।
1: और यदि मार्केट प्लेस में अगर वो करना चाहेंगी तो उसके लिए तो उन्हें दुकान लेना पड़ेगा और फिर दुकान की सजावट वगैरह में खर्चा पड़ेगा ही, है ना। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि हमारी जो बहनें इस काम को करना चाहेंगी बाहर में, मतलब मार्केट प्लेस में खोलना चाहेंगी, तो उसके लिए उन्हें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी?
2: बुटीक खोलने के लिए आपको फैशनेबल जैसे कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर, स्पोर्ट्स वेयर, फिर ट्रेडिशनल ड्रेसेस रखने होंगे, फिर इसके लिए सिलाई मशीन, ओवरलोड मशीन, कढ़ाई मशीन, बड़े मशीन्स, और फिर रैक, टेबल, चेयर, ये सब आपको प्रोवाइड करना होगा अपने बुटीक के लिए। और फिर आपको शो, जैसे आप एक रूम ले रहे हो तो वो एक इस तरीके से रहे कि उसके एक हिस्सा जो है वो रोड की तरफ रहे, ताकि वो लोग जो भी जा रहे हो उधर से गुजर रहे हो तो वो उसकी तरफ वो आकर्षित हो,
1: जैसे उनकी नजर पड़नी चाहिए,
2: क्योंकि जैसे मैनीक्वीन भी आप शोकेस में अगर डाल रहे हो उसमें आप ड्रेस डाल रहे हो तो ऐसे ड्रेस डालो जिससे आप जिससे लोग की नजर पड़े और वो आए उस चीज से
1: अट्रैक्ट हो। हाँ हाँ
2: जी।
1: इसके लिए तो लाइटिंग पे भी ध्यान देना पड़ता होगा।
2: हाँ, आपको इसके लिए इंटीरियर भी बहुत अच्छा रखना चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, क्योंकि कपड़े पे इस चीज से प्रभाव पड़ता है, जो जितनी ज्यादा लाइट रहेगी उससे ड्रेस और भी ज्यादा आकर्षित होंगे। और फिर आप दीवारों पे कुछ पोस्टर लगाइए, वो सारी चीज को आपको ध्यान रखना,
1: ये सबसे बहनें जो है वो आकर्षित होती हैं।
2: जी।
1: तो अभी आपने बताया कि बुटीक खोलने के लिए एक अच्छा खासा रूम होना चाहिए, है ना, और लाइटिंग की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। या हम आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे कि बुटीक खोलने के लिए लेटेस्ट फैशन की जानकारी होनी भी तो बहुत जरूरी होगी।
2: नॉलेज तो आपको होनी चाहिए फैशन के बारे में, जैसे आप इंस्टाग्राम पे, आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ये सारे फैशन को फॉलो कर सकते हैं।
1: अच्छा, आजकल तो पुराने डिजाइन भी कपड़ों के जो है ना वापस लौट रहे हैं, उनका दौर भी आ रहा है।
2: वो लौट रहे हैं, लेकिन उसमें जो डिजाइनर्स होते हैं वो अपना इनोवेटिव आइडियाज लगा के कुछ नया करते हैं, वो सेम चीज फॉलो अप नहीं हो रहा है, उसमें कुछ इनोवेटिव और कुछ नया ही
1: नयापन आ रहा है थोड़ा।
2: जी, और आजकल सिर्फ फैशन कपड़ों में ही सिर्फ नहीं रह गया है, लोग चाहते हैं कि जैसे हम अगर ड्रेस जो कैरी कर रहे हैं उसके साथ हम अपना फुटवेयर भी वैसे ही पहने, हम हैंडबैग्स जो कैरी कर रहे हैं वो भी उसी टाइप डिजाइन में रहे। तो ये सारे चीज डिजाइनर्स जो होते हैं जो फैशन डिजाइनिंग किए हुए हैं और जो बुटीक है ये लोग आपको प्रोवाइड करते हैं।
1: अच्छा, और भी कई बातें होंगी जिनका बहनों को ख्याल रखना होगा यदि वो इस काम को करना चाहे तो, जैसे कपड़ों की क्वालिटी का।
2: हाँ, जब आप कपड़े फैब्रिक जब आप सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको ये क्वालिटी का ध्यान रखना होगा कि वो किस क्वालिटी का है, क्योंकि बहुत सारे मशीन्स जो अलग अलग मशीन्स होते हैं तो हर एक मशीन को जो कपड़े जिसे मतलब सिलते हैं तो आइडिया होना चाहिए और क्वालिटी अच्छा होना चाहिए कपड़े का ताकि वो टिकाऊ हो।
1: यहाँ एक बात हम आपसे और भी पूछना चाहेंगे रिधा जी कि ओवर प्राइसिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है इस बिजनेस पर?
2: ओवर प्राइसिंग का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट बढ़ाकर नहीं किसी चीज़ को सेल करना चाहिए, और कस्टमर भी ऐसा नहीं कि फैशन फॉलो अप नहीं करे तो उन्हें भी पता है कि फैब्रिक की क्वालिटी क्या है, और तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ाकर भी किसी भी फैब्रिक को सेल नहीं करना।
1: हाँ, ज़्यादा प्राइस होगा तो फिर आपके पास कस्टमर्स कम आएंगे, सही बात है। अच्छा, आप हमारी बहनों को बताएं कि इस काम के लिए आपने इसका कोर्स भी किया होगा?
2: जी, मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से इसका कोर्स किया है, और ये इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 होता है, जो आप ये बीए बैचलर्स ऑफ फैशन डिजाइनिंग है, ये 3 इयर्स का कोर्स है, और ऐसे ये डिप्लोमा 1 ईयर का भी कोर्स होता है, और अगर ऐसा वहाँ पे अवेलेबिलिटीज है तो निफ्ट भी है, पर्ल एकेडमी, ये सारे भी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप जाके इस कोर्स को कर सकते हैं। फिर अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप 6 मंथ का टेलरिंग भी आप कर सकते हैं।
1: तो हमारी जो बहनें घर बैठे इस काम को करना चाह रही हैं तो उन्हें शॉर्ट टाइम में कौन सा कोर्स करना चाहिए?
2: उन्हें फिर टेलरिंग 6 मंथ का जो है वो टेलरिंग कोर्स करके इस लाइन में वो आ सकती हैं।
1: वो कहाँ से इस कोर्स को कर सकती हैं?
2: ये हर एक जगह अवेलेबल होता है।
1: अच्छा, आप तो बुटीक का काम कर रही हैं, बहुत सारे कपड़े, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर खूबसूरत कपड़े, नए डिजाइन के स्टाइलिश कपड़े की बिक्री कर रही हैं, तो हमारी बहनों को ये बताइए कि आप मार्केटिंग किस तरह से करती हैं?
2: मेरे अगल बगल के आस पड़ोस के लोग भी आते हैं जो मेरे शॉप से ले जाते हैं कपड़े, और नहीं अगर कुछ और भी पॉसिबल होता है तो मैं इंस्टाग्राम पे डालती हूँ अपने सारे कपड़े के पिक्चर्स, और गूगल में डालती हूँ, फेसबुक पे डालती हूँ, ये सारी चीज़ में डालती हूँ ताकि लोग को पता चले।
1: अच्छा, अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी कितनी आमदनी हो जाती है महीने में?
2: ये डिपेंड करता है ओकेजन पे और कस्टमर पे, जिन लोग को जब भी ज़रूरत जैसे पड़ती है उस हिसाब से वो आते हैं, तो कुछ मतलब एक दिन में कुछ ना कुछ बिक ही जाता है।
1: महीने में आपको कितनी आमदनी हो जाती होगी?
2: महीने में 20-30 हो जाती है आमदनी मेरी।
1: वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि 20-30 हजार रुपए आपके घर बैठे आपकी आमदनी हो जाती है इस काम से। तो रिधा खान जी, आज हमारी सखियों को आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा होगा, और हमारी सखियां भी सोच रही होंगी इस काम को शुरू करना, तो आज हमारे कार्यक्रम में आप आई और हमारे सखियों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: मनु, आप सुन रही थी बुटीक एक अच्छा व्यवसाय इस विषय पे जानकारी दे रही थी रिधा खान, और इनसे बातचीत कर रही थी श्वेता श्रीवास्तव। तो इसी के साथ अंगना कार्यक्रम से रानी को दीजिए अनुमति, नमस्कार।

आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम अंगना। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। पेश है फिल्म संगीत।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम के आरंभ में चांदनी फिल्म का ये गाना, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और साथियों की।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आप सुन रहे थे प्रेम कहानी फिल्म का ये गाना, आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। अब लीजिए सुनिए लव स्टोरी फिल्म का ये गीत, आवाजें हैं आशा भोसले और अमित कुमार की।

0: कोई का कोई मॉडल पुराना लगता है।
1: लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है।
2: आप सुन रहे थे लव स्टोरी फिल्म का ये गाना। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम कहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:53 हुए हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल हमारी रांची केंद्र से।

रेलवे में जा रहे थे उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डाले, और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूं कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे शुभेंदु अधिकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक में लगी मुहर। झारखंड भाजपा ने दी बधाई। हजारीबाग और रामगढ़ समेत कई जिलों में बिजली पानी संकट के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन। झामुमो ने भाजपा की कार्यशैली पर उठाए सवाल। बोकारो पुलिस विभाग में हुए 10 करोड़ रुपए से अधिक के वेतन घोटाले की जांच तेज। उच्च स्तरीय समिति ने की दस्तावेजों की गहन समीक्षा। मौसम विभाग ने कल के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। रांची, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ और खूंटी में ओलावृष्टि की चेतावनी। और रांची में हॉकी इंडिया आयोजित करेगा स्टेट लेवल कोर्स। अंपायरों और टेक्निकल ऑफिशियल्स को दी जाएगी विशेष ट्रेनिंग। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भाजपा विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अधिकारी के चयन की औपचारिक घोषणा की।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: शुभेंदु अधिकारी के भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर झारखंड भाजपा ने बधाई दी है। नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित होगा। राज्य में बिजली और पानी एवं संकट को लेकर भाजपा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में आज हजारीबाग में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राज्य सरकार को केंद्र से पेयजल सुधार के लिए मिले 12,700 करोड़ रुपए का बंदरबांट कर लिया गया है।

0: मौके पर मौजूद सांसद मनीष जायसवाल ने भी हजारीबाग में बिजली की बदहाल स्थिति और पानी के हाहाकार पर गहरी चिंता जताई।
1: इस शहर में बिजली है और ना पानी का ठीक से व्यवस्था है। पहले अगर 15-20 हजार घरों में पानी आता था तो अब वो घट करके 8-9 हजार ही बच गया। दिन भर में 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा इस प्रकार से बिजली रह रही है। जिस प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार के आत्मा को जगाना चाहती है कि जो बेसिक सुविधा है बिजली पानी जो बेसिक अधिकार है लोगों का वो दो, इसको जगाने के लिए आज का आंदोलन कर रही है।
0: उधर रामगढ़ में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा और बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने कोर्ट मोड़ से समाहरणालय तक विरोध मार्च निकाला। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। जमशेदपुर में महंगाई के खिलाफ आयोजित प्रदर्शन के दौरान उन्होंने भाजपा की कार्यशैली पर सवाल उठाए। श्री सारंगी ने दावा किया कि झारखंड में झामुमो के नेतृत्व वाला महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है।
2: गठबंधन के सभी दलों को साथ में लेकर सरकार काम कर रही है समन्वय के साथ, तो निश्चित रूप से असम के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ के लोगों का विश्वास बढ़ा है और आने वाले समय में भी हम बहुत मजबूती के साथ वहाँ संगठन को खड़ा करेंगे और चुनाव में भी भाग लेंगे।
0: गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा है कि देवघर समेत पूरा संताल परगना क्षेत्र विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सांसद ने क्षेत्र में चल रही प्रमुख परियोजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि नए पावर ग्रिड, बेहतर रेल कनेक्टिविटी और वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेनों से आधारभूत ढांचे को अभूतपूर्व मजबूती मिल रही है। नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में कल से देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र रोग अनुसंधान सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। आर्मी हॉस्पिटल और अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी के सहयोग से आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देशभर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
3: पिछले 2 दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले 2 दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले 2 दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: बोकारो पुलिस विभाग में हुए 10 करोड़ रुपए से अधिक के वेतन घोटाले की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति आज बोकारो पहुंची। समिति के अध्यक्ष और राज्य उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव डॉ. अमिताभ कौशल ने सर्किट हाउस में जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। डॉ. कौशल ने बताया कि घोटाले की जड़ें गहरी हैं और इसकी बिंदुवार जांच की जा रही है।
4: हमारे बेंचमार्क हैं वो ट्रेजरी कोड है। ट्रेजरी कोड जो हमारे बेंचमार्क हैं वो ट्रेजरी कोड है, झारखंड फाइनेंशियल रूल्स हैं और पुलिस मैनुअल, ये 3 चीजें हैं। तो उसके अलावा फाइनेंस डिपार्टमेंट के समय समय पर निर्गत इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने हैं, उसके बेसिस पे हम लोग एग्जामिन करके क्लियर फाइंडिंग्स पे पहुंचे।
0: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आगामी 11 और 12 मई को रांची में 2 दिवसीय एक्सपोजर विजिट का आयोजन करने जा रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के जनजातीय छात्रों को राजधानी के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों, ऐतिहासिक स्मारकों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को करीब से देखने का मौका मिलेगा। आज रांची में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया गया। विश्व रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट दिवस के अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने प्रदेशवासियों और संस्था के स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। राजभवन से जारी अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि रेडक्रॉस से जुड़े कार्यकर्ताओं का योगदान समाज के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। राजधानी रांची में जल संरक्षण पर केंद्रित सुजलम झारखंड 2026 का भव्य आयोजन हुआ। जल संसाधन विभाग और सस्टेनेबल कॉमर्स फोरम के इस साझा प्रयास में विशेषज्ञों ने जल सुरक्षा की चुनौतियों पर चर्चा की। मौके पर राज्य के जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने बढ़ते जल संकट पर गहरी चिंता व्यक्त की है।
5: हम नई पद्धति से जिस जगह और जगह जो ये पहाड़ी इलाके में पानी का रोकने का जो टेक्निक ये सभी अपनाए हैं, उस टेक्निक को हम लोग लेकर के झारखंड में भी ये करेंगे। अभी हम लोग झारखंड में पीरस्टाण में नया प्रोजेक्ट है जिसमें 120 तालाब में हम लोग पानी खेत में तो देंगे ही और तालाब में ही स्टॉक करके रखेंगे।
0: और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने राज्य में अगले कुछ दिनों भारी बारिश और ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम केंद्र के अनुसार 14 मई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर बारिश होगी। कल रांची, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ और खूंटी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में ओलावृष्टि के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। हॉकी इंडिया द्वारा आगामी 22 से 24 मई तक रांची में अंपायरों और टेक्निकल ऑफिशियल्स के लिए स्टेट लेवल कोर्स का आयोजन किया जाएगा। ईस्ट जोन के इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में झारखंड समेत विभिन्न राज्यों के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इस कोर्स के लिए खिलाड़ियों के पास नेशनल चैंपियनशिप में खेलने और ऑफिशिएटिंग का काम से कम 3 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। हॉकी इंडिया ने इच्छुक उम्मीदवारों से 10 मई तक ऑनलाइन नामांकन करने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे शुभेंदु अधिकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक में लगी मुहर। झारखंड भाजपा ने दी बधाई। हजारीबाग और रामगढ़ समेत कई जिलों में बिजली पानी संकट के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन। झामुमो ने भाजपा की कार्यशैली पर उठाए सवाल। बोकारो पुलिस विभाग में हुए 10 करोड़ रुपए से अधिक के वेतन घोटाले की जांच। तेज उच्च स्तरीय समिति ने की दस्तावेजों की गहन समीक्षा। मौसम विभाग ने कल के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। रांची, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ और खूंटी में ओलावृष्टि की चेतावनी। और रांची में हॉकी इंडिया आयोजित करेगा स्टेट लेवल कोर्स। अंपायरों और टेक्निकल ऑफिशियल्स को दी जाएगी विशेष ट्रेनिंग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अंक में आप सुनेंगे धनबाद जिले की ताज़ा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे धनबाद संवाददाता।
1: धनबाद शहर में फुटपाथ दुकानों और ठेले खोमचों की वजह से लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को जल्द राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। धनबाद नगर निगम ने कोर्ट रोड से डीआरएम चौक तक के फुटपाथ दुकानदारों को शहर में निर्मित वेंडिंग जोन में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बुधवार को कोहिनूर मैदान स्थित वेंडिंग जोन में लॉटरी के माध्यम से 117 दुकानदारों को दुकान आवंटित की गई। मेयर संजीव सिंह ने कहा कि वेंडिंग जोन में दुकानदारों और ग्राहकों के लिए हर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।
2: रणधीर वर्मा चौक से लेकर कोर्ट रोड तक में जितने भी साइड में जो दुकानें लग रही थी वहाँ पे जाम की समस्या को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि जो हमारा वेंडिंग जोन बना हुआ है वहाँ पर इन सभी लोगों को एक लॉटरी के माध्यम से दुकान वहाँ आवंटन कराया जाए और उसी प्रोसेस में हम लोग वहाँ पे 177 दुकान जो है हम लोग वहाँ पे आवंटित करने का काम कर रहे हैं, उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं और सड़क भी बन रही है।
1: वहीं नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने बताया कि शहर के कई और स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां भविष्य में नए वेंडिंग जोन बनाए जा सकें।
3: एक साल से ऊपर हो चुका है लेकिन वहाँ पर कोई शिफ्ट नहीं हुआ। उसके दो रीजन थे, एक तो अप्रोच रोड नहीं थी, कहीं से भी अप्रोच रोड नहीं थी, एक शेड बना रखा था और शेड के कारण जो रोड जाती थी वो ब्लॉक हो रखी थी, तो वो रोड बनना चालू हो गई है जो जिला स्तर से बनवाई जा रही है और काफी चौड़ी रोड है और सामने तो ईवीएम वेयर हाउस भी है, तो इसलिए उस रोड का इम्पोर्टेंस भी बहुत है, इसलिए काफी चौड़ी और काफी अच्छी रोड बनाई जा रही है अप्रोच रोड। आने वाले एक वीक के अंदर या दो वीक के अंदर जैसा भी एक बार हम अपडेट ले लेंगे वो रोड कंप्लीट हो जाएगी और इसलिए वहां पर जो एक इशू था कि कस्टमर नहीं जा पाते थे वो वहां पर जाएंगे।
1: शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीपीएल कोटे में एडमिशन की प्रक्रिया को लेकर वेबसाइट rte.dhanbad.in पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत किए जा रहे हैं। इसके लिए आवेदक को संबंधित वार्ड पार्षद या पंचायत के मुखिया से अपने घर का पता सत्यापित कराना अनिवार्य होगा, साथ ही घर के बाहर खींची गई जियो टैग तस्वीर लोकेशन के साथ अपलोड करनी होगी। 30 मई 2026 तक अभिभावक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं बीपीएल कोटा में एडमिशन के लिए अभिभावक को सही जानकारी देने से संबंधित एफिडेविट भी जमा करना होगा। गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंदुआडी में गैस रिसाव की वजह से क्षतिग्रस्त हाईवे और ट्रैफिक डाइवर्जन इन दिनों राजनीति का नया केंद्र बिंदु बना हुआ है। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने इस मुद्दे को लेकर कल से आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कई बार इस मुद्दे को राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के समक्ष उठाया गया लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है।
4: केंदुआ, छाताटाड़, लोयाबाद, पुटकी, खोखपस, विक्रेता सभी हमारे सब व्यवसायी साथी लोग आए थे और सब लोगों से बातचीत हुई है। फिर पिछले बार जो हम लोगों ने निश्चितकालीन धरना का कार्यक्रम किया था और भ्रम फैला के जिला प्रशासन के आग्रह पर उसने हम लोग वहां से स्थगित किए थे उसको, लेकिन उसका कोई फलाफल निकला नहीं। तो एक सांकेतिक रूप में यह प्रशासन को मैसेज देने के लिए धनबाद के लाइफ लाइन जो है हमारा NH, यहाँ इससे हजारों लोगों की रोजी रोटी टिकी हुई है और पूरा धनबाद से लेकर के सब लोग का काफी परेशानी हो रही उससे, और 24 घंटे का अनशन पर हम बैठेंगे। उसमें हमारे जितने व्यवसायी भाई हैं सब लोग पांचों जगह के और धनबाद के लोग भी इसमें हमको सहयोग भी करेंगे।
1: विधायक के आंदोलन को स्थानीय व्यापारियों का भी साथ मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर सांसद समेत अन्य नेताओं ने भी इस रास्ते से आवागमन पुनर्बहाल करने को लेकर आवाज उठाई है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद।
0: अभी आप सुन रहे थे धनबाद जिले की ताज़ा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश कार्यक्रम झनकार, लीजिए सुनिए। फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आवाजें हैं आशा भोसले और अभिजीत की।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: लीजिए सुनिए फिल्म दुश्मन का ये गाना, आवाजें हैं कुमार सानू और लता मंगेशकर की।

0: यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है खेल गतिविधियों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेलेंगे शान से। वाचन स्वर है माणिक चक्रवर्ती एवं वंदना श्रीवास्तव का। प्रस्तुत करता है राजीव कुमार।
1: खेलेंगे खेलेंगे
2: शान से
1: जीतेंगे जीतेंगे
2: जी जान से खेलेंगे खेलेंगे
1: शान से
2: उड़ेंगे बढ़ेंगे
1: आसमान से
2: आसमान से
3: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से मैं वंदना श्रीवास्तव आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ।
1: काफी इंतजार के बाद है ना वंदना,
3: हाँ हाँ।
1: एक बार फिर लौट आया है आप सबका अपना साप्ताहिक खेल पत्रिका का वही जोशीला और फुर्तीला कार्यक्रम
2: खेलेंगे शान से,
3: जहाँ खेल सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि जुनून, अनुशासन और सपनों की उड़ान है।
1: भाई यही जज्बा, यही ऊर्जा हम लेकर आ गए हैं आज के इस नए सफर में।
3: माणिक, आज दिल में एक अलग ही खुशी है क्योंकि खेल का ये कारवा फिर से शुरू जो हो रहा है।
1: बिल्कुल वंदना, मैदान के मिट्टी की खुशबू, सोचो खिलाड़ियों का जुनून और हर जीत के पीछे कड़ी मेहनत लेकर आया है ना।
2: खेलेंगे शान से।

0: चलिए शुरुआत करते हैं इस शानदार सफर की।
1: बिल्कुल, इस नए अंक में सबसे पहले खिलाड़ियों ग्राउंड रिपोर्ट और नया सेगमेंट जुड़ गया हर जीत की कहानी,
0: साथ ही एक और नया सेगमेंट आज का खेल मंत्र और सुनो खिलाड़ियों।
1: इसके बाद न्यूज सेगमेंट सुनिएगा, खेल टिप्स और होगा खेल अपडेट्स भी। तो कस लीजिए कमर, शुरू कर रहे हैं सबसे पहले
0: ग्राउंड रिपोर्ट। खिलाड़ियों पूरे झारखंड के 24 जिलों से टीम पहुंची थी, जिन्होंने 1 मई से 5 मई तक कुल 7 मैचें खेली। फाइनल के लिए जगह बनाई टीम येलो और टीम ब्लू ने। फिर किसकी हुई जीत? मैदान में फाइनल की रात क्या क्या हुआ? आइए अपने सहयोगी माणिक द्वारा की गई इस ग्राउंड रिपोर्ट से जानते हैं इस अच्छे से संकेत के साथ कि कार्यक्रम खेलेंगे शान से दे आज से ही दी 10 तक और हजारीबाग की धरती पर नया नवेला महिला स्टेडियम महिला चेन्नई टूर्नामेंट का 5 दिवस से सफल आयोजित कर महिला क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम दर्ज कर गया। तो लीजिए ग्राउंड रिपोर्ट।
2: सीमेंट फ्रेमवर्क्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का ये फाइनल मैच झारखंड टीम येलो वर्सेस झारखंड टीम ब्लू। टीम ब्लू ने 110 रनों का लक्ष्य दिया है टीम येलो के समक्ष। टीम येलो 17 ओवर की समाप्ति के पश्चात 87 रन 5 विकेटों के नुकसान पर गेंदबाज शान मणिपूर्ति 6 विकेट का पतन 88 रनों के कुल स्कोर पर 22 रनों की अभी भी आवश्यकता। शान मणिपूर्ति गेंदबाज 3.5 ओवर्स में अभी तक इन्होंने 22 रन खर्च किया है और एक सफलता अर्जित की है। सीमा देसाई वुमेन्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का यह फाइनल मैच झारखंड टीम येलो वर्सेस झारखंड टीम ब्लू। अद्भुत नजारा, 110 रनों के जवाब में 109 रन टीम येलो बना करके इस मैच को टाई कर दिया है। हजारीबाग जिला क्रिकेट संघ के संजय सिंह क्रिकेट स्टेडियम में इतिहास अपने आप को दोहराता हुआ और सुपर ओवर में
3: मुरार भी है साथ में हमारे
2: टीम ब्लू को जीतने के लिए 17 रनों की आवश्यकता थी।
3: बिल्कुल,
2: ओवर समाप्ति के पश्चात टीम ब्लू मात्र 12 रन ही बना सकी।
4: खिलाड़ियों को पुरस्कृत
3: किया जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं वहाँ पर उस मंच की ओर जहाँ खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा।
5: शुभ लक्ष्मी जो नेशनल इंटरनेशनल खेल चुकी है उस मैदान में मौजूद, ये उत्साह धीरे धीरे चरण पर।
3: कैसा माहौल लग रहा है, क्या बताएंगे हमारे खेलेंगे शान से के खिलाड़ियों को? शुभ लक्ष्मी
6: जी, देखिए माहौल तो काफी अच्छा है और पहली बार हजारीबाग में वुमेन्स क्रिकेट डे नाइट हो रहा है।
3: बिल्कुल, बिल्कुल।
6: तो ये खिलाड़ियों के लिए बहुत ही मतलब मोटिवेशन है कि हमें भी अब डे नाइट मिल रहा है और हमारे अभी हमारे स्टेट से काफी डिस्ट्रिक्ट से छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे प्लेयर आ रहे हैं। देख रहे हो आप, पहली बार ऐसा सुपर ओवर हो रहा है।
3: सुपर ओवर हो रहा है पहली बार जी, उनके लिए क्या संदेश देंगे शुभ लक्ष्मी जी आज खेलेंगे शान से?
6: बस मेरा यही कहना है कि आप खेलो, पूरा हार्डवर्क करो, सबसे ऑनेस्टी के साथ हार्डवर्क करना बहुत जरूरी है। अगर आप वो कर रहे हो तो आपको सक्सेस मिलेगा।
2: ये संध्या आरंभ करते हुए झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अजय राज सहदेव जी से कि वो दो शब्द हम सारे लोगों के बीच में अपना रखे। अजय राज सहदेव, एक बार ताली बनता है सर के लिए।
7: आज सीमा देसाई T20 वुमेन्स क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल है यहाँ पे हो गया है और टीम येलो इज द चैंपियन, आपको बहुत बहुत बधाई। और टीम ब्लू आप फाइनल तक पहुंची, इसके लिए आप लोगों को भी बधाई। पर सबसे बड़ी बधाई अगर किसी को मिलनी चाहिए तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों को कि आप लोगों ने इतना सफल आयोजन यहाँ पे किया। मैं सेक्रेटरी साहब को आदरणीय स्वर्गीय हमारे संजय सिंह जी जिनके नाम से ये स्टेडियम भी है, एंड मुझे लगता है सबसे बड़ा ट्रिब्यूट आज ये हुआ कि वुमेन्स क्रिकेट का हमारा सबसे बड़ा T20 टूर्नामेंट यहाँ हुआ और उसके फाइनल यहाँ पे रात में खेला गया, इसको सुपर ओवर तो किया, इसके लिए आप सभी लोगों को बधाई। इट्स अ फिटिंग ट्रिब्यूट टू हिम क्योंकि आज JSCA जहाँ पर है अमिताभ सर के साथ, अगर किसी ने कदम से कदम मिला के JSCA को इस मुकाम तक पहुंचाया है तो वो हमारे बड़े भाई स्वर्गीय संजय सिंह जी थे, एंड इट्स अ फिटिंग ट्रिब्यूट आज के उनके सभी लोग उनके परिवार के सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं। हजारीबाग में बहुत कम समय में एक ग्राउंड तैयार हो गया, लाइट्स भी यहाँ लग गए और यहाँ पे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और अच्छे मैचेस होंगे जिनमें महिला क्रिकेटर्स हमारी मौजूद हैं। आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि JSCA इज फुली बिहाइंड यू, आपके साथ एक गार्जियन के तरीके से जैसे एक पिता और माँ होते हैं उस तरीके से वी आर राइट आपके पीछे खड़े हैं, आपको हर तरीके से बैक करने के लिए, बस आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचना है।
2: सीमा देसाई वुमेन्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के चैंपियंस टीम झारखंड येलो।
8: वेलकम है, आइए आप सारे लोग आकर के अपना विनिंग ट्रॉफी साथ ही साथ विनिंग प्राइज लेकर के जाएं। एक बार जोरदार ताली झारखंड येलो के लिए, सुपर ओवर में शानदार तरीके से इस मैच को खेलते हुए टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। हजारीबाग जिला क्रिकेट संघ आप सभी प्लेयर से पदाधिकारियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां देते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।
3: ये देखिए ये जोश है,
5: बहुत ही बेहतरीन ये नजारा।
6: तो झारखंड की रणजी टीम से मैं फिजियो हूँ।
3: अच्छा।
6: मेरा नाम डॉक्टर पूजा दत्ता है और मैं इंडियन रेसलिंग की जो है टीम उसमें भी मैं रह चुकी हूँ, हॉकी टीम में भी रह चुकी हूँ। तो अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग एम्स होते हैं एथलीट्स के, तो हमारा ये एम होता है कि वो जो भी स्पोर्ट्स में हो वो 100% अपना एफर्ट लगा सके, जो उनका एक एम है। आज हमारी टीम जीत गई है। हाँ हाँ,
3: जीत हुई है।
6: मेरी ओर से ये रहेगा कि स्पोर्ट्स आजकल इतना आगे निकल चुका है, आप लोग भी स्पोर्ट्स में आइए और स्पोर्ट्स में आजकल अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं और एक आपको अलग लेवल के सीख भी मिलती है, तो ये चीज अच्छी है। अगली आज हार हुई है तो नेक्स्ट जीत भी होगी, हमेशा लाइफ में ऐसा ही होता है। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।
3: थैंक यू सो मच।
9: मेरा नाम अनंता किशोर है, मैं टीम येलो की कैप्टन हूँ।
3: और कैप्टन होने के साथ साथ अभी कुछ स्पेशल आपको मिला है, वो भी तो बताएं।
9: जी हाँ जी, मैं प्लेयर ऑफ द मैच बनी हुई इस टीम में। सुपर ओवर में अच्छा परफॉर्मेंस था, उसके पहले भी अच्छा परफॉर्मेंस था।
3: चैंपियंस अब आगे क्या करने वाले हैं?
9: हमारा एक और डेज मैच होने, मतलब ओडीआई होने वाला है जो 10 तारीख से है, तो फोकस उस चीज पे है। जब कोच हमारे इतने फ्रेंडली थे कि जैसा मतलब इतना हमें सपोर्ट किया वही हमारे लिए बहुत।
3: ये पहली बार भी आयोजन?
9: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हजारीबाग को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बोलेंगे क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करवाया। लड़की लोग का टूर्नामेंट
3: कहाँ से आती है?
9: जी मैं धनबाद से हूँ।
3: तो ये विनर कैप्टन जो है धनबाद से आई और जीत कर ले गया सब। वही जोश और वही जुनून के साथ कहते हुए चलेंगे इस मैदान को अलविदा, कहते हुए खेलेंगे शान से, खेलेंगे शान से। बहुत बहुत धन्यवाद और उज्ज्वल भविष्य की बहुत बहुत कामनाएं। बाय बाय, शुभरात्रि शुभरात्रि।
0: और अब वक्त है हमारे खास स्तंभ हर जीत की कहानी, जहां दोस्तों आप देखेंगे कि किस तरह हमारे कुछ ऐसे खिलाड़ी जो कभी गुमनाम थे लेकिन आज अपने मेहनत और पसीनों के दम पर पहुंच गए हैं फलक के सितारे बनकर। हर जीत की कहानी,
1: हर जीत की कहानी, ये सेगमेंट आज रोशन रोशन करते हुए रोशन की जुबानी।
10: हालातों ने रोका बहुत मगर हौसलों ने हार मानना नहीं सीखा। जिंदगी के हर ठोकर को मैंने अपने जज्बे से जीता। कराटे मेरे लिए सिर्फ कला नहीं, आत्मसम्मान की पहचान है। मैं रोशन राज और मेरी हर जीत के पीछे संघर्ष की उड़ान है और मुझे लगता है जैसे हर जीत की कहानी मेरी ही कहानी। मैं न्यू एरिया हजारीबाग का रहने वाला हूँ और हमारी जर्नी स्टार्ट होती है मार्शल आर्ट की। एक बार मोहल्ले में झगड़ा हो रहा था और झगड़ा कहीं और हो रहा था और पैर मेरे हाथ कप रहे थे। उस समय मैंने ठाना कि नहीं, लाइफ में कुछ भी हो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है क्योंकि कमजोर लोगों का दुनिया में कोई भी जगह नहीं होता, ये मुझे ऐसा लगा।
1: ये सोच कहाँ खींच लाई, सबसे पहले किस गुरु के सामने गए?
10: शिहान प्रभाकर चतुर्वेदी जो आज की डेट में नहीं है, मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ क्योंकि उनके सानिध्य में मैंने ट्रेनिंग लेकर के।
1: कितने साल ट्रेनिंग?
10: अभी तक लगभग मैंने 27 साल से लोग और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लगातार लेकर।
1: लॉन्ग ड्यूरेशन है, इसमें हमने सुना है कि बहुत सारी चीजों को हासिल किया। क्या क्या हासिल किया?
10: पटना में आयोजित था सेकंड इंडो नेपाल की बॉक्सिंग चैंपियनशिप जिसे मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और मैंने उस पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए मैं और मेरी तीन टीम थी, मैंने तीन दोस्तों ने तीनों वहाँ पे गोल्ड को वहाँ पे कैच किया,
1: गोल्ड कैप्चर किया, गोल्ड किया। सपनों की उड़ान बांख और बढ़े, तो आज की डेट में क्या हासिल कर रहे हैं?
10: तो मुझे लगा ये कला मैं लोगों तक पहुँचाऊँ, इसमें मैंने अपना एक दोजो शुभारंभ किया है हजारीबाग कर्जन ग्राउंड, जहाँ पे 100 से ज्यादा लोग हैं जिसको मैंने ब्लैक बेल्ट की तैयारी करवाई है, जो अलग अलग क्षेत्रों पे आज जाकर के खेल के क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। और मैं खुद का एक ट्रेनिंग सेशन चलाता हूँ जहाँ मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ के लोग हैं आत्मसम्मान आत्मविश्वास से लबरेज हो। जैसे मेरे गार्जियन भी पहले रेडी नहीं थे, जब मैंने अपने आप को प्रूफ करके दिखाया तब उन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। तो पापा तो अभी आज की डेट में है नहीं, लेकिन पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस मार्शल आर्ट में। मैं उन्हें प्राउड कराने के लिए
1: हम भी प्राउड फील करते हैं क्योंकि सेशन ही है हर जीत की कहानी और हर जीत के पीछे कुछ ना कुछ कहानी होती है।
10: अपने गुरुजी शिहान समीर और प्रभाकर चतुर्वेदी और शिहान प्रवीण कुमार, शिहान समीर बग्गा सर, मैं इनके सानिध्य में ट्रेनिंग किया। तो फुल कॉन्टेक्ट का पहला टूर्नामेंट करवाने का यहाँ पे आयोजन चल रहा है जो कि दिसंबर माह के करीब में होने वाला है। हमारा एक नेशनल कैंप भी, जो हम लोग गर्व की बात है कि मार्शल आर्ट में ना हजारीबाग में पैसा नहीं है, ऐसा लोग आर्ट में बोलते थे, लेकिन मैंने इसको मिथिक करके डाला है और आज के डेट में मार्शल आर्ट से ही मैं अपना जीविका चला लेता हूँ। यहाँ पे लगभग अभी देखा जाए तो मेरे बहुत सारे विद्यालय में मैं मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग्स तो देता, आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे इसके पास पैसा नहीं, फिर भी मार्शल आर्ट को सीखना चाहते हैं, जज्बा है उनके अंदर में, तो स्वागत है सर मेरे क्लास में आ जाए।
11: चलिए अब आप स्वागत भी करते हैं, यानी एक पुल आपने तैयार कर दिया है। बहुत तो अच्छा लगा आज के पहले सेक्शन हर जीत की कहानी में आपके साथ ये समय बिता करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
10: थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया।
1: अब आया हमारा नया स्तंभ खिलाड़ियों,
0: आज का खेल मंत्र।
1: नमस्कार खिलाड़ियों, आज का मंत्र है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ही आपको असली चैंपियन बनाती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास आपको उस मकाम तक पहुँचाता है जहाँ जीत आपका इंतजार करती है। तो हर बार प्रैक्टिस में उतरने से पहले ठान लीजिए जिद है जीतने की, तो बस लगे रहिए, खेलते रहिए।
0: और दोस्तों खेल मंत्र के बाद बारी है एक और छोटे से प्यारे से सेगमेंट की, जो है
12: खेल टिप्स।
0: खिलाड़ियों रोज 30 मिनट से 2 घंटे आप सब खेल को दीजिए।
1: खिलाड़ियों पानी और संतुलित आहार पर भी ध्यान दीजिए।
0: और खिलाड़ियों अपने कोच और खेल गुरुओं से ज्यादा सीखिए।
1: और सबसे जरूरी खुद पर विश्वास रखिए। और अब अगला खेल टिप्स
0: अगले शुक्रवार को, तब तक के लिए बाय बाय।
1: सुनो खिलाड़ियों, आइए खिलाड़ियों अब रूबरू होते हैं खेलेंगे शांसे के इस नए सेगमेंट से।
0: सुनो खिलाड़ियों, मैदान सिर्फ खेल का नहीं होता, ये वो जगह है जहाँ सपने पसीने से लिखे जाते हैं, सच्चे समर्पण से सींचे जाते हैं, जहाँ हार आपको तोड़ती नहीं बल्कि और भी मजबूत बना देती है, जो तूफानों में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं, जो मेहनत से नहीं डरते वही इतिहास रचते हैं। खिलाड़ियों आपका हर प्रयास आपकी हर कोशिश इस देश की उम्मीद बनती है। याद रखिए जीत सिर्फ मैच नहीं बल्कि उस सफर का नाम है जिसे आपने अपनी पूरी ईमानदारी से तय किया। और अब इस सेगमेंट से बाय बाय। और खिलाड़ियों खेलेंगे शान से में अब तैयार हो जाइए सुनने जानने और अपडेट्स हो जाने को।
1: शुरू कर रहे हैं वंदना के साथ
12: खेल अपडेट्स।
1: मुख्य खेल अपडेट सबसे पहले बता रही है वंदना।
0: IPL 2026 में 18 साल के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के खेलने की चर्चा हर जगह।
1: LSG के खिलाफ 7 छक्के लगाकर रोहित शर्मा ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली।
0: और खिलाड़ियों अब कुछ खबरें टेनिस से। फ्रेंच ओपन 2026 नोवाक जोकोविच, यानिक सिनर और कोको गॉफ सहित कई दिग्गज खिलाड़ियों ने प्राइज मनी को लेकर असंतोष जताया।
1: और अब हॉकी को लेकर अपडेट। ओलंपिक में आयरलैंड को हराने के बाद टीम क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई है।
0: बॉक्सर अमित पंगल भी ओलंपिक से बाहर हो गए हैं। साल के बच्चे का नाम ईशान सिंह, जो रांची के ध्रुआ का रहने वाला है। अभी की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि उसने भारत और श्रीलंका के बीच की बेहद कठिन पाक स्ट्रेट को तैरकर पार कर लिया और ऐसा करने वाला सबसे कम उम्र का सबसे तेज तैराक बन गया है। हार कर भी जो हिम्मत न हारे वही असली खिलाड़ी है, जो गिर कर भी संभल जाए वही असली खिलाड़ी है।
1: तो मैदान में उतरिए, दिल से खेलिए और अपने जुनून को अपनी पहचान बनाइए।
0: आज का ये मंच आप सभी खिलाड़ियों को सलाम करता है।
1: खेलिए,
0: सीखिए
1: और आगे बढ़ते रहिए।
0: याद रखिए,
1: खेलेंगे तो जीतेंगे
0: और जीतेंगे शान से। खिलाड़ियों कैसा लगा आज का हमारा खेल पत्रिका का ये पहला अंक, बताइएगा जरूर, क्योंकि अगले शुक्रवार रहेगा तैयार
1: लेकर सभी सेगमेंट्स। कहते हुए हम हो जाएंगे हाजिर,
12: खेलेंगे शान से। नमस्कार।
13: आप सुन रहे थे खेल गतिविधियों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेलेंगे शान से। वाचन स्वर्धा माणिक चक्रवर्ती एवं वंदना श्रीवास्तव का, प्रस्तुतकर्ता थी राजीव कुमार की। आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। हमारा अगला कार्यक्रम बस अब से कुछ ही क्षणों में।

पेश है कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम का पहला गाना। फिल्म का नाम है छुपा रुस्तम। आवाज़ें हैं अलका याग्निक, कुमार सानू और साथी की।

0: इसी गीत के साथ सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। हमारा अगला कार्यक्रम बस अब से कुछ ही क्षणों में।
1: It's 8 o'clock.

पेशा कार्यक्रम आपकी चाहत कार्यक्रम सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं को रानी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हैं हम इस कार्यक्रम में कुछ चुनिंदा हिट सुपरहिट फिल्मी नगमों के साथ। लीजिए सुनिए, सबसे पहले इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और साथी की आवाजों में इस गीत को। सुनना चाहा है लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर, बिहारी कॉलोनी से हैं वलीउल्लाह फकीर, डब्ल्यूल्लाह फकीर, परवीन आसमा फकीर और तमाम साथी बुलंदशहर से हैं बदरू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी, फर्जी वली अंसारी और इनके तमाम साथी। आप हैं अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवली श्रीवास्तव, अनिल कुमार, अंजू लता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव, शिवाजी चौक, राजीव छत्तीसगढ़ से सुनना चाहते हैं। शिवाजी चौक कटनी से हैं अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, संतोष शर्मा, रंजन रचक, राजू ताम्रकार, दिलीप वर्मा, पप्पू सोनी, पवन यादव, सत्तू सोनी, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, लालू सोना, मुना हनी, सौम्या और उनके मम्मी पापा।

फिल्म का नाम है पत्थर के फूल, लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में इस गीत को लीजिए सुनिए। इस गीत को सुनना चाहा है मेन रोड बड़का गांव से दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना मालाकार, गुड़िया रानी, गोलू बाबू, भोला बाबू एवं उनके मम्मी पापा, उमाडी हार्ली बड़का गांव से उमेश चंद्र पांडे, शंभू चंद्र, अनिल चंद्र, साकेत, शुभम, नर्मदा पांडे, अक्षता, प्रियंका, शमी, अपराजिता, टुकू, अपूर्व एवं पांडे परिवार के समस्त लोग। मैं सौ सीतामढ़ी बिहार से अक्रम हुसैन प्रिंस, नवासी हूँ मेरा नाज, बेगम इशरत अक्रम, नवासी अभी यहाँ नाज, बहू रुबीना, वसीम, साजिया, साहिन नाज, नवासा हरान बाबू, नाजिया नूरी नाज, नवासा हमजा बाबू, बच्चू सैक, नवासा मुजमिल बाबू, शीना सैक, नवासी हूँ मेरा नाज, कुकिलवारा सिहिम, मोहम्मद फैजल सैक, नुजहत जहां नाज, कांति निकेतन रामनगर से, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता और रूप गुप्ता। तो आइए सुनते हैं इस गीत को।

लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में इस गीत को। इस गीत को सुनना चाहे है जादव और चौकसी, कृष्ण कुमार सिन्हा, श्याम कुमार सिन्हा, मुकेश कुमार सिन्हा, संतोष कुमार सिन्हा, अरविंद कुमार सिन्हा, डॉक्टर भारती नयन, नीलम सिन्हा, आयुषी कुशाल भास्कर, आदिति और देवांश। इसी गीत को सुनना चाहा है निवेरिया चौथी गली से सीमा सहाय, अमित सहाय, श्रुति, सृष्टि, संजना, शुभम और समस्त परिवार के लोग। शिवपुरी से हैं आभा प्रसाद, कृपा प्रसाद, गौरांग, शिवांग और समस्त परिवार के लोग। दुश्मन

लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में इस गीत को। इस गीत को सुनना चाहा है नया टोला भीखनपुर भागलपुर से गणेश पासवान, सुधा पासवान, पूजा पासवान, विकास पासवान, नितिन पासवान, मनोज पासवान और तमाम साथी। शिपा कला बड़का गांव से श्री बाबूलाल ठाकुर, श्रीमती साबिया ठाकुर, तिरेश्वरी श्री भरत ठाकुर, मंजू संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर, प्रभात कुमार ठाकुर, जितेश कुमार ठाकुर, अनुराधा रुक्मणी, प्रियंका और दीपिका। तो सुनते हैं इस गीत को।

आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। इस गीत को सुनना चाहा है बड़काकाना से भानु पासवान, अशोक पासवान, सुधा मंजू, रेखा, सुनीता, पूनम, पिट्टू, अवनी और अप्पू। आप हैं रेलवे स्टेशन हजारीबाग से शमीम अहमद, शगुप्ता परवीन, नूरजहां बेगम, तहसीन बानो, खलील अहमद और एहसान अहमद।

अगला गाना लीजिए सुनिए, दो रास्ते फिल्म से इस गीत को सुनना चाहा है महादेव खाड़ डब्लेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांस, भाटापारा दतेंगी सी, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा और उनके तमाम साथी। आप है काने बाजार हजारीबाग से सुरेश, कमलेश्वर और ऋतु। शिवपुरी चौक से है अमरजीत कौर और देवांश, इसी गीत को सुनना चाहा है। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, रसीम बेगम, आयसा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, सोएब खान, मुजतबा खान, रऊफ भाई और शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से हैं रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। नीचे सुनिए इस गीत को।

आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। यह आकाशवाणी का हजारी भाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रांची के 8:43 और 35 सेकेंड हुए हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार संध्या और न्यूज 8:09 हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहां राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
3: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल गवेत्री कड़गम टीवी के पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार सतर्क होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। सीएमआर जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट 1 महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
4: 1 साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट है, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
5: पिछले 2 दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले 2 दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले 2 दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की पांचवी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले पांच वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
6: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू के चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस वीसीके आईयूएमएल और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकर की, जिसने साल 1973 से साल 1989 के बीच अमिताभ बच्चन के साथ एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में बनाई और सिनेमा के इतिहास पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवा लिया।
1: बुजुर्गों ने

0: अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लियां, ये जहां देख कर अपनी चाल। धन्यवाद।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे जाने माने फिल्मकार प्रकाश मेहरा की। प्रकाश मेहरा का जन्म 13 जुलाई 1939 को बिजनौर में हुआ था और उनकी परवरिश दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके में हुई। एक सामान्य परिदृश्य में पले बढ़े प्रकाश मेहरा ने आम आदमी की जिंदगी को बहुत करीब से देखा, उसके दुख दर्द, उसके जीवन की कमियों को और उसके जीवन में हो रही नाइंसाफियों को अपने जहन के भीतर जज्ब किया। तब उन्हें पता नहीं था कि वो आगे चलकर बन जाएंगे फिल्मकार और उनका नायक एक आम आदमी होगा जो बड़े बड़े कारनामे करेगा। सन 1950, प्रकाश मेहरा मुंबई आए नौकरी की तलाश में और किसी तरह से जिंदगी उन्हें फिल्मों की दुनिया में ले गई। वो बन गए प्रोडक्शन मैनेजर। बरस दर बरस प्रकाश मेहरा जिम्मेदारी भरा ये काम करते रहे और उसके बाद उन्होंने एक लकीर पार की। सन 1968 प्रकाश मेहरा के निर्देशन में पहली फिल्म आई हसीना मान जाएगी।

0: कदम।
1: हसीना मान जाएगी शशि कपूर की एक बेहतरीन फिल्म में शुमार हुई। ये फिल्म बेहद कामयाब थी। प्रकाश मेहरा की इस फिल्म के जरिए धाक जम गई। हसीना मान जाएगी बनाने के बाद प्रकाश मेहरा ने कुछ और फिल्में बनाई और इन फिल्मों के जरिए जैसे वो अपने मुहावरे को तलाश कर रहे थे, जैसे फिल्म संसार कदम दर कदम एक लेजेंड फिल्म मेकर तैयार कर रहा था। सन 1971 संजय खान और फिरोज खान को साथ में लेकर उन्होंने बनाई फिल्म।

प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों की कहानी पर बड़ा जोर देते थे और कोई अच्छी कहानी उनका मन मोह लेती थी। ऐसी ही एक अच्छी कहानी थी एक पुलिस वाले की कहानी, और प्रकाश मेहरा इस कहानी को लेकर अलग अलग नायकों के पास जाते रहे। ये नायक इस कहानी को ठुकराते रहे, लेकिन प्रकाश मेहरा का विश्वास कम नहीं हुआ। इस कहानी को एक तरफ रखा और सन 1972 में वो लेकर आए समाधि।

0: इसी साल उनकी फिल्म आई आन बान। आखिरकार एक के बाद एक कई फ्लॉप फिल्म देने वाले एक बेहद लंबे कद के दुबले पतले अभिनेता अमिताभ बच्चन को लेकर उन्होंने अपनी उस महत्वाकांक्षी फिल्म पर काम शुरू किया। सन 1973 20 मई का दिन फिल्म जंजीर रिलीज हुई और इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को बना दिया एंग्री यंग मैन। दरअसल एंग्री यंग मैन ये जो जुमला है ये नाटककार जॉन ऑसबोर्न के प्ले लुक बैक इन एंगर से लिया गया है। इसी नाम की एक फिल्म बनी है। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर के जरिए एंग्री यंग मैन बना दिया।
1: यही है वो इलाका जहाँ लोग तुम्हें जानते हैं शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और न ही मैं ड्यूटी पर हूँ। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूँ।
2: मतलब का बात बोलू साहब।

0: जिंदगी।
1: आज इतने बरस बाद भी फिल्म जंजीर एक कल्ट फिल्म मानी जाती है, एक कालजयी फिल्म जिसने एक बेमिसाल निर्देशक और एक जबरदस्त हीरो हिंदी फिल्म सिनेमा को दिया। फिल्म जंजीर के बाद प्रकाश मेहरा ने अगले 15 वर्षों में अमिताभ बच्चन के साथ 7 फिल्में और बनाई। आइए एक के बाद एक इन फिल्मों से होकर गुजरें। सन 1976, खून पसीना।

0: 1981 प्रकाश मेहरा के करियर का एक बेमिसाल साल रहा। इस साल वो लेकर आए मुकद्दर का सिकंदर, एक बार फिर अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना एक साथ।
1: सिकंदर का मैं आऊं विशाल। पंडित जी शुरू कीजिए।
2: मंगलम भगवान
1: अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूँ।
2: वस्त्र कंधे पर रख
1: सिकंदर, क्या हुआ तुझे? कुछ लोग मेरे यार चरण से झड़प हो गई। किससे हुई? बहन किससे हुई?
3: नहीं बताती।
1: नहीं,
3: दिला में मुझे उठा कर ले गया था। सिकंदर मुझे बचा कर यहाँ ले आया। अगर सिकंदर नहीं होता तो मैं इस दुनिया में नहीं होता।
1: बस बस करो मेहन साहब।
4: मेहन साहब
1: क्या काम ना है तेरी मेहन साहब जिससे तू
4: नहीं?
3: मुझे तो सिकंदर सारी जिंदगी मेम साहब को करता
1: है। नहीं, नहीं।
3: सिकंदर आज मुझे कह लेने दो, आज मुझे कह लेने दो विशाल। सारी जिंदगी सिकंदर मुझसे दिल ही दिल में प्यार करता रहा और मैंने इसे सिवाय नफरत के कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया।
1: सिकंदर ये तुमने क्या किया? क्या?
0: इसी साल आई फिल्म लावारिस।
5: तुम?
6: हाँ मैं। तुमने मुझे लावारिस कहा? जानती हो लावारिस क्या होता है?
7: मेम साहब लावारिस गंदी नाली का वो कीड़ा होता है जो न जीता है न मरता है। अपना पाप समझकर लोग जिसे फुटपाथ पर फेंक जाते हैं मरने के लिए। मौत भी कमबख्त उसे पूरा नहीं खाती, अधमरा छोड़ जाती है तुम्हारे जैसे इंसानों के नोचने के लिए। इस दुनिया में कौन कैसा क्यों है ये जाने बगैर कभी किसी पे छींटे मत कसना। और गुनाह के पीछे गुनाहगार कौन है ये कोई नहीं जानता।
0: प्रकाश मेहरा की फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही थीं। अमिताभ बच्चन का सितारा लगातार जगमगा रहा था। जाने माने फिल्मकार मनमोहन देसाई ने प्रकाश मेहरा के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जिसने प्रकाश मेहरा की फिल्में नहीं देखी हों। एक ऐसा फिल्मकार जिसने ब्लॉकबस्टर टर्म को जन्म दिया। एक ऐसा फिल्मकार जिसने हिंदी सिनेमा में मसालेदार सिनेमा का नया व्याकरण गढ़ा और सारे देश को अपने तिलस्म की गिरफ्त में ले लिया। सन 1982 में आई नमक हलाल। सन 1984 अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के जादुई साथ की फिल्म शराबी। कहते हैं कि जब सूरज बहुत तेज चमके उसके बाद शाम नजदीक होती है। एक के बाद एक कमाल की फिल्में देने के बाद जैसे वक्त करवट ले रहा था। सन 1989 प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन के साथ वाली एक बड़ी फिल्म आई जादूगर। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म चारों खाने चित हो गई। ऐसा लगा जैसे एक बेमिसाल फिल्मकार का जादू टूट गया। एक वक्त था जो पीछे छूट गया, एक चमक थी जो मध्यम पड़ गई, एक कहानी थी जो खत्म होने लगी। अमिताभ बच्चन के अलावा प्रकाश मेहरा ने दूसरे कलाकारों के साथ भी काम किया है। सन 1974 में प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली फिल्म आई थी हाथ की सफाई।
8: वादा

सन 1991 में अनिल कपूर को लेकर प्रकाश मेहरा ने बनाई जिंदगी एक जुआ। सन 1996 में जाने माने अभिनेता राजकुमार के बेटे पुरु राजकुमार को फिल्मों में उतारने के लिए उन्होंने निर्देशित की बाल ब्रह्मचारी। ये प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली आखिरी फिल्म थी। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने किसी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। सन 1993 में आई फिल्म दलाल के निर्माता प्रकाश मेहरा ही थे। इस फिल्म के निर्देशक थे पार्थो घोष। प्रकाश मेहरा ने एक जमाने में अमिताभ बच्चन से ये वादा किया था कि जिस दिन वो हिट फिल्म नहीं बना पाएंगे उस दिन अमिताभ बच्चन के साथ काम करना बंद कर देंगे। सन 1989 के बाद प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म नहीं की। प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन, इन लोगों ने मिलकर हिंदी सिनेमा का एक नया इतिहास गढ़ा है, ब्लॉकबस्टर फिल्मों का इतिहास। वो समय जरूर बीत गया लेकिन मसालेदार फिल्मों का दौर नहीं बीता। अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा को चाहने वाले आज भी बड़े चाव से देखते हैं 70 और 80 के दशक की वो बेमिसाल फिल्में।

प्रकाश मेहरा गीतकार भी थे। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में गाने भी लिखे हैं, जैसे फिल्म लावारिस का ये गाना भी प्रकाश मेहरा की कलम का कमाल था।

17 मई 2009 प्रकाश मेहरा ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। पीछे रह गईं उनकी बनाई बेमिसाल फिल्में, वो कहानियां जिन्होंने हमें हंसाया और रुलाया, वो कहानियां जिन्होंने हमारा दिल जीता, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने तालियां बजाई, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने निर्देशक की वाह वाह की। आज प्रकाश मेहरा नहीं है, लेकिन उनका सिनेमा है, और उस सिनेमा का कमाल है, किसी लेखक ने कहीं लिखा, फॉर्मूला खत्म नहीं होता। प्रकाश मेहरा की फिल्मों का फॉर्मूला आज दूसरे निर्देशकों की फिल्मों में जिंदा है। फॉर्मूला कभी खत्म नहीं होता। फॉर्मूला फिल्मों में प्रकाश मेहरा हमेशा जिंदा रहेंगे।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के बेमिसाल निर्देशक प्रकाश मेहरा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

यह आकाशवाणी का सहयोग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। पेश है सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए पाकिजा फिल्म का ये गाना, आवाज लता मंगेशकर की है।

0: अभी आपने सुना उदार फिल्म का ये गाना। आप सुन रहे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। लीजिए सुनिए मिस्टर
1: नटवर
0: और किशोर।

आप सुन रहे थे मिस्टर नटवरलाल फिल्म का ये गाना। आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। लीजिए सुनिए आपकी कसम फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं।

अभी आपने सुना मर्यादा फिल्म का ये गाना, आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज पे इस गीत को। फिल्म का नाम परिवार।

आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। आपसे कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।

आप सुन रहे थे एक ही फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का कुछ गाना। इसी के साथ ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 11 बजने को है। आपसे कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएमके महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुगता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2025 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।